0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

वो हसीन संगम है, ये सिर्फ चेहरे की चमक ही नहीं बल्कि हर दिल में उम्मीद और ताजगी जगाने का नाम है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दोस्ती से ये गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान से अभी आप ये गीत सुन रहे हैं। और दोस्तों, आपसे मुलाकात का हम भी बहाना ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे मुलाकात हो, पर मिलन के साथ जुदाई भी तो है। और अब हमें भोर सुहानी कार्यक्रम से जाना होगा और अर्चना को दीजिए इजाज़त। और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 11 अगस्त 2026 सुबह के 5:53 हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। सुबह 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अर्पण। 6:44 पर सुनिएगा कार्यक्रम श्री रामचरित मानस गान।

गोल्ड सुप्रभात, ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 7:10 पर। सुबह 7:30 का समय रहेगा कार्यक्रम आज सवेरे का।

सुबह 8:45 पर और 9:10 पर कार्यक्रम प्रसारित होगा म्यूजिकल दिल लगी विश्व दर्पण। ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10:10 पर।

दिल का मेल बॉक्स ये कार्यक्रम प्रसारित होगा 10:30 पर। 11:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम तस्वीर।

आकाशवाणी एफएम गोल्ड वुमेन एंड फैमिली शो, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:10 पर। कलाकार बेमिसाल, इस कार्यक्रम का समय रहेगा दोपहर 1:10।

ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 MHz पर। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देश भर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा

0: के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर सही गुणवत्ता की सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने याद दिलाया कि जेम से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 111 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चौको क्षेत्र के सेन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के जरिए देशभर के कृषि विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप राशि जारी की। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे 6000 से ज्यादा विद्यार्थियों के खातों में भेजी गई। कृषि विद्यार्थियों को अब स्कॉलरशिप हर महीने सीधे बैंक खातों में मिलेगी। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। एफआईएच हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जी हाँ, आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। 11 अगस्त की ये सुबह और मंगलवार का दिन, आज सावन शिवरात्रि का पावन पर्व है। भगवान शिव को समर्पित विशेष जलाभिषेक, प्रार्थना, पूजा और कांवड़ यात्रा का जल समर्पण। तो आइए हम भी करते हैं अर्पण, मंगल की इस प्रभात, मंगल की मुक्ता के साथ।

जय भोले शंकर। भगवान शिव जो अनादि हैं, अनंत हैं। मान्यताओं के अनुसार श्री हनुमान भगवान शिव के ही 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने बिना किसी फल इच्छा के अपने आराध्य की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है, ऐसी निस्वार्थ भक्ति सिखाई। तो मंगल की इस प्रभात नमन महादेव के इस अवतार श्री हनुमान को भी।

जैसे लाखों की गाड़ी, एक चाबी और ब्रेक पर, और करोड़ों का घर एक छोटे से ताले चाबी पर निर्भर करता है। ठीक वैसे ही हमारा पूरा व्यक्तित्व हमारी सोच और स्वभाव पर निर्भर है। सोच यानी हमारा मन, और व्यवहार यानी हमारा कर्म। हमारी सोच जैसी है वैसा ही हमारा मन है, और फिर उसी मन, उसी स्वभाव से हम व्यवहार करते हैं, यानी हमारा कर्म बनता चला जाता है। इसीलिए संत कहते हैं कि हे मानव, इस मन को निर्मल कर ले।

0: संत वाणी है कि आपके भीतर यदि क्रोध नहीं है तो इसका मतलब बाहर आपका कोई दुश्मन नहीं है। अर्पण का भाव लाता है सहजता और इसी भाव को बनाकर रखेंगे। जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, सुनते रहिए अर्पण।
1: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
2: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
3: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

ये सच है, प्रभु अंग संग है, हर कण में है, हर क्षण में है। बस कई बार इस संसार में माया की आंखों के चलते हम इसके दर्शन कर नहीं पाते हैं। लिखा गया है, नहीं है दूरी प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। प्रभु से दूर बनाती तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, भटक रहा है अंधियारे में, इसे दूर जो कहता है। ज्ञान की जिसको नजर मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने है उसकी बात को बंदे मान जरा, कहे हरदेव कण कण वासी रमे राम को जान सरा।

कर्म से मुंह को मोड़ना नहीं है और प्रभु भक्ति को छोड़ना नहीं है। हर कर्म में जब इसके होने का एहसास हो जाता है तो वो कर्म अपने आप सुखदायी हो जाता है। 6:42 और ठीक 55 सेकंड हो चले हैं। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जो प्रभु की रजा में हमेशा रहता है, फिर उसे भय या शोक नहीं होता। जिसने विश्वास किया है, जिसने अर्पण किया है, वो आनंद में है। 6:44 और ठीक 15 सेकंड हो चले हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर अब समय है श्री रामचरितमानस के पाठ का। आइए मिलकर श्रवण करते हैं श्री रामचरितमानस का पाठ।

रानी कैकई ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है, ये सुनकर अयोध्या के महलों में विषाद का वातावरण छा गया है। किंतु श्री राम प्रसन्न है, उनका चित उल्लसित है। सब भाइयों को छोड़कर पिता ने उनका ही राज तिलक करने का निश्चय किया था, इस कारण जो विषाद उनके मन में उत्पन्न हुआ था वो अब मिट गया है। वो प्रसन्न मन माता कौशल्या के भवन में पहुंचे। श्री राम ने हाथ जोड़कर माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने गले लगाकर उन पर वस्त्राभूषण न्योछावर किए। वो उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा में हैं जब राम का राज तिलक होगा। किंतु पुत्र के मुंह से ये सुनकर कि पिता ने उन्हें वन का राज्य दिया है और वो वन यात्रा के लिए माता का मंगलमय आशीर्वाद लेने आए हैं, माता कौशल्या के हृदय में जैसे वाण चुभ गया, जिसकी चुभन से वो तड़प उठी। पुत्र के वचन अत्यंत कोमल और शीतल थे, किंतु उन्हें सुनकर वो वैसे ही सहम कर सूख गईं, जैसे बरसात का पानी पड़ते ही जवासा सूख जाता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। 6:54 और ठीक 31 सेकंड हुए हैं। आइए अब संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में समाचार सुनें।

0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। संसदा करविषयकानां तथा अन्येषां विधीनां संशोधन विधेयकं 20-26 इति पारितम्। राज्यसभया ह्यः चर्चानन्तरम् एतत् लोकसभायै प्रत्यर्पितम्। लोकसभया एतत् विधेयकं पूर्वमेव पारितमासीत्। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण विधेयकं प्रस्तुतवती आसीत्। विधेयकेन धनप्रदान परिशोधन व्यवस्थाधिनियम 7+2000 आयकराधिनियम 20-25 तथा वित्ताधिनियम 20-26 चेत्येषु संशोधनं प्रस्ताव्यते। अनेन अधिनियमेन आयकर संशोधन अध्यादेश 20-26 इति प्रभावहीन भविष्यति, यः अस्य वर्षस्य जूनमासस्य 5 दिनांके प्रख्यापित आसीत्। चर्चायाः प्रत्युत्तरं ददति केन्द्रीय वित्तमन्त्री अवदत् यत् विधेयकस्य उद्देश्यं भारतस्य विनिर्माण परितन्त्रस्य सुदृढीकरणम्, अतिरिक्त निवेशस्य आकर्षणम्, आजीविकायाः सृजनं तथा विनिर्माण गतिविधीनां प्रोत्साहनं वर्तते। सा अवदत् यत् द्वितीयः प्रमुखः संशोधनः भारतस्य निर्दिष्टेभ्यः दत्तांशकेन्द्रेभ्यः दत्तांशसेवाः प्राप्नुवतीनां वैदेशिक संस्थानां करमुक्ति प्रदानेन अथ व्यवसाय संचालनस्य च सुगमतायाः वर्धनेन सम्बन्धितः अस्ति। मन्त्रिणा स्पष्टीकृतं यत् विधेयकेन यूपीआई इति प्रयोक्तृभ्यः कश्चन करः उत वा व्यवहारशुल्कं न आरोप्यते। संसदा बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयकं 20-26 अपि पारितम्। राज्यसभया तत् ह्यः अनुमोदितम् आसीत्, एवञ्च लोकसभया तत् पूर्वमेव पारितम् आसीत्। प्रशासनेन 11 नूतनानि अन्ताराष्ट्रिय पत्तनानि अधिसूचितानि, येन ई वीजा धारकानां वैदेशिक नागरिकाणां भारत प्रवेशः सुलभः भविष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् एतेषु 9 भूपत्तनानि, 2 च विमानपत्तने सम्मिलिते स्तः। एतेषु भोपालस्य तिरुपतेः च विमानपत्तने तथा अटारी अगरतला इत्येतयोः भूपत्तनानि सम्मिलितानि सन्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् नूतनानां पत्तनानां समावेशेन ई वीजा इत्येतस्य उपयोगिता आकर्षणञ्च अधिकं वर्धिष्यते। मन्त्रालयानुसारं भारतं प्रायः 95% यावत् ई वीजा आवेदनानि 2 सप्ततिहोरातः न्यूनसमये निस्तारयति। नूतनपत्तनानां समावेशेन ई वीजा धारकाणां वैदेशिक नागरिकाणां प्रवेशाय अनुमतानां अन्ताराष्ट्रिय पत्तनानां संख्या आहत्य 88 जाता। एतेषु 37 विमानपत्तनानि, 38 सामुद्रिकपत्तनानि तथा 13 भूपत्तनानि च सम्मिलितानि सन्ति। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः अवदत् यत् प्रशासकीय ई मार्केट प्लेस जेम इतीदम् उच्चगुणवत्तायुक्तस्य उचितमूल्येन उचितसमये उचितोत्पादस्य क्रयणं प्रतिबिम्बयति। नवदिल्ल्यां जेम इत्यस्य 10 वर्षाणां पूर्त्युत्सवस्य अवसरे मन्त्री उक्तवान्। श्रीगोयलः स्मारितं यत् जेम इत्यस्य प्रवर्तनात् प्राक् सार्वजनिक धनस्य दुरुपयोगः भवति स्म, सुशासनस्य अभावः च आसीत्। श्रीगोयलः अवदत् यत् संचितरूपेण जेम इत्यनेन पटलेन 3 कोट्यधिकानाम् आदेशानां माध्यमेन 20 लक्षकोटिरूप्यकाणां वस्तूनां सेवानां च क्रयणे साहाय्यं कृतम्। सः प्रतिपादितवान् यत् प्रथमाष्टवर्षेषु 10 लक्षकोटिरूप्यकाणां क्रयणं जातं, तदनन्तरं 10 कोटिरूप्यकाणां क्रयणं केवलं वर्षद्वयोः एव अभवत् इति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य हिमाचल प्रदेशे, पूर्व राजस्थाने च अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। ऋतु विभागानुसारेण अद्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गांगीय पश्चिम बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़, नवदिल्ली इत्येतेषां स्थलानां कतिपयेषु स्थानेषु अतिवृष्टिः संभाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सभी दलों के नेताओं से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील की है। संसद भवन में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिड़ला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दे ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान विद्यार्थियों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन तेज हो गया है।
2: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: सरकार ने 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा चौकियों से ई वीजा वाले विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर सही गुणवत्ता के सही कीमत वाले सही उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम ने देशभर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियेला ने राहत कार्यों के लिए फंड तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा को आधुनिक चिकित्सा का पूरक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीमारी से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, जीवन शैली में बदलाव, पुनर्वास और आरोग्य पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष 2 टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced, and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
0: The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Atari and Agartala. The ministry said that the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. It noted that India provides approximately 95% e-visas applications in less than 72 hours. With the latest addition, the total number of international ports enabling entry of e-visa holder foreigners has increased to 88, including 37 airports, 38 seaports and 13 land ports. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato has been hospitalized after his health deteriorated while taking part in the student-led assembly march in Ranchi yesterday. Doctors described his condition as critical after a drastic drop in his blood sugar level. Mr. Mahato has been on a hunger strike for 9 days over alleged irregularities in recruitment examinations in the state. Mr. Mahato claims to have been injured during a police lathi charge near the Jharkhand assembly. The BJP has called for a Jharkhand Bandh today to protest against police atrocities and lathi charge on students agitating. BJP State President Aditya Sahu said the Bandh will be effective from 8 a.m. till midnight today. He said all essential services, however, are excluded from the purview of the shutdown. Several agitators and 4 policemen were injured during a clash near the Jharkhand Assembly yesterday as police used water cannons, tear gas and lathi charge job aspirants. The clash took place after the protesters breached multiple barricades near the Jharkhand Vidhan Sabha. India's ambassador to Israel, J.P. Singh, met head of Mashab, Israel's Agency for International Development Cooperation, Einat Schlein, in Jerusalem to discuss ways to further expand and deepen the India-Israel Development Partnership through Mashab. The discussions covered cooperation in several areas, including centers of excellence in agriculture, capacity building in agriculture and water management, and new avenues of cooperation in aquaculture. The death toll from a magnitude 7.4 earthquake that struck western Colombia has risen to 132, with more than 570 others injured. According to the U.S. Geological Survey, the earthquake struck yesterday with its epicenter near San Jose del Palmar in Choco region, about 400 kilometers west of the capital, Bogota. The quake damaged hundreds of buildings and trapped several people under debris. Rescue teams and local residents searched through the rubble for survivors. A U.S. federal court has dismissed criminal charges against Indian businessman Gautam Adani in an alleged fraud and bribery case. Brooklyn-based U.S. District Judge Nicholas Garafis approved a request by federal prosecutors to drop the case. However, the judge expressed concern over the Justice Department's decision to abandon the prosecution. India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals, including 4 gold, on the opening day. The Indian contingent has secured 4 gold, 4 silver and 9 bronze medals at the championship, which began on Sunday and will conclude on August 14th. And that is the end of this news bulletin.

लेकर चली गई। पानी के बंधे हुए जुड़े में सरोज खिले हैं और नई रोशनी जवान हुई है। जी हाँ, इस भीगी सुबह में गोल्ड सुप्रभात मुक्ता के साथ।

सुबह का वक्त हो रहा है। जी हाँ, ये वक्त अपने आप दिखाता है कितनी आशा है, कितनी खूबसूरती है, कितना विश्वास भरा है सूर्य की इस रोशनी में। और अगर ये रोशनी भीगी भीगी हो तो क्या बात है। और इस वक्त मेरे स्टूडियो की खिड़की दिखा रही है कि दिल्ली इस वक्त बना हुआ है शिमला मनाली। बहुत खूबसूरत वेदर है बाहर का, हमें इसी में बैठ

इसकी रोशनी बादलों को छिटक कर बाहर है। सूर्यास्त का समय शाम 7:04 का है। इस मौसम का पूरा आनंद लीजिए, सोकर इसे गवाइए नहीं। घर से बाहर नहीं जा सकते तो खिड़की खोलिए, ताजी हवा को भीतर आने दीजिए।

0: हेलो फार्मर्स, आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: हमारा राष्ट्रीय ध्वज, जिसे देखने भर से देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत होती है, तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान का आइए हम भी बनते हैं हिस्सा। सम्मान के साथ अपने घर और अपने कार्यस्थल पर लगाते हैं तिरंगा।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम

कुछ गीत जीवन में ऐसे होते हैं ना कि मौसम कैसा भी हो उसे बढ़ाने चढ़ाने में पूरी भूमिका अदा कर देते हैं, और ये गीत भी कुछ ऐसा ही है, वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा, अच्छी जिंदगी हम सब जीना चाहते हैं ना, एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए कुछ नियम है दोस्त। चाहते तो हम हैं लेकिन उन नियमों का पालन नहीं करते तो जीवन में खटास आती है। अब इन नियमों में से, कुछ खास नियमों में से एक ये है कि दूसरे की अचीवमेंट से कभी उदास नहीं होना है। कोई साथी आगे निकल गया, किसी जानकार के पास आपसे ज्यादा पैसा है तो जलना नहीं है। मालूम दूसरों से अपनी तुलना करने पर हम अपनी खुशियों को कम करते हैं। मोटिवेट करना है तो खुद को खुद के लिए कीजिए। 7:29 और ठीक 15 सेकंड हो चले हैं। आप सुन रहे थे गोल्ड सुप्रभात और आप सुनते हैं समाचार सेवा प्रभाग का कार्यक्रम आज सवेरे। फिलहाल मंगल की मुक्ता को दीजिए इजाजत। 8:45 पर आपसे फिर करूंगी मुलाकात म्यूजिकल दिल लगी लिए। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, सुप्रभात। एक नई सुबह और अपने साथ एक नया दिन, नई संभावनाएं और ढेर सारी छोटी छोटी खुशियां। कभी सुबह की पहली किरण चेहरे पर मुस्कान ले आती है, तो कभी किसी अपने की आवाज, और कभी कोई अच्छी बात पूरे दिन का मिजाज बदल देती है। कि तो क्यों ना आज के दिन की शुरुआत भी एक अच्छी बात से करें, कुछ ऐसा सुनकर जो हमें जानकारी दे, कुछ ऐसा जानकर जो हमें सोचने पर मजबूर करे, और कुछ ऐसा याद करके जो हमें प्रेरणा दे। नमस्कार श्रोताओं, इस खूबसूरत सुबह में आज सवेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी रेणु कटारिया। गुड मॉर्निंग रेणु।
1: गुड मॉर्निंग वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। एंड डियर लिसनर्स, एज वैष्णवी हैज ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड यू दैट इन आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे वी आर गोइंग टू गिव यू द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज द 11th ऑफ ऑगस्ट। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूज फर्स्ट वैष्णवी।
0: जी, संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह विधेयक पेश किया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा।
1: एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज रिलीज स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप फंड्स फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री थ्रू द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एनएसपी इन न्यू दिल्ली। अंडर द इनिशिएटिव मोर देन 6,000 स्टूडेंट्स रिसीव्ड अ टोटल ऑफ मोर देन 21 करोड़ रुपीज डायरेक्टली थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मैकेनिज्म। विद द न्यू इनिशिएटिव एग्रीकल्चर students will now receive their scholarships every month directly through DBT, ensuring timely and hassle-free financial assistance. Addressing the gathering, Mr. Chauhan said the scholarships are not merely a form of financial assistance but an important means of strengthening agricultural education and connecting it with practical learning and greater opportunities.
0: भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आज से अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य और नवाचार SHINE यानी शाइन पहल का दूसरा संस्करण आयोजित कर रहा है। दो दिन तक चलने वाला ये कार्यक्रम देशभर में 83 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें स्कूली छात्रों को वैज्ञानिकों से बातचीत करने, वैज्ञानिक शोध को जानने और स्वास्थ्य तथा नवाचार की दुनिया को खुद अनुभव करने का अवसर मिलेगा।
1: आयुष मिनिस्टर प्रताप राव जाधव सेड दैट योगा एंड नेचुरोपैथी शुड कॉम्प्लीमेंट मॉडर्न मेडिसिन विद ग्रेटर फोकस ऑन प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, lifestyle modification, rehabilitation and wellness. He said this while chairing the 5th meeting of the Parliamentary Consultative Committee of the Ministry of Ayush in New Delhi yesterday. The Ayush Ministry said that the meeting focused on yoga and naturopathy and deliberated on their growing relevance in preventive healthcare, healthy lifestyles, rehabilitation and holistic well-being. Mr. Jadhav said that yoga and naturopathy hold a distinct place in India's rich knowledge tradition and offer holistic, drug-free approaches focused on health promotion and overall well-being.
0: देश भर में चल रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य के सभी मदरसों में भी तिरंगा फहराने, राष्ट्रगान और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम होंगे। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य के मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रगान गाने, देशभक्ति से जुड़ी गतिविधियां और महान स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उजागर करने वाले जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Attari and Agartala. The ministry said that the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. It noted that India provides approximately 95% e-visas applications in less than 72 hours. With the latest addition, the total number of international ports enabling entry of e-visa holder foreigners has increased to 88, including 37 airports, 38 seaports and 13 land ports. And moving on to Goa. Goa has taken a new step towards bringing scientific technology closer to its traditional fishing community with the launch of the mobile application Matasya Sandhan Kshetram. The app is aimed at helping fishermen identify fish-rich areas and make better informed decisions while at sea. More on this from our correspondent.
3: Chief Minister Pomo Sawant launched the Matsya Sandhan Kshetram mobile app developed by Goa University and Fisheries Department. The app uses satellite and ocean data to help fishermen identify areas where fish are likely to be found. It aims to bring scientific information directly to fishermen and help them make better decisions at sea. Speaking on the occasion, the Chief Minister highlighted the benefits of the app for fishermen and Goa's blue economy.
4: There is a significance of the

0: Santanam Kshetram applications developed through the research of the Professor Harilal B. Menon and his team, and with the valuable contribution of Dr. Arjun Adhikari. In these applications, it uses satellite observations and oceanographic data to identify the potential fishing zone. Beyond the technology, it is a very simple objective to help the fishermen and productivity fishing areas more efficiently.
1: A memorandum of understanding was also signed between Goa University and the Fisheries Department for the use of the application. The initiative is expected to make fishing more efficient with the help of science and technology. For Asabere, Nikhil Upadhyay, Akashwani News, Padji.
2: और अब कुछ खेल खबरें। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी। अब जरा अपने सफर का रुख देश के अलग अलग शहरों की ओर करते हैं, जहां आज की सुबह अपने साथ कई अहम गतिविधियां लेकर आई हैं। इस सफर की पहली मंजिल है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल विद्या वाहिनी योजना के अंतर्गत राजधानी की 200 छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक छात्राओं को साइकिलें दी जा चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य कक्षा 9 में पढ़ने वाली 1,40,000 से अधिक छात्राओं तक ये सुविधा पहुंचाना है। वहीं वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़े इलाकों में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। आर्थिक कार्य विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने क्षेत्र के लिए 2,574 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर पानी पहुंचाने वाले ट्रांसमिशन नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों को मजबूत किया जाएगा।
3: मूविंग ऑन टू चेन्नई, द ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन लॉन्च्ड अ प्रोग्राम फॉर इट्स ऑफिशियल्स टू हेल्प देम कोप विद स्ट्रेस, फटीग एंड द डिमांड्स ऑफ लॉन्ग वर्किंग आवर्स। द प्रोग्राम ट्रेन्स ऑफिशियल्स इन हैंडलिंग कम्युनिकेशन विद सीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द पब्लिक इन composed manner. A total of 350 officials participated on the first day. GCC Commissioner G.S. Samiran said officials worked from early morning till late at night while handling various development projects and providing essential civic services to nearly 1 crore residents. Another news that I have, Vaishnavi, from Chennai is the registrar of the Anna University, V. Kumarisan, has said that student visa restrictions by U.S. and European countries, West Asia conflict and low fees have resulted in more admissions under NRIs and children of Indian workers in Gulf countries quotas this year. As many as 160 students were enrolled in these two categories for the 2026-27 academic year against 136 students last year. The university charges $7,500 from those joining courses such as computer science, engineering, IT and electronics and communication engineering. For other courses, the fee is $3,750.
2: और अब चेन्नई से आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र सरकार ने पुराने भवनों के लिए नए पानी, ड्रेनेज या अन्य उपयोगिता कनेक्शन के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट और वर्षा जल संचयन की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। शहरी विकास विभाग की ओर से जारी सरकारी प्रस्ताव के अनुसार आवेदकों को निर्माण की अनुमति और वैध स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। इसके साथ ही संबंधित अधिकारी वर्षा जल संचयन तथा ठोस कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था का भी आकलन करेंगे।
3: मूविंग ऑन टू बेंगलुरु, कर्नाटका डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉ जी परमेश्वरा एक्सप्रेस डिस्मे एट द सीवियर ड्रॉट कंडीशंस इन अ फ्यू तालुकास ऑफ तुमकुरु डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन्स, ही सेड that a first-hand assessment will be conducted by him in these taluks. He clarified that barring the Malnad and coastal districts, most parts of the state have not received adequate rainfall. Due to rainfall in parts of Maharashtra, the Almati and Narayanpur reservoir, the water inflow has improved, and similarly, good rainfall in Kerala has improved inflow into KRS and Kabini reservoirs. Responding to a letter written by Union Minister V. Somanna regarding a proposal to set up a second airport in Tumakuru bordering Bengaluru, Dr. Parmeshwara said that DGCA has to examine its technical feasibility and utility factors for setting up an airport.

0: एयरपोर्ट।
1: और अब चलते हैं कोलकाता की तरफ। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए आज एक उच्च स्तरीय बैठक करेगी। बैठक की अध्यक्षता उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री तापस रॉय करेंगे। बैठक में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों, एमएसएमई समेत उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य की प्रस्तावित नई औद्योगिक नीति और भूमि नीति पर चर्चा होगी। सरकार इस महीने के अंत में नई औद्योगिक नीति की आधिकारिक घोषणा करने की तैयारी में है।
0: Moving on to Hyderabad, Mahavaruna Yagam is being conducted at Vijay Vihar in Nagarjuna Sagar under the Telangana state government. The Yagam is being performed with prayers for good and sufficient rainfall in Telangana. The organizers also prayed for the Krishna and Godavari rivers to flow to their full capacity, for reservoir and lakes to be filled, and for the well-being and prosperity of farmers. A total of 108 Vedic scholars, priests and Rithviks are taking part in the Yagam. The program began with the recitation of the four Vedas. Agni Pratishthapana was performed, followed by special homams. Chief Minister A. Revanth Reddy and his wife participated in the Purnahuti ceremony held in the afternoon. Vedic scholars and priests from the Sri Lakshmi Narasimha Swami Temple at Yadadri performed the rituals.
1: अब रुक करते हैं मौसम का, क्योंकि सावन की फुहारें देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज खुशनुमा बनाए हुए है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज आसमान आमतौर पर बादलों से घिरा रहेगा और मध्यम बारिश की संभावना है। तापमान अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के आसार हैं। यहां तापमान अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता में आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। शहर में तापमान अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।
0: Three metros are expected to have generally cloudy sky, beginning with Chennai. It is expected to have generally cloudy sky with moderate rain. The minimum temperature was 27 degrees Celsius and the maximum will be around 37 degrees. Bengaluru is expected to have a generally cloudy sky with light rain. The minimum temperature was 20 degrees Celsius and the maximum will be around 30 degrees. And Hyderabad is expected to have a partly cloudy sky with possibility of rain or thunderstorm or dust storm. The temperature will hover between a minimum of 24 degrees and a maximum of 33 degrees Celsius.
1: और श्रोताओं, हर तारीख अपने भीतर सिर्फ घटनाएं नहीं बल्कि बदलाव की कहानियां भी समेटे होती है। 11 अगस्त भी ऐसी ही तारीख है जब आसमान में सूर्य ग्रहण से लेकर राजनीति और लोकतंत्र के महत्वपूर्ण अध्याय तक कई घटनाएं इतिहास का हिस्सा बनी। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए जानते हैं आज के दिन की विशेषता।

0: ओम नमः शिवाय, पांच अक्षरों का ये मंत्र लेकिन अपने भीतर समेटे हुए है आस्था, शांति और आत्मचिंतन की एक पूरी भावना। आज सावन माह की शिवरात्रि है, वो पावन अवसर जब भगवान शिव की आराधना के लिए देश भर में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचते हैं और जलाभिषेक, पूजा और ध्यान के माध्यम से शिव को स्मरण करते हैं। शिव की आराधना का संदेश केवल पूजा तक सीमित नहीं है, भगवान शिव को अक्सर धैर्य, संयम, वैराग्य और परिवर्तन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। नीलकंठ का स्वरूप हमें याद दिलाता है कि जीवन में विष जैसी कठिन परिस्थितियां आए तो उन्हें धैर्य और विवेक के साथ संभालना भी एक साधना ही है। तो इस सावन की शिवरात्रि पर आइए आस्था के साथ एक छोटी सी सकारात्मक शुरुआत करें, कुछ पल अपने लिए निकालें, मन को शांत करें और ध्यान की गहराई में उतरें, क्योंकि शिव को केवल मंदिरों में ही नहीं बल्कि अपने भीतर भी खोजा जा सकता है। शिव हमारे भीतर की शांति, धैर्य और सकारात्मक चेतना का भी प्रतीक है।
1: जी बिल्कुल, वेरी वेल सेड वैष्णवी। एंड टुडे वी आर ऑल्सो ऑब्जर्विंग वर्ल्ड स्टील पैन डे, सेलिब्रेटिंग द स्टील पैन, अ यूनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेड फ्रॉम स्टील एंड डेवलप्ड इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। Known for its distinctive melodic sound, the steel pan has become an important symbol of cultural identity, creativity and musical heritage. And for our listeners who are not aware of what steel pan means, let's listen to this music and know what exactly a steel pan is.

0: Observed every year on August 11, the day celebrates the cultural and historical significance of the steel pan and its contribution to cultural, social and economic development. The day also highlights the steel pan's potential to promote education, youth empowerment, gender equality, mental health and well-being as well as sustainable development. Aur bahut sahi bola gaya hai ki music is best for mental health.
1: बिल्कुल सही कहा आपने रीनू. और अब चलते हैं आगे और इतिहास के पन्नों पर नजर डालते हैं.
0: जी, सो बिगनिंग विद द ईयर 1908 ऑन दिस डे खुदीराम बोस वाज एग्जीक्यूटेड बाय द ब्रिटिश इन मुजफ्फरपुर एट द एज ऑफ 18.
1: वहीं 1929 की बात करें तो बेसबॉल खिलाड़ी बेबी रूथ ने अपने करियर का 500वां होम रन लगाया और ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले प्रमुख लीग बेसबॉल खिलाड़ी बने. वहीं 1952 में आज ही के दिन हुसैन बिन तलाल को जॉर्डन का राजा घोषित किया गया. बाद में वे लंबे समय तक देश के सम्राट रहे.
0: ऑन दिस डे इन द ईयर 1960 शैड गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस. In 1961, Dadra and Nagar Haveli, the territory was integrated into the Republic of India following liberation from Portuguese colonial rule, later becoming a union territory.
1: और 1962 में सोवियत संघ ने वोस्तोक 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया. इसमें सवार कॉस्मोनॉट एंड्रियन निकोलाएव ने पृथ्वी की 64 परिक्रमाएं पूरी की थी.
0: 1973 डीजे कूल हर्क्स ब्रोंक्स पार्टी बिकेम अ लैंडमार्क इवेंट वाइडली रिगार्डेड एज द बर्थ ऑफ हिप हॉप.
1: और अब बात 1999 की. इस दिन यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दिया. इसे 20वीं सदी का अंतिम पूर्ण सूर्य ग्रहण माना जाता है. इस खगोलीय घटना ने वैज्ञानिकों के साथ साथ आम लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींचा.
0: जी,
1: और अब इतिहास के पन्नों से आगे बढ़ते हुए अब याद करते हैं उन व्यक्तित्वों का जिनका जन्म या निधन 11 अगस्त से जुड़ा है और जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया.
0: So yeah, we were just speaking about Khudiram Bose Vaishnavi. Today, the nation is paying homage to the revolutionary freedom fighter Khudiram Bose on his 119th Martyrdom Day. He was the first among the Indian revolutionaries in Bengal to be executed by the Britishers on this day of 1908.
1: बिल्कुल सही. उनका जीवन भले ही छोटा रहा लेकिन उनका साहस असाधारण था. जिस उम्र में युवा अपने सपनों की राह तलाशना शुरू करते हैं उस उम्र में खुदीराम ने देश को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया.
0: At just 18, he took part in revolutionary activities aimed at ending British colonial rule. In 1908, Khudiram, along with revolutionary Prafulla Chaki, attempted to assassinate British magistrate Douglas Kingsford in Muzaffarpur, Bihar. On April 30, 1908, the two revolutionaries threw a bomb at a carriage they believed was carrying Kingsford. However, Kingsford was not in the carriage. Two British women were killed in the blast. Prafulla Chaki later died by suicide while attempting to evade arrest, while Khudiram was captured by the British police. Following a trial, he was sentenced to death. Khudiram Bose was hanged at Muzaffarpur Central Jail on 11th August 1908. He faced death with remarkable courage and became an enduring symbol of patriotism, youthful courage and sacrifice. His supreme sacrifice continues to inspire generations and remains an important chapter in India's freedom struggle.
1: हम अपनी जान के दुश्मन को अपने जान कहते हैं. मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं. इन चंद पंक्तियों में ही राहत इंदौरी की शायरी का अंदाज दिखाई देता है. सीधी बात, गहरी सोच और समाज की नब्ज को पहचानने वाली आवाज. इंदौर की मिट्टी से निकली उनकी आवाज ने मुशायरों से लेकर हिंदी सिनेमा तक अपनी अलग पहचान बनाई. उनकी शायरी में आम आदमी की बेचैनी भी थी, सवाल भी और अपने समय को आईना दिखाने का साहस भी. राहत इंदौरी ने शायरी के साथ साथ फिल्मों के लिए भी कई यादगार गीत लिखे. चोरी चोरी जब नजरें मिली, नींद चुराए मेरी, कोई जाए तो ले जाए, बुमरो बुमरो और एम बोले तो, जैसे गीत उनके कलम से निकले. लेकिन उनकी असली पहचान उनके मुशायरों और मंचों से बनी जहां हजारों श्रोता उनकी आवाज और अंदाज़े बयां की मुरीद थे. राहत इंदौरी की याद में अब सुनते हैं फिल्म मिशन कश्मीर का लोकप्रिय गीत बुमरो बुमरो.

0: Today is the birthday of Christopher Hemsworth, who was an Australian actor. He rose to prominence playing Kim Hyde in the Australian TV series Home and Away before beginning a film career in Hollywood by taking on parts in the science fiction film Star Trek and the thriller Perfect Getaway. And He was currently playing Thor in beginning in Thor and most recently with Avengers Endgame in 2019, which established him as one of the leading and highest paid actors in the world. And today we are also remembering Wonga Philip Harris, who was an American comedian, actor, singer and jazz musician. He was an orchestra leader and a pioneer in radio situation comedy, first with Jack Benny, then in a series in which he co-starred with his wife. Harris is also noted for his voice acting in animated films. He played Baloo in The Jungle Book and Little John in Robin Hood. Here we're going to listen to a beautiful song which Phil Harris sang called That's What I Like About the South.
1: Won't you come with me to Alabama? Let's go see my dear old mammy. She's frying eggs and broiling hammy. That's what I like about the South. Down there you can make no mistake. Wear those nerves, I'm never shaky. Ought to taste a layer cakey. That's what I like about the South. She's got baked ribs and candied yams, those sugar-cured Virginia hams, basement full of those berry jams, and that's what I like about the South. Hot corn, bread, and black-eyed peas, you can eat as much as you please, cause it's never out of season. That's what I like about the South.
2: कुछ लेखक सिर्फ कहानियां नहीं लिखते, वे अपने समय, समाज और इतिहास की परतों को शब्दों में दर्ज कर देते हैं। ऐसे ही लेखकों में एक प्रमुख नाम है सर वीएस नायपॉल का। आज उनकी पुण्यतिथि है। नायपॉल की रचनाओं में उपनिवेशवाद, विस्थापन, पहचान और बदलते समाज जैसे विषय बार बार दिखाई देते हैं। उनकी चर्चित कृतियों में अ हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इन अ फ्री स्टेट और अ बेंड इन द रिवर शामिल है। साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें बुकर पुरस्कार और साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।
0: Today is the birth anniversary of Enid Mary Blyton, who was an English children's writer whose books have been among the world's bestsellers since the 1930s, selling more than 600 million copies. Blyton's books are still enormously popular Vaishnavi and they have been translated into 90 languages. Aur agar aapko kuch main books ki baat batau, to the famous books which she wrote was Noddy, Famous Five and Secret Seven series. Her first book, Child Whispers, a 24-page collection of poems, was published in 1922. Following the commercial success of her early novels, such as Adventures of the Wishing Chair and The Enchanted Wood, Blyton went on to build a literary empire, sometimes producing 50 books a year, in addition to her prolific magazine and newspaper contributions.
2: 11 अगस्त 1937 को जन्मे जॉन अब्राहम मलयालम सिनेमा के उन फिल्मकारों में थे जिन्होंने मुख्य धारा से अलग प्रयोगधर्मी और सामाजिक सरोकारों वाली सिनेमा बनाया। उनके चर्चित फिल्मों में अग्रहारतिल कजुकथई विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस तमिल फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ तमिल फीचर फिल्म का सम्मान मिला। उनका सिनेमा सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं था बल्कि समाज, रूढ़ियों और सत्ता संरचनाओं पर सवाल भी उठाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सिर्फ सुरों को साधते नहीं बल्कि संगीत की परंपरा को समझते, संवारते और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही विलक्षण संगीत साधक थे पंडित लालमणि मिश्र। आज ही के दिन 1924 को जन्मे पंडित लालमणि मिश्र एक कुशल सितार और विचित्र वीणा वादक होने के साथ साथ प्रखर संगीत शास्त्री और शिक्षक भी थे। विचित्र वीणा के वादन और उसकी तकनीक को आगे बढ़ाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके लिए संगीत केवल सुरों की प्रस्तुति नहीं बल्कि एक ऐसी साधना थी जिसमें कला के साथ ज्ञान भी उतना ही जरूरी था। संगीत की इसी गहराई और थी उनकी, मतलब सोचिए रानू, इस तरह की गहराई थी उनकी उनके वाद्य यंत्र की जो म्यूजिक वो बजाते थे, तो कितना ही खूबसूरत लगता होगा जब जो लोग सामने से सुनते होंगे
0: उसे। जी जी बिल्कुल। टुडे लेट्स आल्सो विश सुनील शेट्टी, it's his birthday today, and he's an Indian actor, film producer, television host and entrepreneur, primarily known for his work in Hindi cinema. Everyone knows him as Anna, and he has worked in so many movies, to name a few, like Waqt Hamara Hai, Mohra, Dilwale, Border and many more, Hera Feri, Fir Hera Feri, Dharkan and all. But here we're going to listen to a beautiful song picturized on Sunil Shetty. Dear listeners,

0: आज ही के दिन 1954 को जन्मे यशपाल शर्मा भारतीय क्रिकेट के उस सुनहरे दौर का हिस्सा थे जिसने 1983 में पहले बार विश्व कप भारत के नाम किया। वे मध्यक्रम के आक्रामक बल्लेबाज थे और भारत की 1983 विश्व कप विजेता टीम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने भारत के लिए 37 टेस्ट और 42 एक दिवसीय मैच खेले। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वे चयनकर्ता की भूमिका में भी रहे। उनकी कहानी हमें बताती है कि कभी कभी एक बड़ी जीत के पीछे सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि पूरी टीम की वर्षों की मेहनत होती है। और अब आगे बढ़ते हैं। सिनेमा बदलता रहता है रेणु, दौर बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिन्हें बदलते हुए हर दौर के साथ अपनी पहचान बनाए रखी है। ऐसे ही दिग्गज अभिनेता थे पी जयराज। मूक फिल्मों के दौर से अपने अभिनय सफर की शुरुआत करने वाले पी जयराज ने भारतीय सिनेमा को बोलती फिल्मों, ऐतिहासिक फिल्मों और बदलते दौर तक करीब 7 दशकों तक देखा और जिया। पर्दे पर उनकी मौजूदगी ने भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर से लेकर और उसके विकास तक की एक लंबी यात्रा को अपने भीतर समेटे रखा। भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आइए अब आपको सुनाते हैं उस दौर के एक मधुर संगीत।
1: या प्लीज डियर लिसनर्स एंजॉय दिस सुपर हिट सॉन्ग फ्रॉम द 1961 मूवी रजिया सुल्तान स्टारिंग जयराज, निरुपा रॉय, करण एंड ललिता पवार।

0: तो श्रोताओं, आज के आज सवेरे में बस इतना ही। उम्मीद है आज की मुलाकात आपके दिन में कुछ नई जानकारी और सकारात्मक ऊर्जा जरूर जोड़ गई होगी।
1: जी प्लीज स्टे ट्यून फॉर कमिंग अप नेक्स्ट समाचार प्रभात। नमस्कार।
2: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती। विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की।

0: और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है, इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
2: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल पर उत्तम गुणवत्ता के सही कीमत वाले उत्पाद की सही समय पर खरीद होती है। उन्होंने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10 वर्ष पूरे होने के उत्सव में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल शुरू होने से पहले सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और शासन की कमी थी। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने देश भर के सभी लोगों के लिए सरकारी खरीद में हिस्सा लेने के लिए निष्पक्ष और समान अवसर उपलब्ध कराए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
3: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त नाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार दिल्ली में हुए प्रदर्शन और देशभर में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन तथा इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में श्री रिजिजू ने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
4: मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोतो से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पालमार में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकतर भागों में कल रात से ही रुक रुक कर वर्षा जारी है।
5: हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई स्थानों पर भूस्खलन के कारण 106 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं, जबकि 66 बिजली ट्रांसफार्मर और 19 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं। हालांकि संबंधित विभागों के कर्मचारी इन व्यवस्थाओं को बहाल करने में जुटे हैं। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आगामी 24 घंटों के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर व मंडी में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 6 अन्य जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला व सोलन में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने भारी वर्षा की आशंका के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
6: अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी ने निर्देश दिए हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों और युवाओं को इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को श्रद्धांजलि है और लोगों से अपने घरों में गर्व और सम्मान के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आग्रह किया। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
7: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की एपी स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने एपी स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में आयोजित की जाएगी।
0: कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
8: धन्यवाद प्रियंका। झारखंड में युवाओं का अगस्त क्रांति मार्च राज्य में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ विद्यार्थियों के उग्र होते आंदोलन को

0: अमर उजाला सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पहली बार विधानसभा की चौखट तक पहुंचे आंदोलनकारी। दैनिक जागरण के शब्द हैं, लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोलों के बीच विद्यार्थियों ने घेरी विधानसभा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सरकार ने कहा विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा को तैयार, गृहमंत्री अमित शाह देंगे जवाब। वहीं अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है, पूरे मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते मतभेदों ने संसद की कार्यवाही को जिस बुरी तरह से प्रभावित किया है वे वाकई चिंताजनक है। सभी को समझना होगा कि संसद का समय राष्ट्रीय संपत्ति है, उसे गंवाना किसी पक्ष के लिए गर्व का विषय नहीं हो सकता। जीन्स पहनना लड़कियों की अपनी पसंद, दखल का किसी को अधिकार नहीं। दिल्ली उच्च न्यायालय के इस अहम फैसले को पंजाब केसरी सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की खबर है, अमेरिका में H-1B और L-1 वीजा धारकों को वीजा विस्तार के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा। नए नियम 9 सितंबर से लागू होंगे। हॉर्मुज जलमार्ग की नाकेबंदी से मंडरा रहा पर्यावरणीय खतरा। जनसत्ता ने लिखा है, फारस की खाड़ी में फरवरी से खड़े हैं 1500 से अधिक जहाज। जहाजों के बाहरी हिस्सों पर समुद्री जीवों और वनस्पतियों की परतें हो रही जमा। बंदूक छोटी, हुनर चमका। राजस्थान पत्रिका ने अपने 36वें में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के सम्मेलन में सुकमा जिले की आत्मसमर्पण कर चुकी 9 महिला नक्सलियों की पारंपरिक हथकरघा वस्त्र पहनकर रैंप वॉक करने की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। पत्र की एक और खबर ध्यान खींचती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद रूस के अंतरिक्ष यात्रियों ने भारत को स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई दी। संदेश में भारत के गगनयान मिशन का जिक्र करते हुए भारत रूस की दोस्ती की सराहना की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने स्पष्ट किया, उपयोगकर्ताओं के लिए डिजिटल भुगतान निःशुल्क रहेगा। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। झारखंड विद्यार्थी विरोध प्रदर्शन नेता देवेंद्र नाथ महतो तबियत बिगड़ने के बाद अस्पताल में भर्ती विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज के बाद आज भाजपा का बंद का आह्वान। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I am Shagun Chopra. The headlines. Parliament passes taxation and other laws amendment bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendra Nath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bandh today if a lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And now the news in detail. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the Money Bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system would remain free for consumers. The finance minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision

0: एमडी अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, कैनजेटिक वेस्ट बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली विल एक्सपीरियंस हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस टुडे. Rain has been occurring intermittently across most parts of Himachal Pradesh since last night. The Meteorological Center Shimla has issued a warning of heavy rainfall in mainly 9 districts of the state during the next 24 hours. A report.
1: Continuous rainfall across Himachal Pradesh has affected normal life. As many as 106 roads remain blocked due to landslides at several places, while 66 transformers and 19 drinking water supply schemes have also been affected. Concerned departmental teams are working to restore these essential services at the earliest. Meanwhile, the Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for rainfall in 3 districts, Kangra, Sirmaur and Mandi, during the next 24 hours. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for 6 other districts, Una, Bilaspur, Hamirpur, Chamba, Shimla and Solan. The administration has urged people to exercise caution in view of the possibility of heavy rainfall, stay away from rivers and streams and landslide prone areas and avoid unnecessary travel. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Uttar Pradesh, programs related to the Har Ghar Tiranga campaign will be organized with enthusiasm in all madrasas across the state. More from our correspondent.
2: Minister for Minority Welfare Danish Ansari has directed that students and youth studying in madrasas are to be encouraged to participate in the campaign. He said that programs involving the hoisting of the national flag, singing of national anthem, patriotic activities and awareness initiatives highlighting the contributions of great freedom fighters will also be organized in madrasas of a state. Yesterday, Chief Minister Yogi Adityanath led the Tiranga Yatra in Gorakhpur district. He said that Har Ghar Tiranga campaign is a tribute to the sacrifices of freedom fighters and urged people to display the national flag at their homes with pride and respect. The nearly 2.5 kilometer long yatra started from the Nagar Nigam premises to railway station chowk, with the CM undertaking the padyatra, carrying the tricolor in his hand with the sentiment of nation first. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
0: A massive wave of devotion has swept through Haridwar during the Kanwar Yatra. By yesterday evening, over 4,43,78,000 devotees had departed Haridwar carrying holy Ganga water for their respective destinations. Today, on the occasion of Savan Shivratri, a large number of devotees are offering water to Lord Shiv, marking the conclusion of the Kanwar Yatra. A report.
3: On the 12th day of the Kanwar Mela, 63,60,000 devotees departed Haridwar yesterday carrying holy Ganga water for their destination. Haridwar is witnessing a heavy rush of Kanwariyas today on the occasion of Savan Shivratri. The city is witnessing a strong presence of dark Kanwariyas. Security, traffic, health and sanitation arrangements are being closely monitored at various bathing ghats, Kanwar routes and sensitive locations to ensure a safe and orderly Kanwar Yatra. Meanwhile, in the state capital Dehradun, traffic has been diverted at several places due to the movement of large number of Shiv devotees on the occasion of Savan Shivratri. The devotees who have departed Haridwar with holy Ganga water are offering it to Lord Shiva at various Shiva temples at their respective destinations today. With this year's Kanwar Yatra is also coming to an end. Sakshi Singh, Akashwani News, Dehradun.
0: India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals, including 4 gold, on the opening day. More from our correspondent.
4: The Indian contingent has secured 4 gold, 4 silver and 9 bronze medals at the championship, which began on Sunday and will conclude on August 14. Indian fencers reached the podium in all 6 individual events across the sabre, foil and épée disciplines. In the men's sabre event, Nikhil Wagh won the gold medal while Lakshay Badisar secured silver. Ashwini Arya and Leshram Moramba bagged bronze medals. In men's foil, Tejas Patil won silver and Himash Sansam secured bronze. In men's Zepe, Lokesh Vemani claimed silver while Shaurya Ashwini and Godwin Enbakes won bronze. In the women's events, Joyce Ashita clinched gold in foil with teammate Kanak Lakshmi winning silver. Prachi Lohan won gold in women's epee while Nivedya Nair and Anupriya secured bronze medals. In women's sabre, Jeffelyn bagged gold, Akhari won silver and Shreya Gupta took bronze. India will look to build on its strong opening day performance in the remaining events of the championship. Yashasvi Kiryal for Akash. News, Delhi.
0: And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
5: Thank you, Shagun. Full Vande Mataram to ring out from Red Fort for first time on Independence Day, states Hindustan Times. While the Hindu reports the song will be rendered upon the Prime Minister's arrival after he will unfold the national flag and deliver his customary address to the nation. Youth power to drive I-Day the celebrations, says Economic Times. Yuva Shakti or youth power will be a key theme at the upcoming Independence Day celebration. Several young achievers, innovators, 19 Olympiad medalists and startup pros have been invited as special guests. Government ready for LS debate over protest. Shah to reply, says Rijiju, informs the Asian Age. Monsoon surplus in city, entire August rain in 10 days, the Times of India. The Delhi monsoon rainfall has turned surplus, recording 25% excess rainfall from June 1st to August 10th. The Indian Express informs physicist Deepak Dhar wins 2026 DRAC medal. The theoretical physicist from Uttar Pradesh has been named the co-recipient of DRAC medal, one of the highest honours in the field. Asiatic land population rises from 523 in 2015 to 891 in 2025, noted Bhupendra Yadav in a social media post, reports the Statesman. India's success in conserving Asiatic lion is a proud testament to the country's commitment to wildlife and biodiversity. And finally, as AI grips world, thrill of collecting vintage iconic computers growing, writes the Times of India. The paper adds the enthusiasm for the history of computers and all the stuff around it is growing. And with that, it's back to you, Shagun.
0: Thank you, Renu. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Parliament passes Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. Finance Minister Nirmala Sitharaman says digital payment system to remain free for consumers. Government notifies 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. Jharkhand student protest leader Devendranath Mahato hospitalized after his health deteriorates. BJP calls for Jharkhand Bund today over lathi charge on students. At least 132 people killed following 7.4 magnitude earthquake in Western Colombia. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Himachal Pradesh and East Rajasthan today. And India wins 17 medals, including 4 gold at Under 23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
6: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कौनैन हैदर। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सारिफीन के लिए डिजिटल अदायगी का निजाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैन अल-अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है, जिससे ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलंबिया में 7.4 शिद्दत के जलजले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनाकदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने बिल पर बहस के बाद इसे लोकसभा को वापस भेज दिया था। लोकसभा ने इस बिल को पहले ही मंजूर कर लिया था, जिसके बाद इसे बहस के लिए राज्यसभा भेजा गया था। चूंकि ये एक मालियाती बिल है, इसलिए राज्यसभा इसकी दफात में सिर्फ सिफारिशात कर सकती है और उसे लोकसभा को वापस भेज सकती है। लोकसभा इन सिफारिशात को कबूल या मुस्तरद करने का इख्तियार रखती है। राज्यसभा में बिल पर बहस का जवाब देते हुए वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने वाजे किया कि इस कानून के जरिए यूपीआई पर कोई टैक्स आयद नहीं किया जा रहा है और डिजिटल अदायगी का निजाम सारिफीन के लिए बदस्तूर मुफ्त रहेगा। वजीर खजाना ने बताया कि यूपीआई से मुतालिक तरमीम सिर्फ एक कानूनी इल्तिजाम फराहम करती है और इसके जरिए खुद सार्फीन पर कोई टैक्स या ट्रांजेक्शन चार्ज आयद नहीं किया गया है। मोहतरमा सीतारमन ने मजीद कहा कि हुकूमत का छोटे ताजरों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस आयद करने का कोई इरादा नहीं है क्योंकि छोटे ताजर यूपीआई की जामे और सभी की शमूलियत वाली तरक्की में मरकजी हैसियत रखते हैं। हुकूमत ने ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत देने की खातिर मजीद 11 बैन अल-अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है। इन नए मकामात में 9 जमीनी बंदरगाहें और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इस इजाफे के साथ ई वीजा रखने वाले अफराद के दाखिले की सहूलत फराहम करने वाली बैन अल-अक़वामी बंदरगाहों की मजमू तादाद 88 हो गई है। तफसील हमारे नामा निगार से।
7: वजारत दाखिला ने कहा कि नए नोटिफाई किए गए मकामात में भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और 9 जमीनी पोर्ट अगरतला अटारी दारंगा गेड़े गोहजाडांगा हरिदासपुर जयगांव दाऊकी और मोरे शामिल हैं। वजारत ने कहा कि इस इकदाम से बैन अल-अक़वामी मुसाफिरों में ई वीजा की सहूलत की मकबूलियत और इसकी इफादियत में मजीद इजाफा होगा। तकरीबन 95% ई वीजा दरखास्तों पर 72 घंटे से भी कम वक्त में कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाती है। 2014 में 43 मुल्कों के शहरियों के लिए शुरू की गई ई वीजा सहूलत को अब 172 मुल्कों के शहरियों तक तौसी दे दी गई है। फिलहाल ये सहूलत 17 जहरी जुमरों के तहत दस्तियाब है जिनमें सियाहती कारोबारी तिब्बी तलबा ट्रांजिट क्रूज और कोह पैमाई के वीजे शामिल हैं। वजारत ने बताया कि भारत अब तकरीबन 78% वीजे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जारी करता है। नई दिल्ली से ईशान यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
6: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज लोकसभा में केरला का नाम तब्दील करने से मुतालिक बिल 2026 और कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश करेंगे जिसका मकसद कौमी कोऑपरेटिव तरक्याती कॉरपोरेशन एक्ट 1962 में मजीद तरमीम करना है। उधर राज्यसभा में आज ट्रिब्यूनल्स इस्लाहात बिल 2026 को गौर खोज और मंजूरी के लिए पेश किए जाने का इम्कान है। कानून और इंसाफ के वजीर मुमलकत अर्जुन राम मेघवाल ये बिल पेश करेंगे। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत तकर्रुरी और सर्विस की मुद्दत के साथ साथ ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज में कारकर्दगी आजादी शफाफियत और यकसानियत को बेहतर बनाना है। इस कानून में कौमी ट्रिब्यूनल्स कमीशन के कयाम की तजवीज भी दी गई है। झारखंड में झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के खिलाफ तलबा का एहतजाज कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहा। बीजेपी ने कल असेंबली घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है। पेश है एक रिपोर्ट।
8: कल तकरीबन 10 घंटे तक जारी रहने वाले असेंबली घेराव के दौरान मुजाहिरीन असेंबली के गेट नंबर 1 के करीब पहुंच गए। इलाके को खाली कराने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। तलबा के एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो जो गुज़िश्ता 9 दिन से भूख हड़ताल पर हैं असेंबली एहतजाज के दौरान तबीयत खराब होने के बाद रांची के सदर अस्पताल में दाखिल कराए गए। डॉक्टरों के जानिब से इनकी सेहत की देखभाल की जा रही है और उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। बीजेपी ने एहतजाज करने वाले तलबा पर जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल के खिलाफ आज रियासत भर में बंद की अपील की है और इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों की सीबीआई जांच के अपने मुतालबे को दोहराया है। रांची के डिप्टी कमिश्नर मंजुनाथ भजंतरी ने लोगों से अपील की है कि वो आज का बंद पुरअमन तरीके से करें। उन्होंने खबरदार किया है कि अमन और आमान में खलल डालने या तशद्दुद को भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। इंतजामिया ने रांची के अहम मकामात पर सिक्योरिटी के इंतजाम मजीद सख्त कर दिए हैं और मुआशरे के तमाम तबकात से अमन बरकरार रखने और पुलिस और जिले इंतजामिया के साथ ताउन करने की अपील की है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
6: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कोलंबिया के मगरबी खित्ते में कल 7.4 शिद्दत के जलजले में कम 132 अफराद की मौत हो गई जबकि 570 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक इस जलजले का मरकज चोको खित्ते में सैन जोस डेल पाल्मर के करीब वाक था जो राजधानी बोगोटा से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर मगरब में वाक है। इस जलजले से सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग मलबे के नीचे दब गए। कोलंबिया के सदर एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने जलजले के बाद बहाली की कार्रवाईयों के लिए माली मदद की फराहमी में तेजी लाने की खातिर इमरजेंसी

0: ऐलान किया है। इतला है कि मुल्क भर में 20 से ज्यादा म्यूनिसपैलिटियां जलजले से मुतासिर हुई हैं। पेरेरा, केबडो, काली और मनीजालेज शहरों को जलजले से नुकसान पहुंचा है। कोलंबिया के पड़ोसी ममालिक इक्वाडोर और पनामा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए, अगरचे वहां किसी बड़े नुकसान की इत्तला नहीं है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगाई, मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के दूर दराज इलाकों में शदीद बारिश होगी। इसी तरह की सूरतहाल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के दौरान मगरबी हिमालयी खित्ते के दूरदराज इलाकों में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश होने का इम्कान है। हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में कल रात से वक्फे से बारिश हो रही है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटे के दौरान रियासत के 9 जिलों में शदीद बारिश की वार्निंग जारी की है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पूरे हिमाचल प्रदेश में मुसलसल बारिश की वजह से मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कई मकामात पर तोदे गिरने से तकरीबन 106 सड़कें बंद हैं, जबकि 66 ट्रांसफार्मर्स और 19 पीने के पानी की सप्लाई की स्कीमें भी मुतासिर हुई हैं। शिमला के मौसमियाती मरकज ने अगले 24 घंटे के दौरान 3 जिलों कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में बारिश के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 6 दीगर जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, शिमला और सोलन में भी शदीद बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंतजामिया ने लोगों पर जोर दिया है कि वो शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर मोहतात रहें और नदियों, नालों और लैंडस्लाइड के खतरे वाले इलाकों से दूर रहें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा मुहिम से मुतालिक प्रोग्राम रियासत के तमाम मदरसों में जोश खरोश के साथ मुनक्किद किए जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: अक़लियती बहदूद के वजीर दानिश अंसारी ने हिदायत दी है कि मदरसों में पढ़ने वाले तलबा और नौजवानों को इस मुहिम में शिरकत करने के लिए उनकी हौसला अफजाई की जाए। उन्होंने कहा कि रियासत के मदरसों में कौमी परचम फहराने, कौमी तराना गाने, हुबुल वतनी और अजीम मुजाहिदीन आजादी के तावुन से जुड़ी बेदारी के प्रोग्राम का इनेकाद भी किया जाए। कल वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले में तिरंगा यात्रा की कयादत की। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा मुहिम मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत है और लोगों से अपने घरों में फक्र के साथ कौमी परचम लहराने की गुजारिश की। खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
0: सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी तादाद में अकीदतमंद आज कांवड़ यात्रा के इख्तिताम पर भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: कांवड़ मेले के 12 दिन कल 63,60,000 अकीदतमंद हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना हुए। हरिद्वार में डाक कांवड़ की बड़ी तादाद मौजूद है। इस यात्रा को महफूज तर बनाने की खातिर स्नान के बड़े घाटों, कांवड़ यात्रा के रास्तों और हसास मकामात पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक, सेहत और सफाई सुथराई के इंतजाम का गहराई से जायजा लिया जा रहा है। राजधानी देहरादून में मुख्तलिफ मकामात पर कांवड़ियों की आमदोरफ्त के रास्तों में तब्दीली की गई है। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर रवाना होने वाले अकीदतमंद आज अपने अपने इलाकों में मुख्तलिफ शिव मंदिरों में भगवान शिव को जल पेश कर रहे हैं। इस तरह इस साल कांवड़ यात्रा इख्तिताम को पहुंच रही है। देहरादून से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: नाइजीरिया के लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने अपनी मुहिम का जबरदस्त तरीके से आगाज करते हुए 4 सोने के तमगों समेत 17 तमगे हासिल किए। तलवारबाजी की इस चैंपियनशिप का आगाज इतवार को हुआ था, जिसमें भारत ने 4 सोने के, 4 चांदी के और 9 कांसे के तमगे जीते। खवातीन के जुमरे में जॉयस अशिष्टा ने फॉइल में सोने का, जबकि कनक लक्ष्मी ने चांदी का तमगा हासिल किया। प्राची ने AP में सोने का, जबकि निवेदिया नायर और अनुप्रिया ने कांसे के तमगे जीते। सेबर जुमरे में जेफलिन ने सोने का, आकारी ने चांदी का और श्रेया गुप्ता ने कांसे का तमगा हासिल किया। ملک آج انقلابی مجاہد آزادی خدیرام بوس کے 119ویں یوم شہادت پر انہیں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے. وہ بنگال کے ان بھارتی انقلابیوں میں پہلے فرد تھے جنہیں 1908 میں آج ہی کے دن برطانوی حکومت

0: हुकूमत की जानिब से फांसी दी गई थी। इस नौजवान इनकलाबी को याद करने और उनकी अजीम कुर्बानी को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का अहतमाम किया गया है। खुदीराम बोस इंतहाई कम उम्र में भारत की तहरीक आजादी में शामिल हुए और बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ जद्दोजहद के सबसे कम उम्र शोहदा में से एक बने। सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने बरतानवी नौ आबादियाती राज को खत्म करने के मकसद से की जाने वाली इनकलाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया कौनन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाय होने वाले आज के उर्दू अखबारात की छह सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के हवाले से सुर्खी लगाई है। सरकार तलबा के मसाइल पर बहस के लिए तैयार है, अपोजिशन सरकार के मौकिफ को ध्यान से सुने, हंगामे से बचे। अखबार इनकलाब की एक सुर्खी है, आसाम में सैलाब की सूरत हाल संगीन, गोलाघाट में 52,000 अफराद मुतासिर। इसी अखबार ने कोलंबिया में आए तबाहकुन जल्जले और इसमें मुतअद्दिद हलाकतों की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। एशियाई शेरों की तादाद 10 साल में बढ़कर 891 हो गई। रोजनामा प्रताप ने वजीर माहौलियात और जंगलात भूपेंद्र यादव के इस बयान को सफे अव्वल पर जगह दी है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने टैक्सेशन और दीगर कवानीन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कहा है कि सार्फीन के लिए डिजिटल अदायगी का निजाम मुफ्त रहेगा। हुकूमत ने मजीद 11 बैनुल अक़वामी बंदरगाहों को नोटिफाई किया है, जिससे ई वीजा रखने वाले गैर मुल्की शहरियों को भारत में दाखिल होने की इजाजत होगी। झारखंड के तलबा एहतजाज के लीडर देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। तलबा पर लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने आज झारखंड बंद की अपील की है। मगरबी कोलम्बिया में 7.4 शिद्दत के जल्जले में कम से कम 132 अफराद हलाक हो गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और नाइजीरिया के शहर लागोस में मुनक़िदा 23 साल की उम्र तक की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने सोने के 4 तमगों समेत कुल 17 तमगे जीते हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने, जो मैं या तुम समझ लें वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था तुम्हारा कर लिया मैंने। मुझे विश्वास की ताकत दिल में ली और म्यूजिक से दिल लगी करते हुए कीजिए जीवन के सफर को खूबसूरत। मुक्ता के साथ ये है म्यूजिकल दिल लगी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अच्छा मजा आ रहा है ना, गजब का है दिन वाकई। और ये जो मॉनसून है, इस मौसम का पूरा पूरा आनंद उठाना है और खुद से भी बात करनी है। जब मौसम इतना अच्छा हो ना, तो बेस्ट टाइम होता है अपने से बात करने का दोस्त। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। सुकरात यूनान के बहुत ही प्रसिद्ध फिलोसोफर थे, हम सब जानते हैं। हमने सुना है कि बहुत विवेकशील, विनम्र, संयमित और इंटेलिजेंट थे सुकरात, लेकिन बाहर की खूबसूरती उनमें बिल्कुल नहीं थी। एक वक्त की बात है कि वो अपने शिष्यों के साथ बैठे कुछ चर्चा कर रहे थे, तभी वहां एक व्यक्ति आया और दावा किया कि वो चेहरा देखकर इंसान का कैरेक्टर, उसका व्यक्तित्व क्या है वो बता सकता है। वो सुकरात को नहीं जानता था, तो सबने कहा कि भाई इनके बारे में कुछ बताइए। अब उस इंसान ने प्रिडिक्ट करना शुरू किया। सुकरात के सिर का आकार देखकर बोला कि बहुत लालची हैं ये, उनके नाखून देखकर बोला बहुत गुस्से वाले भी हैं ये। कहने का भाव ये कि शरीर की बनावट के अनुसार उसने सुकरात में 10 कमियां निकाल दी। अब शिष्य उसे धमकाने लगे। तब सुकरात मुस्कुराए और बहुत ही खूबसूरत बात बोले। वो कहने लगे कि इस व्यक्ति ने सब सच कहा है, इंसान बुराइयों का पुतला है। आप सबको मुझमें वो दुर्गुण इसलिए दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि मैं अपने विवेक से, अपने संयम से उन पर अंकुश लगाए हुआ हूं। जिस दिन मैंने अपने पेशेंस छोड़ दिए, अपने विवेक को खत्म कर दिया, ये सब बुराइयां आपको दिखने लगेंगी। तो जनाब, अगर कुछ कमी आप में भी है तो उसे साधने की कोशिश कीजिए। गुस्से पर कंट्रोल करके धैर्यवान बना जा सकता है, अहंकार को छोड़कर विनम्र हुआ जा सकता है। बुराई होना इतना बुरा नहीं जितना इसे न पहचान पाना और इसे पहचान करके भी इसे दूर न करना है।

अगर दिल को दिल की जुबान पढ़नी आ जाए ना जनाब, तो ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है और लड़ाई झगड़े हो ही ना, प्यार बना रहे। इस दिल की मासूमियत को आप भी जिंदा रखिए। फिलहाल मुक्ता को दीजिए इजाजत, हिंदी और अंग्रेजी में होंगे समाचार और उसके बाद म्यूजिकल दिल लगी होगी इंदु के साथ। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता और पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत की विनिर्माण व्यवस्था को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना तथा विनिर्माण गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है। वित्त मंत्री ने कहा कि विधेयक में डिजिटल लेनदेन पर कोई कर या शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं लगाने का आश्वासन दिया। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल है। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और

0: और अच्छे सुशासन की कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में कल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल एनएसपी के माध्यम से पूरे देश के कृषि विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप जारी की। इसके अंतर्गत 6000 से अधिक विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 21 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है। रांची में कल प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो का तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
1: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज का इस्तेमाल किया। पिछले 9 दिनों से अनशन पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की विधानसभा घेराव के दौरान तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें रांची के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त चुनाव भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। प्रशासन ने रांची के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने आपातकाल की घोषणा कर दी। भूकंप का केंद्र बोगोटा से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में था। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कल शाम तक 4,43,78,000 से अधिक श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो चुके थे। सावन शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर कांवड़ यात्रा का समापन कर रहे हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the money bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The government has notified 11 more international ports enabling e-visa holder foreigners to enter India. The Home Ministry said that it includes 9 land ports and 2 airports. This includes airports at Bhopal and Tirupati and land ports at Atari and Agartala. The ministry said that the addition of ports further enhances the attractiveness and utility of electronic visa. It noted that India provides approximately 95% e-visas applications in less than 72 hours. With the latest addition, the total number of international ports enabling entry of e-visa holder foreigners has increased to 88, including 37 airports, 38 seaports and 13 land ports. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The Jharkhand student agitation over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations continued for nearly 10 hours yesterday. The BJP has called for a statewide bandh today against police action during yesterday's Assembly Gherao. The Assembly Gherao, which continued for nearly 10 hours yesterday, saw protesters reaching the vicinity of gate number 1. Police used water cannons, tear gas and lathi charge to clear the area. Nation is today paying homage to the revolutionary freedom fighter Khudiram Bose on his 119th Martyrdom Day. He was the first among the Indian revolutionaries in Bengal to be executed by the Britishers on this day of 1908. Various programs have been organized across the country to remember the young revolutionary and pay tribute to his supreme sacrifice. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for Himachal Pradesh and East Rajasthan for heavy to very heavy rainfall for today. According to IMD, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Chhattisgarh, Gangetic West Bengal, Gujarat, Haryana, Chandigarh and Delhi will experience heavy rainfall at isolated places today. India has made a strong start at the Under-23 Commonwealth Fencing Championship in Lagos, Nigeria, winning 17 medals, including 4 gold, on the opening day. And that is the end of this news bulletin.

और उसके बाद जब हम ये कहते हैं कि दिल है हिंदुस्तानी, तो कभी क्या फील किया है जहां पे ये दिल होता है। आज हम जो सांस लेते हैं ना आजादी की फिजा में, न जाने कितने गुमनाम शहीद हुए हैं इसकी बुनियाद में। उसी में एक नाम है उषा मेहता का, जो सिर्फ 22 साल की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो नामक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाने के लिए फेमस रही। सिर्फ 8 साल की उम्र में साइमन कमीशन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। उषा बेन के नाम से ये जानी जाती है। 1998 में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

नए शहर में कई बार हम यूं ही मिलते हैं और कई बार पुरानी किताबों की तरह भी मिलते हैं। कोई है जो बिना बात के हमसे मिलता है तो वो हम हैं, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। ये है म्यूजिकल दिल्ली की और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे

अब अगर हम बात करेंगे बारिशों की, तो आप कहेंगे देखिए हम बारिश बहुत एंजॉय करते हैं, तो बारिश को एंजॉय करना बनता है तब तक जब तक कि हम उसे फंस न जाएं, तब तक अच्छा लगता है। वैसे जाके कोई पूछे उनसे जिनके यहाँ बारिश नहीं होती, पता है आपको, गर्मी से बचने के लिए दुबई में एक ऐसी सड़क बनाई गई है जहाँ पे 24 घंटे बारिश होती है। बस आपका जब दिल चाहे आप वहां जाएं और जाकर के आराम से बारिश का आनंद ले सकते हैं, जो आनंद इस वक्त हमारे यहाँ फ्री में मिल रहा है। ये है म्यूजिकल दिल्ली, बारिशों की बातें, बारिशों की कविताएं, बारिशों पे चर्चा। आय हाय, एक गर्म चाय की प्याली के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े मिल जाएं और आप कहेंगे सुबह सुबह, तो हम कहेंगे हाँ हाँ।

0: की हवा
1: वैसे पता है मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब भी हम बाजार जाते हैं बहुत सारी चीजें देखते हैं, विंडो शॉपिंग करते हैं और एंड में कुछ पसंद नहीं आता तो फिर अंदर से आवाज आती है, आय हाय चलो अच्छा हुआ पैसे बच गए। मतलब कई बार टू मच पॉजिटिविटी लगती है, लेकिन फिर भी हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि जो पैसा है ना, धन एक अद्भुत आविष्कार है भाई। इसके लिए काफी सम्मान है हमारे मन में, काम करें पैसा कमाएं और उसके बाद बड़े सारे चांसेस मिलते हैं। वैसे जितना कमाना जरूरी है उतना जरूरी सेव करना भी है, और उससे ज्यादा जरूरी है खर्चा करना, क्योंकि आनंद बड़ी चीज है। पैसा आता रहे जाता रहे आता रहे, तभी तो इसको कहते हैं करंट, बहता रहे तभी अच्छा है। अब बात आती है प्यार की, शांति की, सेटिस्फेक्शन की, दोस्ती की, तो ये आप डिसाइड कीजिए कौन सी जगह रखना है।

तो फिर आप गाना गा सकते हैं हमारे साथ। ये है म्यूजिकल दिल्ली और हमारे स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है 9:31 और ठीक 24 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे। अगर आपको किसी की याद आ ही रही है तो फिर याद कर लीजिए। झगड़ा किसी और से और रूठना अपने आप से, ऊंची आवाज में बात किसी और से और खामोशी अपने आप से, ये नुकसान का सौदा तो नहीं है।

क्या हुआ? ब्रेकअप के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो सही सोच रहे हैं, क्योंकि उसका स्टाइल अब बदल रहा है। दिल तो जनाब अब भी टूटते हैं, चेहरा अब भी चांद लगता है, लेकिन चीजें थोड़ी थोड़ी चेंज हो गई हैं। हम अब अनफॉलो करते हैं, डिजिटल दुनिया में प्यार करते हैं, रिश्ते स्क्रीन पे बनते हैं और वहीं पे टूट जाते हैं। ऑनलाइन लाइफ है लास्ट सीन, ब्लू टिक या मैसेज कर देना जवाब नहीं, बड़ी सारी चीजें हो गई हैं, कंफ्यूजन होती है हमें तो।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
3: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
3: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर।
5: हर घर

अनजानी प्यास का तो पता नहीं, लेकिन कई बार ना अनजाने लोग भी इतनी दुआएं दे जाते हैं कि दिन बन जाता है। पता है कभी कभी कुछ कहीं भी मिल सकता है, इसमें तो मैं यकीन करती हूँ। मेट्रो में मैंने सिर्फ एक सीट ऑफर की आंटी जी को, और उसके बाद दुआओं का सिलसिला ऐसा चला कि अभी तक फील गुड फैक्टर चल ही रहा है। यह है म्यूजिकल दिल्ली, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। कहने का मतलब यही है कि जो हम अच्छी बात है, अच्छी सोच है, दुआएं हैं, विश है, वो जब भी हमें मौका लगे अच्छा अच्छा कुछ कर लेना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी फीलिंग्स देने के लिए तो चारों तरफ है ना, तो फिर अपने आप को उसमें क्यों फंसाना। म्यूजिकल दिल्ली में आप हमें मेल कर सकते हैं FM Gold AIR Delhi @gmail.com, और उसके बाद ये गाना भी सुन सकते हैं।

0: क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के बारे में, जिसके तहत देश के युवाओं को टॉप 500 कंपनियों में 12 महीने का प्रोफेशनल काम का अनुभव दिया जाता है और इसमें जिनका सिलेक्शन हो जाता है उन यंगस्टर्स को 9,000 पर मंथ स्टाइपेंड और 6,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलती है। आवेदन के लिए जो ऑफिशियल पोर्टल है पीएम इंटर्नशिप पोर्टल, वहां पे जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या है और इसमें हम किस तरह से लाभ उठा सकते हैं।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
0: हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में और अगर आपको जल भराव से कोई दिक्कत हो रही है तो फिर जल भराव पर होने पर नगर निगम में आप शिकायत करना चाहते हैं तो फिर नंबर नोट कर लीजिए 311 नगर निगम के ऐप से और हेल्पलाइन नंबर है 155305। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश भी कर सकते हैं।

यूं ही प्यार करते रहिए, प्यार में डूबे रहिए, लेकिन मौसम बदल रहा है इसका ध्यान रखिएगा। अभी भी कई सारे लोग आपको दिख जाएंगे मास्क पहने हुए, जो कि ये एक अच्छी आदत है। खांसी, जुकाम, सांस फूलना, अगर ये सब चीजें हो रही हो तो फिर इनको नजरअंदाज ना करें। 223वां दिन है आज, 11 अगस्त, अभी भी 142 डेज बाकी है भाई।

बहकी जनाब लेकिन होश के साथ, और दीजिए बस थोड़ी सी हमें इजाजत, 10:30 बजे फिर से आपसे मिलेंगे। समय है ये अभी समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। गृह मंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवा नियुक्ति, प्रशासन तथा कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल विधेयक पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। इनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया है कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे तथा अटारी और अगरतला की स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम पोर्टल उचित गुणवत्ता, उचित मूल्य और उचित समय पर सही उत्पाद की खरीद दर्शाता है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में जेम पोर्टल के 10वें स्थापना दिवस पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि जेम के आने से पहले सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था, खरीद में पारदर्शिता नहीं थी और अच्छे सुशासन की

0: कमी थी। श्री गोयल ने कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक ऑर्डर से 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के सामान और सेवाओं की खरीद में सहायता मिली है। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो को तबियत बिगड़ने के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। राज्य में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर श्री महतो तो 9 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
1: कांवड़ मेले के 12वें दिन कल 63,60,000 शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना हुए। आज सावन शिवरात्रि के अवसर पर हरिद्वार में कांवड़ियों की भारी भीड़ है। मुख्य रूप से डाक कांवड़ियों की आवाजाही से शहर शिवमय हो गया है। कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रमुख स्थान घाटों, कांवड़ मार्गों और संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य और स्वच्छता व्यवस्थाओं की निगरानी की जा रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। मौसम विभाग ने राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक बहुत तेज वर्षा की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 and the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing in the Lok Sabha today. Mr. Shah will move a motion for consideration of the bill seeking to alter the name of the state of Kerala. He will also move the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, which seeks to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. Rajya Sabha is scheduled to take up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal will move the bill. The NDA Parliamentary Party's weekly meeting Mangal Milan is underway at the Parliament House premises in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen and other NDA leaders waved Tiranga during the meeting. Parliament has passed the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026 after Rajya Sabha returned the bill to Lok Sabha following discussion. The Lok Sabha had earlier passed the bill, which was then sent to Rajya Sabha for discussion. Since it is a money bill, Rajya Sabha can only make recommendations on its provisions and return it to the Lok Sabha, which may accept or reject those recommendations. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Finance Minister Nirmala Sitharaman made it clear that the legislation does not impose any tax on UPI and the digital payment system will remain free for consumers. The Finance Minister stated that the UPI-related amendment is only an enabling provision and does not itself impose any tax or transaction charge on users. Ms. Sitharaman also said that the government doesn't intend to impose any MDR charges on small merchants as they remain central to UPI's inclusive growth.
3: It does not impose any tax or transaction charge on UPI users. It enables the government to specify through notification the electronic payment modes that will continue to receive statutory protection against charges. The UPI and Services Steering Committee, headed by the National Payments Corporation of India, will consider and decide whether any MDR should be introduced and if so, its scope and structure. Therefore, no MDR framework has yet been finalized.
2: The Jharkhand student agitation over alleged irregularities in JPSC and JSSC examinations continues.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज किए। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आव्रजन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करेगा। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर-23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं।
1: गृह मंत्रालय की अधिसूचना में 9 जमीनी बंदरगाह और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी व अगरतला के जमीनी बंदरगाह शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में मंजूरी दे दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। इनमें 37 हवाई अड्डे, 38 समुद्री बंदरगाह और 13 जमीनी बंदरगाह शामिल है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के जबरदस्त भूकंप के कारण 132 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। कई लोगों के मलबे के नीचे दबे होने की खबर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दे लास प्रिएजा ने राहत कार्यों के लिए धन तेजी से जारी करने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। भूकंप का केंद्र राजधानी बोगोता से लगभग 400 किलोमीटर पश्चिम में चोको क्षेत्र के सैन होस डेल पाल्मा में था। भूकंप के झटके पड़ोसी देशों इक्वाडोर और पनामा में भी महसूस किए गए, हालांकि वहां बहुत कम नुकसान की खबर है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने द्वीप के आसपास चीन की सैन्य गतिविधि की सूचना दी है। अपनी नवीनतम दैनिक सुरक्षा रिपोर्ट में मंत्रालय ने कहा है कि स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA के 2 विमानों, सेना, नौसेना PLAN के 7 जहाजों और 6 सरकारी जहाजों की गतिविधि देखी गई। इसराइल में भारत के राजदूत JP सिंह ने इसराइल की अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोग एजेंसी माशाफ की

0: प्रमुख एनाद शलीन से यरूशलम में मुलाकात की। इस दौरान एजेंसी के माध्यम से भारत इसराइल विकास साझेदारी को अधिक विस्तार देने और उसे मजबूत करने पर बातचीत हुई। चर्चा में कृषि उत्कृष्टता केंद्रों, कृषि और जल प्रबंधन में क्षमता निर्माण और मत्स्य पालन में सहयोग के नए अवसरों सहित कई क्षेत्रों में सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। दोनों पक्षों ने साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडाणी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज कर दिए हैं। ब्रुकलिन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश निकोलस गैरोफिक्स ने संघीय अभियोजकों के मामले को रद्द करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया।
1: न्यायाधीश ने आरोप रद्द करने के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा था। अडानी द्वारा नवंबर 2024 में अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश के वादे के इस फैसले को प्रभावित करने पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया था। न्यायाधीश गारोफिस ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि निवेश के वादे ने न्याय विभाग के फैसले में कोई भूमिका नहीं निभाई। उन्होंने कहा कि आरोपों को रद्द करने के अभियोजकों के फैसलों की समीक्षा करने में अदालतों की भूमिका सीमित है। गौतम अडानी ने अदालत के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनौतीपूर्ण दौर में भी सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास अटूट रहा। अडानी ने उन सभी लोगों का आभार व्यक्त किया जिन्होंने उन पर न्याय व्यवस्था और भारत की न्याय क्षमता पर अपना विश्वास बनाए रखा। उन्होंने कहा कि अडानी समूह राष्ट्र निर्माण और बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आवर्जन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करने जा रहा है। ये कदम दक्षता बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
2: अमेरिका की नागरिकता और आवर्जन सेवा VSCIS ने फेडरल रजिस्टर में प्रकाशित नए नियम में कहा है कि जो फॉर्म कम से कम 180 दिन से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं, उन्हें ऑनलाइन जमा कराना अनिवार्य होगा। नए नियमों के अंतर्गत आवेदकों को कम से कम 60 दिनों का नोटिस देने के बाद उनके आवर्जन फॉर्म को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इन परिवर्तनों से ग्रीन कार्ड आवेदन और नवीनीकरण, पारिवारिक आवर्जन याचिकाएं, नागरिकता आवेदन, शरण दावे, रोजगार प्राधिकरण और अस्थायी संरक्षित स्थिति आवेदनों सहित कई आवर्जन लाभ प्रभावित हो सकते हैं। आवेदकों को अब USCIS ऑनलाइन खाते का उपयोग करना होगा। वे या तो फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या सहायक दस्तावेजों के साथ भरे हुए फॉर्म की PDF फाइल अपलोड कर सकते हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: तुर्की की संसद ने हजारों कुर्द उग्रवादियों को सशर्त माफी देने वाले कानून को स्वीकृति दे दी है। इससे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के साथ शांति पहल को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। इस कानून के अंतर्गत कुर्द उग्रवादियों के पूरी तरह से हथियार डालने पर ही माफी मिलेगी। कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने पिछले वर्ष तुर्की सरकार के खिलाफ दशकों से चल रहे अपने सशस्त्र अभियान को खत्म करने की घोषणा की थी। ये फैसला जेल में बंद उसके नेता अब्दुल्ला उकलान के आह्वान के बाद लिया गया। इस निर्णय के बाद तुर्की और इराक के बीच संबंध मजबूत होने की संभावना है। और अब खेल समाचार के साथ हैं सरफिरोजी।
3: नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। पुरुषों की सेबर स्पर्धा में निखिल वाघ ने स्वर्ण और लक्ष्य बटसेर ने रजत पदक हासिल किया। अश्विनी आर्य और लैशराम मोराम्बा ने कांस्य पदक जीते। पुरुषों की फाइल स्पर्धा में तेजस पाटिल ने रजत और हिमांश सनासम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। पुरुषों की AP स्पर्धा में लोकेश विमानी ने रजत और शौर्य अश्विनी तथा गॉडविन एंकबेस ने कांस्य पदक हासिल किया। महिला वर्ग में जॉयस अशिता ने फाइल स्पर्धा में स्वर्ण और कनाग लक्ष्मी ने रजत पदक प्राप्त किया। प्राची लोहान ने AP स्पर्धा का स्वर्ण और निवेद्या नायर तथा अनुप्रिया ने कांस्य पदक हासिल किए। सेबर स्पर्धा में जेफरलिन ने स्वर्ण और आखिरी शर्मा ने रजत तथा श्रेया गुप्ता ने कांस्य पदक जीता। उधर FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होंगे। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त के बीच

प्रक्षेपण होने के बाद रॉकेट में खराबी आ गई थी। चीन ने लॉन्ग मार्च रॉकेट से सैकड़ों मिशन लॉन्च किए हैं। भारतीय और अमेरिकी नौसेना विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास 2026 कल केरलम के कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू हुआ। यह अभ्यास 14 अगस्त तक चलेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए। पश्चिमी कोलंबिया में 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप में 132 लोगों की मौत। अमेरिका की संघीय अदालत ने भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आपराधिक आरोप खारिज किए। अमेरिका जल्द ही ग्रीन कार्ड, नागरिकता और शरण सहित कई आवर्जन लाभों के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य करेगा। और नाइजीरिया के लेगोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

चलते चलते आप रुक जाइए सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पे, क्योंकि ये है दिल का मेल बॉक्स बिल्कुल आपके लिए। जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह एंड आई एम श्योर मेरे साथ साथ आपको भी इनके नाम याद हो गए होंगे ना। और हमें हार्दिक नमस्कार करते हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल, ईशान और पूजा परिहार। और इसके अलावा उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, भानु प्रकाश, बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया, भव्या, निवेश और नियति, और मैं हूं आपके साथ दिल का मेल बॉक्स में आप सबका स्वागत है। एफएम गोल्ड airdelhi@gmail.com ये है मेल आईडी, जहां पे आप हमें अपनी चॉइस का सॉन्ग लिख के भेजेंगे अपने नाम के साथ।

दास्तान शुरू हो गई है दिल का मेल बॉक्स की। ये है दिवाकर शेनॉय मैंगलोर से, कहते हैं थैंक यू वेरी मच। आदरणीय प्रसारक महोदय जी, हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। तो हम भी आपको कहते हैं नमस्कार। ताज मोहम्मद अंसारी हैं ये, गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से, भरत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, देवेंदु भूषण संस्कृति और पौरुष, और इसके अलावा गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार हैं, डैनी हैं, मनीष पवार हैं, रामदेवरा से दिनेश चौहान हैं, डांगरी से बाबू राम जयपाल हैं, खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा हैं, और मेरी तरफ से ये गाना है।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: ये जो दिन में रात की सी फीलिंग है, या यूं कहें ये जो सुबह सुबह शाम की सी फीलिंग है, 10:44 और 27 सेकंड हो गए हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में। आखिर ये क्या है? पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से सैयद भाई सुफियान अनस आयजा सरोज चौक से बहुत सारे लोग नसीम बेगम के साथ हैं, और इनके साथ हैं हादिया खान भी। गांव खारिया ढाणी से, जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या। बस इसके बाद आप अगर गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो आंखें बंद कीजिए और ये गाना सुनिए।

दिल का मेल बॉक्स इस सीटियों के साथ एक नाम छूट गया था, जिला सिरसा हरियाणा से, गांव खारिया डाणी। ये नाम है नव्या का, पूजा का, अर्जु और योगेश का। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकास्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकास्ट्रो है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता, रजत और मयंक। गुड मॉर्निंग मैडम कहते हैं विपिन नेहरा काशीपुर यूके से, मतलब उत्तराखंड से। हमें आप किसी भी गीत में शामिल कर लीजिए, हम हर हाल में आपके साथ हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल और बिट्टा। और इसके बाद बागपत उत्तर प्रदेश से भी कहते हैं कि आरजे मैडम हम भी तो हैं, हमारा भी तो नाम लीजिए। ले लिया ना। और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है शीशपाल अकेला जी को। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी। अरे वाह, क्या क्लैपिंग है। इतने सारे नाम हमने आपके लिए पढ़े और आपका शुक्रिया हम कहना चाहते हैं दिल का मेल बॉक्स में शामिल होने के लिए।

एंड आई एम श्योर कि आप सबने अपनी पसंद की सॉन्ग्स जरूर सुने होंगे। नमन ढींगिया, अपार ढींगिया, जय जैनेन्द्र, श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से, रुपेश, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार, साथ में खंडवा मध्य प्रदेश से ममता है, संजय है और बेबी किट्टू है पटियाली रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से, खलील कुरैशी, नुसरत बेगम, बेबी अरीबा और हबीबा हैं और उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खुरवाल, भानु और ये सुनना चाहते हैं एक बड़ा ही प्यारा सा गाना है, फिल्म का नाम है भूमिका। तो ये रहा आपका गीत और इसके अलावा बड़े सारे और लोग, हाय मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए कि छूट गया, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि नहीं, आप सब हमारे साथ शामिल हैं, आपने हमें मेल किया और दिल का मेल बॉस कल फिर से होगा ना आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

मिलेंगे मिलेंगे जनाब, क्यों नहीं 11:10 पे लेके तस्वीर हाजिर हो जाएंगे। बजने वाले हैं 11, अब समय है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है।
1: छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है, इरादा नहीं है। एनेबलिंग प्रोविजन का हम ध्यान रखना है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ब्लड शुगर लेवल में गिरावट के बाद चिकित्सकों ने श्री महतो की हालत गंभीर बताई है।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: सरकार ने ई वीजा धारक विदेशी नागरिकों का भारत में प्रवेश सुगम बनाने के लिए 11 और अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह अधिसूचित किए हैं। गृह मंत्रालय ने बताया कि इनमें 9 स्थल सीमा चौकियां और 2 हवाई अड्डे शामिल हैं। इनमें भोपाल और तिरुपति के हवाई अड्डे और अटारी तथा अगरतला के स्थल सीमा चौकियां शामिल हैं। भारत में लगभग 95% ई वीजा आवेदनों को 72 घंटे से भी कम समय में स्वीकृति दी जाती है। अब ई वीजा वाले विदेशियों के प्रवेश के लिए उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों की संख्या बढ़कर 88 हो गई है। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल

ग्यारह बज के 10 मिनट हो चुके हैं और ये है तस्वीर। और आज हम लेकर के आए हैं तस्वीर 3 राज्यों का प्यारा जो एंट्री गेट है, पठानकोट जिसे कहते हैं सबसे निराला वहां का संसार है। अगर आप गए हो तो समझ जाएंगे कि रावी की लहरें गुनगुनाती हैं वहां पे और जो वादियां हैं वो बहुत मुस्कराती हैं। ये तो वहां जाके आपको पता चलेगा। मंदिर गुरुद्वारे हरियाली के साथ हैं, प्यार है, अपनापन है और बहुत सारी सौगात है।

देखिए शहर अनजाना हो सकता है लेकिन कुड़े बिल्कुल जानी पहचानी है। इस वक्त आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पे और हम हैं तस्वीर लेकर के आए हुए पठानकोट की, जो कि तीन राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एकदम मिलन बिंदु पे वो स्थित है और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए बहुत फेमस है। पंजाब का एक प्यारा सा सुंदर सा शहर, इसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का एंट्री गेट भी कहते हैं। यहाँ पे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर है, रणजीत सागर बांध है, शाहपुर कड़ी किला है और काठगढ़ मंदिर है। इसके अलावा यहाँ से डलहौजी और धर्मशाला बहुत पास में है, तो फिर चलें।

ये है तस्वीर पठानकोट की। आई एम श्योर आपका मूड पूरी तरह से बन गया होगा। वैसे पठानकोट के बारे में मैं कह सकती हूँ, एक कहावत होती है ना कि बगल में बच्चा गली में ढूंढा, तो पठानकोट एक ऐसा ही शहर है बिल्कुल पहाड़ों के पाँव में फैला हुआ। और ये पंजाब के बिल्कुल उत्तर दिशा में है, इसको कहते हैं गेटवे ऑफ जम्मू कश्मीर। पठानकोट पंजाब का आखिरी शहर है, इसके आगे आप जम्मू कश्मीर में एंट्री कर जाते हैं। अक्सर लोग पठानकोट को नज़रअंदाज कर देते हैं, ये तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी, और उसको छोड़ के हम लोग आसपास भाग लेते हैं। लेकिन रुकिए, पठानकोट घूमिए, क्योंकि ये शहर पहाड़ों के पैरों में बसा हुआ है। पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पे बहुत सारे यात्री डलहौजी धर्मशाला जाने के लिए उतरते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसके आसपास भी जाइए और देख के आइए, फिर आप कहेंगे कि भाई आपने हमें डलहौजी और ये सब तो बताया, लेकिन पठानकोट की तस्वीर इतनी देर में क्यों बताई। तो फिर देर आए दुरुस्त आए, और हम तस्वीर में पठानकोट लेकर चले आए हैं आपके लिए। तो पंजाब का पठानकोट, आप अगर वहाँ रहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं तो। और पठानकोट का अगर कोई यहाँ रहता है तो भी मुझे मैसेज कर सकता है, fmgoldairdelhi@gmail.com पे मेल कीजिए, बताइए अपने शहर के बारे में। और मैं ये गाना प्ले करती हूँ प्रतिज्ञा फिल्म से, जो आई थी 1975 में। आहा, धर्मेंद्र हैं अपनी बहुत ही फेमस स्टेप्स के साथ, उसके बाद कुछ नहीं चाहिए।

0: और ये तस्वीर पठानकोट की रही आपके पास। तो मुक्तेश्वर महादेव मंदिर देख लिया आपने। पठानकोट के उत्तर में रावी नदी और दक्षिण में ब्यास नदी है। मुझे पठानकोट जिला मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। थोड़ा सा इसीलिए मैं कहती हूँ कि रुकिए और अपने आसपास देखिए। गुरुद्वारा बारठ साहिब और रणजीत सागर डैम और शाहपुर कड़ी किला देख सकते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये खूबसूरत मंदिर पठानकोट शहर से सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है। रावी नदी के किनारे पे बना हुआ है ये मंदिर। शाहपुर कंडी डैम रोड पे रावी नदी के किनारे पर एक पहाड़ी पे है और इस मंदिर का संबंध कहते हैं महाभारत काल के पांडवों से है। पांडवों ने यहाँ पे 6 महीने गुजारे थे। अब देखिए हर कहानी और हर शहर की एक कहानी आपस में जुड़ी होती है और मुझे तो वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है जानने में कि भाई देखे तो सही आखिर ये शहर कितनी दूर से चला आ रहा है। और ये पठानकोट तो आपको मैंने बता ही दिया कितना पुराना है।
1: मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।

अब देखिए, हम तो घर से जब निकलते हैं सबसे पहले भूख लगती है, तो पठानकोट जाएंगे तो वहाँ के कुछ ऐसे ऐसे फूड हैं जिनको आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उन्हें ज़रूर टेस्ट करिएगा, जैसे कि चना मदरा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर का संगम है, तो तीनों क्षेत्रों के जो स्वाद है उसका असर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो अमृतसरी कुलचे छोले खाइए, राजमा चावल आपका इंतजार कर रहे हैं गर्मा गर्म, मक्के की रोटी और सरसों का साग, ओफ ओ, साथ में अगर गाढ़ी मलाईदार और मीठी या नमकीन लस्सी का साथ मिल जाए तो फिर मजा आ जाए। पनीर टिक्का और तंदूरी स्नैक्स, ये सब के सब कहते हैं कि पठानकोट आइए, हमारा स्वाद लीजिए और तस्वीर देखिए पठानकोट की। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पे।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

अरे कहाँ जनाब, अभी तो 11:50 बस कुछ सेकंड ही हुए हैं। शब्बा खैर, अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आप शाहपुर कंडी जाएंगे, गुरुद्वारा बारट साहिब देखेंगे पठानकोट का, और उसके बाद नूरपुर किला पठानकोट से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है। और ये आप जब देखेंगे तो एक पुराना किला है, और यहाँ पे ब्रजराज स्वामी मंदिर है और बहुत ही फेमस है। जहांगीर ने अपनी बेगम नूरजहां के नाम पर इसका नामकरण नूरपुर किया था, तो ये ज़रूर देखिएगा। और जो ब्रजराज स्वामी मंदिर है ना, ये भी बहुत सुंदर है, मतलब सच में बहुत सुंदर है। एक तो जो शहर नदी के किनारे बसते हैं ना, मुझे वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं। सिर्फ उन नदियों को देखा जाए शांति के साथ, तो लगता है कि हाँ, हम शायद ठहरे हुए हैं और नदियाँ बह रही है।

0: चाहे सर फूटे या माथा,
1: अब चाहे कांटे मिले या कलियां,
0: अब चाहे लग जाए हथकड़ियां,
1: अब चाहे घर छूटे या सखियां,
0: अब चाहे रब रूठे या दुनिया, अब चाहे मार रूठे या पापा, यादा मैंने खोहा कर ले, अब चाहे सर फूटे या माथा मैंने।
2: बस अब क्या है, अब आप ही पठानकोट को हाँ हाँ करिए जब भी वहाँ से निकलना हो तो एक दिन पठानकोट में गुजारिए। देखिए हमारे एक लिसनर हैं उग्रसेन यादव, उन्होंने कहा है कि वहाँ पे बैसाखी का मेला लगता है और मंदिर परिसर में एक बावली है बहुत ही सुंदर, तो ये सब कुछ देख के आइए। पठानकोट इसीलिए कहते हैं सबसे निराला है, रावी की लहरें जहाँ गुनगुनाती हैं, शिवालिक की वादियाँ मुस्कुराती हैं, वीरों की धरती है पठानकोट और ये राह उम्मीद जगाती है। तो फिर चलें, कैसा लगा बताइएगा जरूर हमें। ये तस्वीर आपको कैसी लगी, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पे।

पठानकोट की यात्रा कैसी रही? मजा आया ना? तो फिर मूड बनाइए, पैसे इकट्ठे कीजिए, कोई मिले या ना मिले बस चल दीजिए, घूम के आइए, हमें बताइएगा। 12 बजने वाले हैं, हम भी चलते हैं, जरा मौसम का आनंद लेते हैं। आप सुनिए समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित कर दी गई है। लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: श्री बिरला ने संसद में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि सदन में लगातार इस तरह की स्थिति से वे व्यक्तिगत रूप से आहत हैं। हंगामा जारी रहने पर श्री बिरला ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस समय सदन की कार्यवाही जारी है। गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा होगी। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विधेयक पेश करेंगे। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरण के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, सेवानियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण तंत्र को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में डिजिटल भुगतान पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। झारखंड की राजधानी रांची में कल विद्यार्थियों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड विधानसभा के पास कल हुई झड़प में कई प्रदर्शनकारी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए।
2: कल करीब 10 घंटे तक चले विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शनकारी विधानसभा गेट नंबर 1 के पास पहुंच गए। उन्हें हटाने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठीचार्ज का इस्तेमाल किया। पुलिस कार्रवाई के विरोध में बीजेपी ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है और कथित परीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच की अपनी मांग दोहराई है। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने लोगों से आज के बंद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार।

0: घर आंगन। कार्यक्रम घर आंगन के सुनहरे सफर में आपका हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पुरी।
1: और मेरा भी नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रश्मि कुकरेकर।
0: और हम दोनों एक बार फिर से आपके बीच हाजिर हैं एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। इंद्रप्रस्थ के हमारे श्रोता हमें मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। वहीं डिजिटल परिवार के हमारे साथी एआईआर न्यूज लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं।
1: श्रुति हर दिन अपने साथ कुछ नए पल, नई यादें लेकर आता है, लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं जो वक्त गुजर जाने के बाद भी हमारे दिल में ताजा बने रहते हैं। जैसे कोई पुरानी तस्वीर, कोई गीत, कोई छोटी सी बात हमें उसी पल में वापस ले जाती है और चेहरे पर अचानक मुस्कान आ जाती है।
0: तो आज आप भी अपनी यादों की पोटली खोलिए और हमें बताइए आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल या ऐसी कौन सी घटना है जिसे आप आज भी याद करते हैं और याद करके रोमांचित हो जाते हैं, यानी आपको एकदम से खुशी होती है आपको उसे याद करके। तो अपने जवाब, अपनी यादें हमें fmgoldga@gmail.com पर, मेल आईडी दोबारा लिखिए fmgoldga@gmail.com पर लिख भेजिए। और रश्मि, आज जानती हो कि आज शिवरात्रि का जो जल है ना, आज सावन की
1: शिवरात्रि है। जी बिल्कुल जी। आज मंगलवार 11 अगस्त और सावन शिवरात्रि का ये पावन पर्व मना रहे हैं। देखिए, सावन शिवरात्रि पर जो कांवड़ यात्रा चल रही है ना, ये संपन्न होती है और देश भर के जो शिव भक्त और कांवड़िए हैं पवित्र नदियों के, जैसे हरिद्वार में गंगा नदी है, उनसे जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। और भाई, इस जो साल कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी 30 जुलाई से और ये आज संपन्न हो रही है, तो ये बहुत ही इसका मान्यता है। तो
0: इस समय भी आप देख रहे हो रास्ते में कितने कांवड़िए हैं,
1: तो पैदल यात्रा करकर और कंधे पर
0: कितनी मेहनत कर
1: लेकर और कठिन नियमों का पालन करते हुए शिवालयों तक आज पहुंचेंगे और भगवान शिव के जलाभिषेक करेंगे। तो हम सब इस पावन पर्व की शुभकामनाएं दे रहे हैं अपने सभी सुनने वालों।
0: और ये तो देखो भाव है ना, तो भाव को हम भी नमन करते हैं और भोले बाबा को याद करते हैं।

0: सत्यम शिवम सुंदरम। इस फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और बात हो जाए आज के विशेष दिनों की, श्रुति जी, पहले याद कर रहे हैं हम लोग 11 अगस्त की ये तारीख।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये इस तारीख में आप जानते हैं कि हमने आज एक सुविचार लिया है।
1: जी
0: किसका सुविचार है आप बताइए।
1: जी तो याद कर रहे हैं आज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को, वो कहा करते थे कि दुश्मन की गोलियों को का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। तो कभी कभी कुछ शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते श्रुति जी, वो पूरे दौर की आवाज बन जाते।
0: और देखिए इसी दौर की बात 11 अगस्त की तारीख जो आज भी है हमें याद दिलाती है इसी जज्बे की। 1908 में इस दिन महज 18 साल की उम्र में क्रांतिकारी खुदीराम बोस ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया था। हाथ में गीता और चेहरे पर मुस्कान, उनकी शहादत ने देश के नौजवानों के भीतर आजादी की लौ और तेज कर दी थी।
1: और आज एक और विशेष दिन है, विश्व स्टील पैन दिवस। ट्रिनिदाद और टोबैगो में पुराने धातुओं के पीपों से बना ये अनोखा वाद्य आज दुनिया भर में संगीत रचनात्मकता और लोगों को जोड़ने की पहचान बन चुका है।
0: हाँ तो एक ही तारीख हमें हक के लिए डटे रहना और अपनी रचनात्मकता से दुनिया भर में रंग भरना बताती है। बस इरादा मजबूत हो तो छोटी सी कोशिश भी एक बड़ी पहचान बन जाती है ना।

0: मोहम्मद अजीज और कविता कृष्ण मूर्ति को अभी आप सुन रहे थे फिल्म कर्मा में
1: जी। और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ये संगीत जो गीत था और
0: अच्छा लगता है ना एकदम से जज्बा पैदा हो जाता है देशभक्ति का और यही जो है ना तिरंगे को देख के यही भाव मन में आता है कि घर की छत पर लहराता तिरंगा जो होता है ना वो सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं होता, वो उस घर की आवाज बन जाता है जो कहती है कि हम भी इस देश की कहानी का हिस्सा हैं। और ये विचार साकार हुआ 2022 में जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे कर रहा था।
1: जी, आजादी का जो अमृत महोत्सव है उसके तहत जन्मे इस अभियान का उद्देश्य सीधा था, हर भारतीय को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित करना, ताकि देशभक्ति जो है वो केवल सरकारी दफ्तर स्कूलों तक सीमित ना रह जाए, हर आंगन तक पहुंचे।
0: और सरकार ने 13 से 15 अगस्त 2022 के बीच लगभग 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था, पर नतीजा उम्मीद से भी आगे निकला। 23 करोड़ घरों से भी ज्यादा घरों में तिरंगा फहराया गया और वेबसाइट पर 6 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी साझा हुई थी।
1: जी बिल्कुल, और वही जोश अभी तक बरकरार है भाई। चंडीगढ़ में तो जो मानव श्रृंखला से बनी तिरंगे की तस्वीर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तक बना दिया। एक दिलचस्प बात जो है झंडे के नियमों से जुड़ी है श्रुति। पहले जो ध्वज संहिता के अनुसार झंडा सिर्फ हाथ से बुने खादी, सूती या रेशमी कपड़े से बनता था और उसे केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था।
0: और करोड़ों घरों तक झंडा पहुंचाने के लिए 20 जुलाई 2022 को ये नियम बदला गया और अब मशीन से बने झंडे जो थे ना वो भी मान्य हो गए। और जानते हो कि 1.6 लाख डाकघरों ने भी झंडों को दूर दराज तक गांवों में पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी।
1: सबसे सुंदर बात ये रही इस अभियान की, ये साल का उत्सव नहीं बनकर रह गया बल्कि हर साल लौटता है और अब एक स्थायी परंपरा बन चुका है। और जो इसकी असली ताकत है वो श्रुति आंकड़ों में नहीं है बल्कि उस भावना में है, उस देशभक्ति की, जिसमें वो किसी एक दिन की मोहताज नहीं होती बल्कि दिलों में बसती है, वो हर घर की छत पर सहजता से उतरती है।
0: तो आइए इस बार भी हम हर घर तिरंगा अभियान में सहभागी बने और अपने घर में झंडा फहरा कर देशभक्ति की भावना से अपने आप को ओतप्रोत करें।

0: रोजा फिल्म में अभी आप एआर रहमान और हरिहरन को सुन रहे थे। देखो, हमने प्रश्न किया था रश्मि के, आपकी जिंदगी का ऐसा कौन सा पल है जिसको याद करते ही आपको खुशी मिलती है या आपको रोमांच हो जाता है? तो
1: और जवाब आ गए हैं सबसे पहले
0: जी
1: हमेशा की तरह नवीन भाटिया जी मोदी नगर
0: ओहो
1: से।
0: जी
1: वो कह
0: जी
1: रहे हैं कि मैं 10वीं क्लास में था तो डीटीसी का 12.5 वाला पास जो था वो बनवा लिया, और फिर जो घूमा तो वो आज भी याद है मुझे, अच्छा लगता है। वाकई में श्रुति जी, वो
0: जी
1: समय ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स होते थे ना उनको डीटीसी का 12.5 का पास इशू होता था, और मुझे भी याद है वो
0: आप भी बनवाया होगा,
1: जी बिल्कुल
0: आपने
1: नवीन जी, मैंने भी बनवाया था। और तब ना हरी और पीली बसेस चलती थी, और हम जो छात्र
0: भी
1: छात्राएं थे ना वो तो ऐसे महसूस करते थे बिल्कुल राजा की तरह कि हम कहीं भी जा सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: वाह,
0: बिल्कुल।
1: मजेदार याद आपने बांटी।
0: हाँ, और एक मेल हमारे पास भी आया है, ये लिखने वाले हैं राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी, चौधरीवास, हिसार, हरियाणा से। लिखते हैं कि मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। 2012 में मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में आ गए थे, अवसाद में आ गए थे ये। और लिखते हैं कि आकाशवाणी रोहतक के किसी प्रस्तुतकर्ता ने मुझे कहा कि राजू जी, रेडियो हमेशा आपके साथ रहेगा, रेडियो ने मुझे जिंदगी दी है। और एफएम गोल्ड तो मैं अब रोजाना सुनता हूँ। सबसे पहले साल भर पहले से मैंने ईमेल भेजनी शुरू कर दी
1: जी, आपकी
0: थी।
1: हमेशा ईमेल आती है, और
0: जी
1: सुदर्शन मुखी जी जुड़ गए हैं। वो कह
0: जी
1: रहे हैं कि भाई हमें तो बचपन के स्कूल जाने की वो पल याद हैं
0: हाँ
1: जो बहुत अच्छा लगता था, और क्योंकि बचपन से सुंदर समय जीवन में कभी नहीं मिलता। जी बिल्कुल सही कहा आपने।
0: जी। और एक मेल और है उग्रसेन यादव जी की, ये लिखते हैं कि वैसे तो जिंदगी में छोटी छोटी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कभी नहीं भूला मैं, पर दोस्तों के साथ बिताए जो पल हैं वो उनके साथ आम खाना
1: अरे वाह जी, आम तो अभी भी मौजूद
0: बिल्कुल
1: है, अभी भी
0: बिल्कुल
1: खा
0: बिल्कुल।
1: सकते
0: तो वो
1: हैं।
0: कह रहे हैं कि वो इनकी एक ऐसी याद है जो ये कभी नहीं भूले
1: और एक
0: हैं।
1: और मेल आ गई है, उमेश कुमार खयाला से कह रहे हैं कि पहले हम तालकटोरा गार्डन के पास रहते थे और सारे दोस्त गार्डन में खेलते थे, और हम वहाँ ही नहीं खेलते थे बल्कि कभी वहाँ जाते थे तो बहुत अभी भी अच्छा लगता है और मन खुश हो जाता है। एक और मेल आई है, दिलावर खान जी कह रहे हैं कि मेरे
0: जी
1: जीवन की याद है कि जब हम छोटे थे तो दिल्ली की डीटीसी की डबल डेकर बस चला करती थी। हाँ मुझे भी याद है, और उसे 15 पैसे की टिकट लेते थे और ऊपर जाकर बैठते थे, बड़ी खुशी होती थी वो दिन, आज भी याद है। कह रहे हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नाया और लड्डू भाई, वाह क्या बात है, डबल डेकर बसेस याद
0: बिल्कुल
1: दिलाती।
0: बिल्कुल। और देखिए, यही तो छोटी छोटी यादें होती हैं जो जीवन में हमेशा रंग भरती हैं। और रश्मि, देखो अब समय है हमारी श्रृंखला संकल्प का,
1: जी
0: तो हम अपने श्रोताओं को सुनाते हैं संकल्प की अगली कड़ी।
2: संकल्प। एक उड़ान अपने हुनर की सिद्धि से समृद्धि के आसमान तक। संकल्प।

0: आज के समय में जब मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमारे पढ़ने की आदत को कहीं पीछे छोड़ दिया है, ऐसे में किताबों को फिर से अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना अपने आप में खूबसूरत पहल है। ऐसी ही एक कोशिश है एक बुक क्लब की, जिसकी शुरुआत शिल्पा गुप्ता ने 6 लोगों के साथ मिलकर की थी। आज इस पहल को 3 साल हो चुके हैं। हर महीने इस क्लब के सदस्य एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन किताब चुनते हैं, उसे पढ़ते हैं और फिर साथ बैठकर उस पर खुलकर चर्चा करते हैं। क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, कहानी कितनी असरदार रही और किताब हमें क्या सोचने पर मजबूर कर रही है। यानी किताब को पढ़ना ही नहीं, उसे समझना, परखना और उस पर अपने विचार साझा करना इस क्लब का हिस्सा है। पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और किताबों से लोगों को जोड़ने की ये कोशिश वाकई दिलचस्प है। तो आइए संकल्प श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं शिल्पा गुप्ता से इस बुक क्लब की शुरुआत और अब तक के उनके अनुभव।
1: मैं एक बुक क्लब पिछले 3 साल से लखनऊ शहर में चलाती हूँ, जिसका नाम है बुक अ ट्रीट। वेबसाइट भी है और सोशल मीडिया पे भी हम काफी एक्टिव हैं। ये बुक क्लब का बेसिकली स्टार्ट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी खुद की आदत, जो बुक्स पढ़ने की बहुत ही शुरुआत से ही, बचपन से ही, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि जिंदगी के रोजमर्रा के कामों की वजह से ना कम हो रही थी, और मैं उसको खत्म नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसमें मुझे एक अलग सा उत्साह और एक अलग सा पैशन था। तो ये सोचा कि चलिए कुछ लोगों के साथ मिलके बैठूंगी, बात करूंगी और बुक्स के ऊपर जब चर्चा करूंगी तो शायद वो जो पैशन है उसको फिर से रीइग्नाइट करने का मुझे मौका मिलेगा। और ऐसे ही मैंने एक बस मैसेज बना के अपने ग्रुप्स में डाला और मेरे 5-6 लोग जो थे जो इक्वली पैशनेट थे बुक रीडिंग को लेके, वो तैयार हो गए और हमने 3 साल पहले इसको स्टार्ट किया 6 लोगों में। और स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे जितने लोग किताबों के प्रशंसक, किताबें पढ़ने वाले, भले वो फिक्शन या नॉन फिक्शन रहे हों, सब जुड़ते चले गए और आज 3 साल के बाद हम लोग अराउंड 30-32 लोग अब मेरे ग्रुप में हैं। बुक क्लब में हम, श्रुति जी, एक्चुअली बुक रीड करते हैं तो हमारा मेन फोकस वैसे तो फिक्शन और नॉन फिक्शन पे रहता है, जो ज्यादातर लोग आजकल पढ़ते हैं। तो सारे मेंबर्स की राय से ही हम एक फिक्शन और एक नॉन फिक्शन 1 महीने के लिए उठाते हैं जो सब लोग रेकमेंड करते हैं, और फिर हम लोग वो पूरा महीना या आप फिक्शन पढ़ें या नॉन फिक्शन, या अगर आपके पास टाइम हो तो आप दोनों पढ़ें, मेंबर्स उसको पढ़ के आते हैं और एक मंथली हडल करते हैं। हडल का मतलब है जहां सारे मेंबर्स हम लोग मिलते हैं और उन किताबों पे जो हमने चयन की होती है पिछले महीने, उन पे पूरा डेप्थ तक के पूरा डिस्कशन करते हैं कि उनको लेखक कैसे लगे, उनकी राइटिंग स्टाइल कैसा लगा, जो उन्होंने लिखा क्या वो आपकी जिंदगी के मापदंड में सही है, गलत है, आप उसमें क्या चाहेंगे। तो हर पहलू पे हम बात करते हैं और उसको अपने निजी जीवन से जोड़ने की कोशिश करते हैं कि लेखक क्या कहना चाह रहा है और हम उस सीख को अपनी लाइफ में कैसे उतार सकते हैं। तो जब मेंबर्स आते हैं, बेसिकली हमने एक ईयरली सब्सक्रिप्शन रखा है ताकि हमको ये पता चले कि ग्रुप में यूनिफॉर्मिटी क्या है, कौन मेंबर हमसे जुड़े हुए हैं। तो वो छोटा सा एक मिनिमल सब्सक्रिप्शन है जो साल में एक बार आपको देना होता है, और उसके बाद जब हम लोग महीने में मिलते हैं तो उसमें जो भी चाय पानी का खर्चा आता है, जितने लोग वहां पर होते हैं वो सब उसको आपस में बांट लेते हैं। और जब हम उसको बांट लेते हैं तो वो किसी के ऊपर बहुत पड़ता नहीं है, और इसको अब हम लोग थोड़ा सा और उभार के दूसरे शहर तक लेके जाना चाहते हैं क्योंकि हमने अपनी वेबसाइट भी खोल ली है। तो अब हम कुछ ऐसा करना चाहते हैं जहाँ पे देश से भी लोग हमसे जुड़े और हम जो बुक्स डिसाइड करते हैं वो लोग पढ़ें, और मे बी हम एक ऑनलाइन मीटिंग, जो अभी हम एक फेस टू फेस हडल करते हैं, उसको हम एक ऑनलाइन हडल के रूप में भी लेके जाना चाहते हैं। मैंने जो अब एक जगह बनाई है उसमें, उसके जरूर बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि एक बहुत सेफ स्पेस है। लोग जब पढ़ के आते हैं, अगर आप कोई भी किताब उठाएं, उसको पढ़ें और बंद करके रख दें तो किताब वहीं खत्म हो जाती है, और हम जब किताब उठाते हैं उसको इतनी डेप्थ तक पढ़ते हैं कि आप में खुद में एक ये कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मुझे पता है जिंदगी में क्या हो रहा है और मैं किस तरफ जा रहा हूँ। काफी बार ऐसा होता है, लोगों को लगता है कि पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, या हमें अपनी रोजमर्रा में ना एक पुश चाहिए होता है रोज रोज कि हाँ, नेगेटिविटी नहीं जाना है, स्पाइरल आउट नहीं होना है। तो किताबें हमें कहीं ना कहीं वो तो एक मेंटल पॉजिटिविटी जरूर देती हैं, और आई थिंक ये ग्रुप से मुझे ये समझ में आया कि जब आप साथ में बैठते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि मैं कहीं छूटा हुआ हूँ, सब मेरे साथ हैं और सब मुझे अपने साथ ही लेके चल रहे हैं। सही बताऊं तो जब शुरू किया था तो वो बहुत एक पर्सनल एंडेवर था, बट अब मैं इसको उस जगह पर लेके जाती हूँ जहाँ पे हम इतनी मेंटल हेल्थ को लेके अब हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है, मैं उसको ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ।

0: बिकॉज मुझे लगता है कि जिस कोविड के बाद हम लोगों को एक अकेलेपन में रहने की और एक वो आदत पड़ रही थी और उससे हमारा हमारा मेंटल लेवल डिस्टर्ब हो रहा था थ्रू बुक्स और थ्रू ऐसे कम्युनिटीज के, मैं उस चीज को, मैं लोगों को एक सेफ स्पेस, एक नॉन जजमेंटल स्पेस और एक ऐसी अपनी स्पेस देना चाहती हूँ जहाँ वो खुल के कुछ भी बोल सकते हैं और उसमें उनको ना डर होगा और ना ही उनको ये लगेगा कि कोई मुझे किस नजरिए से देखेगा। तो बहुत पॉजिटिव और बहुत एक इंटेलेक्चुअल और बहुत एक अपनेपन की जगह अब मैं इसको उसकी तरह लेके जाना चाहती
1: हूँ। अभी आप संकल्प श्रृंखला के अंतर्गत शिल्पा गुप्ता से बुक क्लब के सफर और किताबों को लेकर उनके अनुभव सुन रहे थे। सच तो ये है कि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वे हमारे सोचने और चीजों को देखने का नजरिया भी बदलती हैं। और जब पढ़ने के साथ अपने विचार साझा करने और दूसरों के नजरिए को समझने का मौका मिले तो किताब का अनुभव और भी समृद्ध हो जाता है। शिल्पा जी और उनके साथियों की ये पहल हमें याद दिलाती है कि पढ़ने के लिए बस एक किताब और उसे पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, और अगर साथ में कुछ अच्छे साथी मिल जाएं तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है।
2: संकल्प एक उड़ान अपने हुनर की सिद्धि से समृद्धि के आसमान तक। संकल्प

0: यार मेरा, इस फिल्म में अभी आप मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर को सुन रहे थे।
1: जी, और जब पढ़ने की बात आती है तो भाई हमारे युवा लगातार

0: पढ़ाई भी करते हैं, करियर भी बनाते हैं, लेकिन हम लोग युवा देश हैं श्रुति जी, और किसी भी देश का जो भविष्य होता है उसकी युवा पीढ़ी के हाथों में होता है। जो जेंजी है भाई, वो हमारे भविष्य के रक्षक है और भविष्य को संवारने वाले हैं,
1: क्योंकि युवा सिर्फ देश का भविष्य नहीं, आज का सक्रिय हिस्सा भी है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। और वो एक देश को मजबूत बनाने के लिए युवाओं की भूमिका सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत है सोचना, सवाल करना और अपनी बात को जिम्मेदारी से रखना।
0: जी, जब युवा अपने आसपास की समस्याओं को समझते हैं, समाधान के लिए आगे आते हैं, समाज में बदलाव की पहल करते हैं तो और दूसरों के विचारों का सम्मान करते हैं तो देश मजबूत होता है। हालांकि देश में असहमति भी होती है, कई बातों पर आप राजी नहीं भी होते।
1: और देखो, हर बात पे सहमत होना ही देश में बात रखना नहीं है, बल्कि अलग अलग विचार रखने वाले व्यक्ति की बात को सुनना, उसका सम्मान करना एक लोकतांत्रिक सोच है।
0: तो जो जेंजी है, युवा, इस सोच को जितना अपनाएंगे हमारा समाज उतना ही स्वस्थ और मजबूत होगा। लेकिन श्रुति जी, देश में अधिकारों के साथ बहुत जरूरी है कर्तव्य भी अपनाना, उसकी तरफ ध्यान देना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपने देश, समाज और पर्यावरण के लिए जिम्मेदार होना, कानून और संविधान का सम्मान करना और जरूरत पड़ने पर सामाजिक सरोकारों के लिए शांतिपूर्वक तरीके से एक आवाज उठाना, यही एक जागरूक युवा की पहचान भी तो है।
0: जी, उनकी बहुत जिम्मेदारी भी है भाई, उनको शिक्षा और कौशल हासिल करके देश के विकास में योगदान देना है, संविधान कानून और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करना है, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को मजबूत करना है भाई, जल, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बचत करनी है और सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने के बजाय सही और प्रामाणिक जानकारी साझा करनी है।
1: और बिल्कुल यही बात बिल्कुल आपने ठीक कही रश्मि, कि इसीलिए जो युवा है ना, वो आज देश का सहभागी भी है और प्रहरी भी है, उसकी जागरूकता, जिम्मेदार और सकारात्मक सोच ही देश को, हमारे देश को एक नई ऊर्जा दे रही है। और ऊर्जा हमें मिलती है सावन के गीतों से भी, तो ये प्यारा सा गीत आपके लिए।

0: मंजिल फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे, और रश्मि जी कुछ मेल आई हैं मुझे लग रहा है ऐसा कि हमारे
1: जी
0: श्रोता बिल्कुल मेल कर रहे हैं, तो किसकी मेल आई है अभी?
1: जी गौरी शंकर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ नागलोई से। वो कह रहे हैं कि मैं नागलोई से बहादुरगढ़ जा रहा था और स्कूटर पर घरवाली पीछे बैठी हुई थी, तो आगे पेट्रोल भराने के लिए रुका और घरवाली जो थी वो नीचे उतर गई, पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं आगे चल दिया। और जब दूसरे पंप पर पहुंचा तो वहां खड़े आदमी ने कहा कि आपका तो फोन बज रहा है। तो उन दिनों टच फोन वाले मोबाइल नहीं थे, तो भाई हमारी घरवाली ने हमें फोन किया किसी से फोन लेकर, तब आवाज जब उनकी सुनी तो समझ में नहीं आई कि आप कहाँ, आपको किससे बात करनी है। फिर पता चला कि वो पिछले पंप पर ही रह गई है। मैं वापस जाकर फिर उन्हें लेकर आया, आज भी याद आती है तो बहुत हंसी आती है।
0: और एक ये मेल हमारे पास आई है इदरिस सैफी जी की, और ये लिख रहे हैं कि पिछले 3 महीनों से मैं हर महीने एक पौधा लगाता हूं, और जब वो लगाता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है।
1: वाह, और ऐसी सावन की एक याद हमारे साथ बांट रही हैं सुरभि मयूर विहार से। वो कह रही है कि सावन का झूला जो है वो मेरी बहुत प्यारी याद है। हरे भरे पेड़ रहते थे नीम के, उस पर झूला पड़ता था और हम बारी बारी से झूलते थे और सावन के गीत गाते थे। झूला जितना ऊपर जाता हमारी हंसी भी उतनी ही ऊंची हो जाती।
0: देखो रश्मि, सावन की बात हो और घूमने फिरने का मन तो स्वतः कर उठता
1: जी
0: है, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: ऐसा है ना कि बारिश में लॉन्ग ड्राइव पे कहीं निकल जाओ या कहीं घूमने निकल जाओ
1: जी,
0: तो
1: मन
0: मजा आता
1: मचलने
0: है।
1: लग जाता है भाई।
0: बिल्कुल,
1: पहाड़, झरने, हरियाली और ठंडी ठंडी हवा, सब कुछ भुलाने लगती है आपको।
0: लेकिन देखो मानसून के सफर का मजा तभी है जब थोड़ी सी तैयारी भी साथ हो, क्योंकि बारिश में रास्ते खूबसूरत जरूर होते हैं लेकिन कई बार मुश्किल भी हो सकते
1: तो
0: हैं।
1: फिर क्यों ना सबसे पहले मौसम का हाल देख लें, फिर अगर बहुत तेज बारिश हो या बाढ़ या भूस्खलन की चेतावनी हो तो सिर्फ घूमने के शौक में जोखिम लेना अच्छी बात नहीं है। खासकर
0: बिल्कुल
1: पहाड़ी इलाकों में निकलने से पहले सड़क की स्थिति और स्थानीय प्रशासन की सलाह जरूर मान लें।
0: हाँ, और अगर सफर पर निकल रहे हैं तो छाता और रेनकोट और पानी से बचाने वाला बैग और मोबाइल के लिए वाटरप्रूफ कवर, ये छोटी छोटी चीजें बहुत काम आती हैं। जूते ऐसे पहने जिसकी पकड़ अच्छी हो, क्योंकि गीली सड़क पर फिसलन भरी सीढ़ियां भी होती हैं, कई बार वो परेशानी खड़ी कर सकती
1: और
0: हैं।
1: गाड़ी से जा रहे हैं तो भाई ब्रेक, टायर, वाइपर, हेडलाइट एक बार जरूर जांच लें और बारिश में गाड़ी की रफ्तार जो है वो
0: बिल्कुल
1: धीरे रखें। और एक और जरूरी बात, बारिश के दौरान उफनती नदी, नाले या झरने के बहुत करीब जाकर भाई फोटो लेने का जोखिम मत उठाएं।
0: बिल्कुल, और शांत पानी जो दिखाई दे रहा हो वो कभी भी अचानक उसका बहाव तेज हो सकता है, इसलिए स्थानीय चेतावनी और सुरक्षा निर्देशों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें।
1: और बारिश में ट्रैफिक अक्सर धीमा हो जाता है, रास्ते बंद हो सकते हैं, अचानक रुकना पड़ सकता है। तो मानसून में सफर का सबसे अच्छा नियम है नो जल्दबाजी, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आखिर घूमना फिरना यादें बनाने के लिए ही तो होता है, जोखिम उठाने के लिए थोड़ी होता है। तो बरसात का आनंद लीजिए और इस मौसम में घूमने फिरने निकल ही पड़िए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य इस संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। केवल बीजेडी के डॉ संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक के बाद ये मार्च निकाला गया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।

दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में कल रांची में छात्रों के नेतृत्व में विधानसभा मार्च के दौरान झारखंड छात्र आंदोलन के नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्री महतो झारखंड विधानसभा के पास पुलिस लाठीचार्ज के दौरान घायल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की ज्यादती और लाठीचार्ज के विरोध में आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की एसआईआर से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जो स्वामित्व और किराए सहित आवास के विकल्प प्रदान करे। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% की कमी आई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 413 अंक गिरकर 78,130 पर और निफ्टी 133 अंक गिरकर 24,451 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बहुत स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज। वक्त हुआ है ठीक 1:11:05 और ये वक्त रहता है कलाकार बेमिसाल का। कलाकार बेमिसाल में हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी का आज जिक्र होगा। कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय करते हुए अपने लगभग 25 साल के लंबे करियर में सुनील शेट्टी ने लगभग 110 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। एक्शन मूवीज और कॉमेडी मूवीज में इन्होंने अपनी अच्छी धाक जमाई है। हिंदी फिल्मों के साथ साथ इन्होंने मलयालम, तमिल, अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में भी काम किया है। फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए इनका 5 बार नामांकन हो चुका है और 2001 में फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया फिल्म धड़कन के लिए। इन्हीं के बारे में और भी बहुत सारी बातें आपके साथ साझा होगी। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ।

0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: जाने माने एक्टर सुनील शेट्टी का जिक्र हो रहा है यहाँ एफएम गोल्ड 100.1 पर। जन्म इनका हुआ तुलु भाषी बंत परिवार में 11 अगस्त 1961 को मंगलौर में। इनके पास बहुत सारे उडुपी रेस्टोरेंट्स हैं और कपड़ों के बुटीक्स भी। प्यार से लोग इन्हें अन्ना बुलाते हैं। इनके पिता भी एक सफल, जो कि वीरप्पा शेट्टी, बिजनेसमैन रहे हैं और 1991 में इन्होंने माना शेट्टी से शादी की, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन और ड्रेस डिजाइनर और सोशल वर्कर रही हैं। बात करेंगे अब इनके फिल्मी करियर की। सुनते रहें आकाशवाणी गोल्ड, और ये खूबसूरत सा गीत भी पहुंच रहा है आप तक, और फिर उसके बाद ढेर सारी बातें सुनील शेट्टी के बारे में।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 और बातें आपके साथ साझा हो रही है जाने माने एक्टर सुनील शेट्टी की। अभिनय की शुरुआत हुई इनकी फिल्म बलवान से और ये फिल्म रही 1992 की। इनके को एक्ट्रेस फिल्म में रही दिव्या भारती। ये फिल्म अच्छी खासी हिट साबित हुई और देखते ही देखते एक्शन हीरो के रूप में सुनील शेट्टी की पहचान बन गई। इसके बाद इनकी और भी कई सफल फिल्में आती रहीं। वक्त हमारा है, दिलवाले, मोहरा

गोपी किशन, कृष्णा, सपूत, रक्षक, बॉर्डर, हेरा फेरी, धड़कन, ये तेरा घर ये मेरा घर 2004 की मूवी जो थी मैं हूं ना, ये तो आपको याद होगी। और इसमें इनका रोल कितना जबरदस्त रहा। इसी तरह अक्षय कुमार के साथ भी इनकी जो स्क्रीन जोड़ी थी उससे ना खूब पसंद किया गया। और क्यों पसंद किया ये तो आप जानते ही हैं कि दोनों की जो कॉमेडी टाइमिंग्स है ना कितनी जबरदस्त है। और इनकी सीक्वल फिल्म्स भी बनती रहती हैं जिन्हें हम देखते रहते हैं और उनका पूरा मजा उठाते हैं इसके। और ये जो सब इनका जो पूरा, लेकिन इतनी जल्दी इन्हें सफलता नहीं मिली, इतनी जल्दी इन्हें फिल्मी करियर में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन इनके सफल करियर के पीछे इन्होंने खुद अपनी दास्तां बयां की हैं जिसका भी हम जिक्र करेंगे। और वो रही जबरदस्त मेहनत। शुरू में इनकी डायलॉग्स डिलीवरी को क्रिटिसाइज किया गया। अपनी मेहनत के बलबूते ना केवल सुनील शेट्टी ने अपनी डायलॉग डिलीवरी सुधारी, साथ ही एक्शन हीरो के रूप में एक पूर्ण कलाकार के तौर पर ये दर्शकों के सामने आए। और इनकी कॉमिक टाइमिंग भी कितनी जबरदस्त रही ये तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
5: हाँ, आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 कलाकार बेमिसाल का ये सफर यहाँ पर हम तय कर रहे हैं और बातें हो रही हैं जाने माने एक्टर निर्माता सुनील शेट्टी की। एक मंच पर सुनील शेट्टी ने खुद अपने संघर्ष की गाथा कुछ यूं शेयर की। उन्होंने बताया कि शुरू में उन्हें इमोशनलेस वुडन एक्टिंग नहीं कर सकता जैसे तमगों से भी नवाजा गया, लेकिन तमाम आलोचनाओं के बावजूद कामयाबी हासिल की उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर। 1992 में बलवान से अपना करियर शुरू करने वाले दिलवाले, बॉर्डर और हेरा फेरी जैसी सफल फिल्मों में उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया। सुनील कहते हैं कि वो इतने लंबे समय बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में जमे हुए हैं। वो हर दिन को सीखने के एक नए अनुभव के तौर पर लेते हैं और कैमरा के सामने वो आज भी नर्वस हो जाते हैं।

सुनील शेट्टी का जिक्र हो रहा है, उन्हें मिले पुरस्कार और उपलब्धियों की बात करें तो उनकी सफल फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन भी उनके नाम रहा। 1995 में फिल्म दिलवाले के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन, इसी तरह 1998 में फिल्म बॉर्डर फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर नामांकन, और एक फिल्म रिफ्यूजी जो कि 2001 की फिल्म है उसके लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन उनका किया गया था। और बॉर्डर फिल्म के लिए 1998 में स्टार स्क्रीन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। रिफ्यूजी फिल्म के लिए 2001 में आईफा का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार उनके नाम रहा, और भी कई तरह के पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 2005 में इंडियन फिल्म अवार्ड एकेडमी अवार्ड आईफा की तरफ से सर्वश्रेष्ठ खलनायक पुरस्कार फिल्म मैं हूं ना के लिए इसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया, और 2011 में रेड अलर्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए स्टार डस्ट

सर्च लाइट अवार्ड उनके नाम रहा। 7 नवंबर 2020 को महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा उन्हें प्रतिष्ठित भारत रत्न डॉ अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2021 में तमिल फिल्म दरबार में उनकी नेगेटिव भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड उनके नाम रहा।

सिनेमा में इन्हें इनके काम के लिए जाना जाता है। अन्ना के नाम से मशहूर सुनील शेट्टी का लगभग 3 दशक का फिल्मी करियर रहा है। अभिनय के अलावा पॉपकॉर्न मोशन पिक्चर्स के तहत इन्होंने फिल्मों का निर्माण भी किया है। ऑनलाइन कास्टिंग प्लेटफॉर्म एफ द काउच की सह स्थापना भी सुनील शेट्टी ने की है। पूरा नाम सुनील वीरप्पा शेट्टी, जिन्हें कि हम सुनील शेट्टी के नाम से ज्यादा जानते हैं, अपने अन्ना नाम से भी पहचाने जाते हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे, असफलताओं से उन्होंने काफी कुछ सीखा जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिली। अपनी असफलताओं और अनुभव को सुनील शेट्टी अपनी कामयाबी का राज बताते हैं। उनकी फिल्में और उनकी कामयाबी उनकी दास्तां खुद बयां करती है। सुनील शेट्टी जैसे कलाकार हमेशा दूसरे ऐसे कलाकारों के लिए इंस्पिरेशन रहते हैं जिनका फिल्मी दुनिया में कोई गॉडफादर नहीं होता। सुनील शेट्टी की मनोरंजन से भरी प्रेरणादायक फिल्में हम यूं ही देखते रहेंगे और उन्हें ऐसे ही हमेशा याद करते रहेंगे। चलते चलते बहुत ही जबरदस्त हिट मूवी मोहरा का ये गीत पंकज उदास और साधना सरगम की आवाज।

इसी के साथ अंजलि फिलहाल आपसे चाहती है इजाजत और आप सुनते रहें हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 1:50 पर उर्दू में खबरें और उसके बाद अंग्रेजी और हिंदी में समाचार। 2:30 पर आपकी और मेरी मुलाकात एक बार फिर से होगी।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। पार्लियामेंट में बहुत से मामलों पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा किए जाने के दौरान कामकाज में रुकावट अब भी जारी।

0: है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि हर लापता शख्स की FIR उम्र और सिंफ से कतई नजर फौरी तौर पर लाजमी दर्ज की जाए। यूक्रेन में रूस के रात भर के फिजाई हमलों में 9 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। और कैनेडियन ओपन टेनिस में पोलैंड की एगा स्वाइतिक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की डायना श्राइडर को सीधे सेटों में हराया। अब खबरें तफसील से। नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई समेत कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लोकसभा का इजलास जब दिन में 11 बजे शुरू हुआ तो ऐवान के स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात की कार्रवाई चलाने की कोशिश की, लेकिन अपोजिशन अरकान ने तलबा के एहतजाज के दौरान पुलिस की मुबैना कार्रवाई का मामला उठाया। अपोजिशन अरकान इस सिलसिले में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से बयान दिए जाने का मुतालबा कर रहे थे। जनाब बिरला ने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कल ये बात वाजह कर दी है कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह तलबा से मुतालिक मामलात पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो ऐवान की कार्रवाई चलाने में ताउन करें। उन्होंने कहा कि अपोजिशन की दोनों अहम मांगें मान ली गई हैं। स्पीकर ने कहा कि वक्फे सवालात इंतहाई अहम वक्फा होता है क्योंकि ये हुकूमत की जवाबदेही को यकीनी बनाता है। उन्होंने कहा कि ऐवान में प्ले कार्ड्स और बैनर्स लाना पार्लिमानी उसूलों के मनाफी है।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं। इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल BSC की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल BSC की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार। सदन चलना चाहिए।
0: जब शोरगुल का सिलसिला जारी रहा तो स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। उधर राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर दिन के 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। NDA पार्लिमानी पार्टी का हफ्तावार इजलास मंगल मिलन आज नई दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के अहाते में मुनाकिद हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, BJP के कौमी सदर नितिन नवीन और NDA के दिगर रहनुमाओं ने इजलास के दौरान तिरंगा लहराया। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि लापता अफराद के मामलों में फौरी FIR दर्ज करने से मुतालिक उसकी हिदायत हर एक के लिए है और इसका किसी उम्र या सिंफ से कोई ताल्लुक नहीं है। जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्ला और जस्टिस R महादेवन पर मुश्तमिल एक बेंच ने उन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को हिदायत दी जो इस हिदायत पर अमल करने में नाकाम रहे हैं कि वो अपनी चीफ सेक्रेटरीज और पुलिस सरबराहान को हिदायत दें कि वो अदालत में हाजिर होकर ये वजाहत करें कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत से मुतालिक कार्रवाई क्यों न की जाए। अब इस मामले की समाअत 5 अक्टूबर को होगी। इससे पहले अदालत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि वो लापता अफराद के सभी मामलात में बगैर किसी इब्तदाई तफ्तीश के फौरी तौर पर FIR दर्ज करें। उसने लापता बच्चों को तलाश करने और उनकी हिफाजत के लिए भी अहकाम जारी किए हैं जिसमें इन बच्चों को उनके कुंभों से जल्द अज जल्द मिलाना भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इंतखाबी कमीशन से कहा है कि वो उन ट्राइब्यूनल्स की तरफ से अभी तक जिन अपीलों पर फैसला कर लिए गए हैं उनकी तफसीलात फराहम करे जिन्हें मगरबी बंगाल में इंतखाबी फहरिस्तों पर खसूसी तफसीली नजरसानी SIR के दौरान वोटरों के नाम हजफ करने की दरख्वास्तों की सुनवाई के लिए मुकर्रर किया गया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही में एक बेंच ने कांग्रेस रहनुमा अधीर रंजन चौधरी की एक दरख्वास्त पर गौरखोज किया। इस दरख्वास्त में SIR से मुतालिक अपीलों को जल्द निपटाने के लिए कहा गया था। अदालत ने अब इस अपील पर सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के दौरान मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। बारिश की खबरें रियासत के ज्यादातर इलाकों से मिल रही हैं जिनमें राजधानी शिमला भी शामिल है। पिछले 24 घंटे के दौरान चंबा जिले के भटियात इलाके में

0: ज्यादा से ज्यादा बारिश 95.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज कुल्लू सब डिवीजन में मूसलाधार बारिश की वजह से सभी तालीमी इदारे बंद रहे। रियासत के हंगामी हालात में काम करने वाले मरकज की एक रिपोर्ट के मुताबिक जमीनी तोदे खिसकने और बारिश के सबब रियासत भर की 259 सड़कों पर रुकावट आ गई। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर्स और पीने के पानी के 54 जखायर भी मुतासिर हुए हैं। मंडी कुल्लू कौमी शाहराह 21 झलौगी इलाके के नजदीक बंद है क्योंकि सड़कों पर पत्थर गिर रहे हैं। इसी दौरान शिमला के मौसमियाती मरकज ने 5 जिलों में मूसलाधार बारिश की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दीगर 4 जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमे ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो मौसम की खराब सूरत हाल के दौरान एहतियात बरतें और हसास इलाकों में गैर जरूरी तौर पर न जाएं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
0: भारत के महकमे मौसमियात ने ओडिशा में अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ शदीद से इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उसने अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा और राजस्थान में भी अगले 2 दिन के दौरान गरज चमक के साथ शदीद बारिश की पेशगोई की है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, मगरबी बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में इसी तरह की सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में जुमेरात तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की तवक्को है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन में रूस की तरफ से रात भर किए गए हमलों में कम से कम 9 अफराद हलाक और दसियों जख्मी हो गए। इलाकाई गवर्नर एवान फेदरोफ के मुताबिक ज़फरेशिया में 6 अफराद हलाक और 19 जख्मी हुए। उन्होंने बताया कि इन हमलों में रॉकेटों और गाइडेड एरियल बमों का इस्तेमाल किया गया। अफसरान ने बताया कि खित्ते में रूसी ड्रोन और बख्तरबंद गाड़ियों के हमलों में 3 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। कीफ में मिजाइल विताली क्लिशको ने बताया कि राजधानी पर एक बैलिस्टिक हमला किया गया। इमरजेंसी खदमात ने बताया है कि एक गोदाम में आग लग गई और एक शख्स जख्मी हो गया। मगरबी कोलंबिया में कल 7.4 शिद्दत का जलजला आने से कम 132 अफराद की जानें चली गईं। 570 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए हैं। अमेरिका के अर्जियाती सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज राजधानी बोगोटा के तकरीबन 400 किलोमीटर मगरब में चोको खित्ते में सैन जोस डेल पलमार के नजदीक था। कनेडियन ओपन 2026 में साबिक आलमी नंबर 1 के ईगा स्वायतिक 6-2, 6-1 से जीत हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने 64 मिनट में रूस की डायना श्राइडर को शिकस्त दी। 6 मर्तबा की ग्रैंड स्लैम चैंपियन का मुकाबला अब यूक्रेन की 9वीं दर्जे की एलिना स्वेतोलिना से होगा, जिन्होंने एकातेरिना अलेक्जेंड्रोव को 3-6, 6-0, 6-3 से शिकस्त दी। भारत ने नाइजीरिया के शहर लागोस में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की दौलत मुश्तरका फेंसिंग चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत की है। उसने खेल के पहले दिन सोने के 4 तमगों समेत 17 तमगे जीते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने सोने के 4, चांदी के 4 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। चैंपियनशिप कल शुरू हुई है और जुमे को खत्म हो जाएगी। खास खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट में बहुत से मामलों पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा किए जाने के दौरान कामकाज में रुकावट अब भी जारी है। दोनों ऐवानों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की है कि हर लापता शख्स की FIR उम्र और सिंफ से कतई नजर फौरी तौर पर लाजमी दर्ज की जाए। यूक्रेन में रूस के रात भर के फिजाई हमलों में 9 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में आज और उड़ीसा में अगले 3 दिन तक शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र अलर्ट जारी किया है। और कनेडियन ओपन टेनिस में पोलैंड की ईगा स्वेतिक सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने रूस की डायना श्राइडर को सीधे सेटों में हराया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दिन में 11 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्ष के सदस्य संबंध में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने की अपील की।
1: सदन में चर्चा हो, प्रश्नकाल हो और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होना चाहिए। ये विधेयक देश और राष्ट्र के साथ बहुत बड़े परिवर्तन लाने के विधेयक होते हैं, इस पे अच्छी चर्चा संवाद होना चाहिए। लेकिन कल बीएससी की मीटिंग में भी आग्रह किया, आज फिर आग्रह कर रहा हूँ कि जिस विषय पर आप छात्रों के विषय पर मांग कर रहे थे, सरकार संसदीय कार्य मंत्री ने कल बीएससी की बैठक में स्पष्ट रूप से कहा कि गृह मंत्री इस बात पर जवाब देने को तैयार हैं, सदन चलना चाहिए।
0: राज्यसभा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। दिन में 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया, लेकिन केवल बीजेडी के डॉ संतृप्त मिश्रा ने ही सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाए। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज संसद परिसर में झारखंड में छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में मार्च निकाला। सांसदों ने आरोप लगाया कि सरकार के इस आश्वासन के बावजूद कि गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देने के तैयार हैं, विपक्ष चर्चा से बच रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने विपक्ष पर जानबूझकर संसद का कामकाज बाधित करने का आरोप लगाया।
2: पेपर लीक को लेकर भी जो तमाम बातें हुई, सरकार ने हर मांग को स्वीकार किया, एक नया कड़ा कानून बनाया। गृह मंत्री जी के वक्तव्य को लेकर लगातार ये मांग करते रहे हैं और हमारी सरकार ने स्पष्ट किया है। माननीय गृह मंत्री जी सदन के अंदर अपने चर्चा भी करना चाहते हैं, अपनी बात भी रखना चाहते हैं, लेकिन ये सुनने के लिए तैयार नहीं है, चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है। इनका एक ही मकसद है कि सदन को बाधित करना है।
0: केंद्रीय मंत्री और रांची से भाजपा सांसद संजय सेठ ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया।
3: जो दमनकारी नीति, जो बर्बरता झारखंड की पुलिस ने किया, जो बर्बरता हेमंत सोरेन के निर्देश पे हुआ, दिन में लाठी चलाई, रात में बेटियों को पीटा गया, कितना कोई असंवेदनशील हो सकता है। मुख्यमंत्री ट्वीट कर रहे हैं, बधाई दे रहे हैं किसको, झारखंड पुलिस को बधाई दे रहे हैं, जिला प्रशासन रांची को कि आपने बहुत शांतिपूर्वक बहुत धैर्य से काम लिया।
0: नई दिल्ली में आकाशवाणी से बातचीत में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने, चर्चाओं का रुख बदलने और दोहरा राजनीतिक रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि कांग्रेस चर्चा नहीं चाहती और अपनी मांगे बदल रही है। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने कहा है कि विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई पर बयान की मांग कर रहा है। श्री खेड़ा ने आरोप लगाया कि गृहमंत्री इस मामले पर बयान देने से बच रहे हैं।
4: सदन में फिर से हमारी मांग वही रही, गृहमंत्री आए, चंदा चोरी जो छात्रों पर अत्याचार हुआ वो उन सब पे बयान दें, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। लगातार विपक्ष यह मांग पिछले 17-18 दिन से कर रहा है, लेकिन गृह मंत्री किसी वजह से डरे हुए हैं।
0: उधर झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। एक रिपोर्ट।
5: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर अब

0: करने का आरोप लगाया। उधर विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी ये मुद्दा छाया रहा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज लोकसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और अन्य नेताओं ने तिरंगा लहराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्ला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं केश कुमार बल।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम व्यापक भागीदारी, पारदर्शी खरीद और बेहतर अवसरों के माध्यम से सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में बदलाव ला रहा है। श्री मोदी ने ये बात वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा जेम के 10 वर्ष पर लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए कही। शहरी विकास विभाग के सचिव सत्येंद्र सिंह ने कहा है कि किफायती आवास व्यवस्था को योजना आधारित दृष्टिकोण से विकसित करके एक सतत व्यवस्था में बदलना होगा, जिसमें स्वामित्व और किराए सहित आवास के लिए विभिन्न विकल्प हों। नई दिल्ली में आज आयोजित किफायती आवास की पुनर्कल्पना योजना से सतत व्यवस्था तक विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि आवास को एक अलग कल्याणकारी उपाय के बजाय शहरी नियोजन और आर्थिक विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखा जाना चाहिए। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने भारत के GI टैग प्राप्त उत्पादन के व्यवसायीकरण और वैश्विक बाजारों तक उनकी पहुंच को गति देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य GI उत्पादों की गुणवत्ता मानकीकरण, व्यापक बाजार पहुंच और डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना और एक जिला एक उत्पाद तंत्र को मजबूत करना है। सरकार ने कहा है कि फरवरी 2024 में शुरू हुई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों को लाभ मिला है। आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बात कही। सरकार ने कहा है कि मौसम विभाग के समन्वय से मॉनसून की बदलती स्थिति और एलनीनो के कृषि पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये बात कही। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रव्यापी अभियान हर घर तिरंगा के अंतर्गत पंजाब में तिरंगा यात्रा निकाली।

0: ली गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा में सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया।
1: पंजाब भाजपा प्रधान केवल सिंह ढिल्लों की अगुवाई में कल शाम रोपड़ जिले में सैकड़ों युवाओं ने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। श्री ढिल्लों ने कहा कि पंजाब का इतिहास देश की आजादी के लिए दिए गए अनगिनत बलिदानों से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना जगा रही है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत कर रही है और आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले महान शहीदों को याद कर रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने हर घर तिरंगा वंदे मातरम के 150 वर्ष कैंपेन के तहत एक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित किया। आकाशवाणी समाचार के लिए जलंधर से मैं राजेश बाली।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता और अन्य विधायकों ने दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
2: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू उपमंडल में आज भारी बारिश की संभावना को देखते हुए सभी शिक्षण संस्थानों को आधिकारिक तौर पर बंद रखा गया है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में भूस्खलन और बारिश के कारण 259 सड़कों पर यातायात बंद है। इसके अलावा 161 बिजली ट्रांसफार्मर और 54 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग 21 झलोगी के पास शूटिंग स्टोन गिरने से अवरुद्ध है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के 5 जिलों शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, हमीरपुर मंडी में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि 4 अन्य जिलों चंबा, कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में भारी वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़्या में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमला हुआ है। विश्व की पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को पराजित किया। 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया, हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। यूक्रेन में रात भर हुए रूस के हवाई हमलों में 9 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और ओडिशा में अगले 3 दिन के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की और कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पोलैंड की इगा स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिन बेशक बदलते रहें, लेकिन तारीखें गवाह होती हैं उस तारीख से जुड़ी घटनाओं की। अगस्त का माह एक ऐसा ही महीना है जब हर तारीख देश की स्वतंत्रता की तरफ ध्यान खींच देती है। जिस आजाद फिजा में आज हम सांस ले रहे हैं, वो हमारे देश के वीरों, जाबाजों, शहीदों की शहादत का ही परिणाम है। अगस्त का महीना शिद्दत से कुर्बानियों की यादें फिर ताजा कर जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और सिर श्रद्धा से भारत माता के इन वीर सपूतों के प्रति झुक जाता है। चलो फिर से वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। हिंदी फिल्मी गीतों में भी आजादी की खूब अच्छी दास्तां बयां की गई है। कुछ ऐसे ही गीतों से लबरेज रहेगा हमारा इस वक्त का ये छोटा सा सफर। इसी कड़ी में शामिल ये गीत कर चले हम फिदा का सबसे पहले जिक्र करते हैं। कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन साहब का संगीत, जिन्हें गजलों का बादशाह कहा गया, लेकिन हर तरह के गीत उनकी संगीत धुनों से सजे। 1964 की फिल्म है ये हकीकत और सदाबहार आवाज है मोहम्मद रफी साहब की। तो चलिए सबसे पहले कार्यक्रम का आगाज इस बेहतरीन देश भक्ति से भरे गीत से।

हवाले। आजादी के परवाने हंसते हंसते सूली पर चढ़ गए, मुस्कुराते हुए सीनों पर गोलियां खा गए, पराधीनता की बेड़ियों को काट देश की माटी पर कुर्बान हो गए। आजादी की यह अलख ऐसे ही तो नहीं जली, आजादी के दीवानों की शहादत से ये आग और भी तीव्र होती चली गई। आजादी के परवानों, मस्तानों, दीवानों के दिलों में ये शब्द हमेशा गूंजते रहे, दिल दे तो इस मिजाज का परवरदिगार दे, जो गमों की घड़ी भी खुशी से गुजार दे। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं या न रहूं पर ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है।

0: कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1। और दोस्तों, जज्बातों एहसासों की बात करें तो एक रंग रूप इनका कुछ ऐसा भी होता है। आजाद फिजा और खुशगवार मौसम में मन हिचकोले लेने लगता है, दिल में छुपे जज्बात उजागर हो जाते हैं। इसी तरह का गीत ये भी इशारा कर रहा है, प्रेम पुजारी फिल्म से लिया गया है, किशोर साहब की आवाज है और संगीत से रचा है इस गीत को ST बर्मन साहब ने।

और अगला गीत भी बहुत ही, जैसे बोलते हैं, कर्ण प्रिय मधुर सा गीत है, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है। आक्रमण फिल्म से है, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में जो गीत है, इसको संगीत से सजाया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और ये गीत बोल गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी साहब ने, और जो फिल्म है ना, ये 1975 की फिल्म है। संजीव कुमार, राकेश रोशन, रेखा मुख्य भूमिकाओं में है, और ये प्यारा सा गीत रेखा जी और राकेश रोशन पर फिल्माया गया है। आप भी सुनिए, आप भी आनंद लीजिए इस गीत का।

मौसम इतना अच्छा हो तो भाई कह सकते हैं कि लाजवाब मौसम में घूमने फिरने का भी जो सिलसिला है ना वो शुरू हो जाता है। और ये गीत जो कुछ है ऐसे ही इशारा कर रहा है कि बस मुलाकात जरूरी है। लवर्स फिल्म का गीत है, रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी 1983 की और फिल्म के डायरेक्टर रहे भारती राजा। 1981 की तमिल फिल्म का ये रीमेक रही। तो फिल्म में थे कुमार गौरव, पद्मिनी कोल्हापुरी, डैनी और तनुजा। कुमार गौरव और पद्मिनी कोल्हापुरी पर ये गीत फिल्माया गया है। आवाजें हैं लता मंगेशकर और अमित कुमार की। संगीतबद्ध किया है इस गीत को आर डी बर्मन साहब ने और बोल हैं इस गीत के आनंद बख्शी जी के।

इस गीत के साथ ही अंजलि आपसे ले रही है इजाजत, लेकिन आप सुनते रहे हमेशा आकाशवाणी गोल्ड 100.1। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, और आगे का सफर आप तय करेंगे अपराजिता के साथ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज बाधित हुई। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। उधर राज्यसभा की कार्यवाही फिलहाल जारी है। राज्यसभा में आज न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार,

स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को सुचारू बनाना भी है। इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो भी हो, उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन न करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। शीर्ष न्यायालय इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर यह बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जांच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है, वहीं छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में आज भाजपा का झारखंड बंद अभियान भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पुरहाट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलूका कायम समेत

चार माओवादियों ने चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम संभाग के उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। उन्होंने बताया कि अब जिले में कोई नक्सली नहीं बचा है। यूक्रेन में रूस के हमलों में 9 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़िया में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए। निप्रेतोवस्क क्षेत्र में 3 लोग मारे गए और 5 घायल हुए। कीव में भी हमले की खबर है। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस की सेनाओं ने कीव और ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन के आयुध भंडारों और परिवहन सुविधाओं पर हमला किया है। रूस ने अपने क्षेत्र में यूक्रेन के 300 से अधिक ड्रोन को मार गिराने का भी दावा किया है। राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के 119वें बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बंगाल के क्रांतिकारी खुदीराम बोस को सबसे पहले 1908 में आज ही के दिन अंग्रेजों ने फांसी दी थी। इस युवा क्रांतिकारी के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी ईगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2 6-1 से मात दी। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता स्वियातेक का सामना यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितोलिना से होगा। एलिना ने एकारितेनिया अलेक्जेंड्रोवा को हराया था। और मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश और बिजली चमकने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। वहीं आंध्र प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी बृहस्पतिवार तक बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता और ये टाइम है मन भावन प्रोग्राम का। और मन भावन में हम आपकी पसंद के गाने तो आपको सुनवाते ही हैं, ये तो आप जानते हैं। आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज सकते हैं और हम फिर ज्यादा से ज्यादा आपकी फरमाइशों को पूरा करने की यहां कोशिश करते हैं और आपके नाम भी शामिल करते हैं। लेकिन आज एक और चीज है आप सबके लिए जो इसे और इंटरेस्टिंग बना देगी, और वो बात ये है कि आपको आज एक क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो मैं आपसे अभी एक सवाल पूछ रही हूं जिसके जवाब आप या तो हमें व्हाट्सएप करेंगे या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तो ध्यान से पहले सवाल सुनिए, फिर मैं गाना सुनाऊंगी और फिर आप अपनी रिक्वेस्ट आराम से लिखकर भेज सकते हैं ना। तो आपके लिए सवाल है कि शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा एक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के प्रयास करने के लिए हुई थी, इस ब्रिटिश न्यायाधीश का नाम क्या था? एक बार फिर से दोहरा देती हूं, शहीद क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी की सजा एक ब्रिटिश न्यायाधीश की हत्या के प्रयास करने के लिए हुई थी, उस ब्रिटिश न्यायाधीश का नाम क्या था? वो नाम आपको लिखकर भेजना है, या तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारा नंबर है 9868868753, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmgoldairdelhi@gmail.com पर। सिलसिला फिल्म से गाना आपको सुनवा रही हूं और इस सवाल का जवाब देने के बाद आप अपनी रिक्वेस्ट भी हमें लिखकर भेज सकते हैं, या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9868868753 और ईमेल आईडी तो आप जानते ही हैं fmgoldairdelhi@gmail.com।

हमने आप लोगों से एक सवाल पूछा था जिसके जवाब आप लोग हमें लिखकर भेज रहे हैं। पहला सही जवाब जो हम तक पहुंचा है उसे लिखकर भेजा है उमेश कुमार साहब ने, और ये संदेश खयाला से हमारे पास आता है, और आपने जवाब लिखा है डगलस किंग्सफोर्ड। तो मैं आपको बता दूं कि सही जवाब है मजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड, और जिस जिसने सही जवाब अब तक लिख दिया है उनके नाम मैं शामिल करूंगी। यानी कि जवाब अनाउंस करने से पहले अगर आपने सही जवाब दे दिया है तो सही जवाब देने वालों में नाम है अनन्या राजवीर गायकवाड़ का, और आपके साथ हैं सुनील, सुषमा, आप पुणे से हमें संदेश भेज रहे हैं, आपका जवाब भी सही है। साथ ही सही जवाब देने वालों में अगला नाम किसका है, हमें सही जवाब लिखकर भेजा है, नाम मुझे देखना पड़ेगा कि क्योंकि आप बहुत सारे मैसेजेस भेज रहे हैं एक साथ, किसी में आप अपनी रिक्वेस्ट लिखते हैं किसी में जवाब, तो आप हैं अनिल त्यागी नन्हे पहलवान और प्रकाश चंद बाजार सीताराम से, आप सब भी सही जवाब लिखकर भेजते हैं और आप हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं। तो सही जवाब देने वालों में स्वरूप आनंद सरजल भी हैं, आपके साथ अंबिकापुर छत्तीसगढ़ से, जी सिर्फ आप ही का नाम आया है, और महेश शेखर, रीना देवी, नेहा कुमारी, सरोज, स्वप्ना सरजल, अमन आयुष सरजल, आप सबने भी सही जवाब लिखकर भेज दिया है। और मैं बताती हूँ सही जवाब किसने दिया है हमें, तो हमारे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही हैं और सही जवाब देने वालों में नाम आता है जी प्रकाश गोगिया भी हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं, और इसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम आता है अगला सुनील गायकवाड़ का, आपके साथ सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकड़ हैं, और ये नाम शायद मैं शामिल भी कर चुकी हूं। इंदिरानगर भवरपुर से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, नेहा, राजू, जगदीश, गोविंदा, आप सब भी जो है इस जवाब को सही सही बताते हैं हमें। इसी के साथ सही जवाब लिखने वालों में नाम और शामिल हो रहे हैं, और मैं बता देती हूं कि किसने लिखा है सही जवाब। तो दिनेश चौहान रामदेवरा से, डैनी पवार, बबलेश पवार, मनीष पवार डांगरी से, बाबूराम जयपाल।

काल और खुदा बख्श खलीफा, आपने भी बिल्कुल सही सही बताया, क्या बात है। सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। और अगला सही मैसेज भेजने वालों में नाम आ जाता है और किसी का भी, तो मैं जल्दी से शामिल कर लेती हूँ इनका नाम। हालांकि आपने, आपका नाम नहीं दिख रहा है, हालांकि आपने हमें जवाब जरूर लिखकर भेजा है कि अपराजिता बेटा राम राम। खुदीराम बोस का जो आपने आंसर दिया है वो सही है। अच्छा, गौरी शंकर जी हैं नांगलोई से, बिल्कुल सही जवाब आपने लिखा है। इसके बाद भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्यांशु भूषण, संस्कृति और पौरुष ने एक रिक्वेस्ट भेज दी है। और सही जवाब देने वालों में नाम आ जाता है हमारे पास, एक बेनाम आंसर भी आया है, बिल्कुल

साबरी जरीफ अंसारी, आप सब हमें रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं आप, गाना कौन सा ये नहीं लिखा है। इसके बाद अगर मैं जवाब की बात करूं तो शबाना भारती नवाब अहमद अरहान अहमद बल्ली मारा से हमें रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं एक गाने की, और आपने साथ ही सही जवाब भी लिख दिया है, वाह क्या बात है। काली घटा फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं, आपका जवाब भी बिल्कुल सही है। इसी के साथ गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इंडिया से बाहर से आज आपको सुन रहा हूं, साउथ अफ्रीका आपने लिखकर भेजा है, वाह क्या बात है। और अगला सही जवाब देने वालों में नाम आ जाता है सतीश और बिमला अनेजा का भी, आपको भी मुबारकबाद। और एक गाने की रिक्वेस्ट भी लिख भेजी है आपने, आप सुनना चाहते हैं किशोर कुमार की आवाज में जय जय शिव शंकर, क्या बात है। और बिहारी कॉलोनी शाहदरा नई दिल्ली से तुलसी चैतन्य मस्की इन प्रोग्राम को पसंद कर रही है। मैं वैसे ये बता दूं कि मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता और केशु रिधान खुराना, आप सबने भी बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा और अपनी रिक्वेस्ट भी लिखी है। तो अगला जो गाना है जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, इसकी रिक्वेस्ट हमारे पास राजस्थान से आई है, धर्मेंद्र छीपा, कपिल, पूजा परिहार और ईशान, आप सब सुनना चाहते हैं बेखुदी में सनम।

0: और भी बहुत सारे सही जवाब हमारे पास पहुंच चुके हैं जिन्हें मैं जरूर शामिल करूंगी। और हाँ, मैं ये कह चुकी हूं कि ये जवाब हमारा आंसर अनाउंस करने से पहले आए हैं, उन्हीं को हम शामिल कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और जानेंगे रिक्वेस्ट किस किस ने और कौन से गानों की लिखकर भेजी है। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड चैनल।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।

बिल्कुल, आज मन भावन में एक सवाल भी है आप सबके लिए, जिसके जवाब आप हमें लिखकर भेज रहे हैं और सही जवाबों को मैं यहां शामिल कर रही हूं। कुछ नाम मैं बता चुकी हूं और कुछ रिक्वेस्ट और कुछ सही जवाब वाले नाम अब मैं आपके साथ यहां जरूर शेयर करूंगी। तो देखते हैं कि अगला मैसेज हमारे पास किसका पहुंचता है। तो हमारे पास जो संदेश आया है वो राशिद हुसैन अंसारी का आया है और ये क्या कहते हैं ये जान लेते हैं हम, क्योंकि रिक्वेस्ट के साथ भी नाम आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपने जवाब नहीं लिखा है, बस आप सदाबहार नगमे सुनना चाहते हैं ऐसा आप बताते हैं। और हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू, पप्पी भाटिया का भी मैसेज हमें आया है। आप अपनी रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेज रहे हैं और अपनी पसंद का गाना सुनना चाहते हैं। अगला मैसेज हमारे पास राजकुमार डूडी का आया है गांव फ्रांसी से, और आप कोई भी गीत सुनना चाहते हैं। साथ ही अजीत भावसर भी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और अनीता फिल्म से आपने गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमें लिखकर भेजी है प्रमिला भावसार के साथ। प्रकाश बोरगांवकर का भी मैसेज मिलता है, बेताब फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। आपके साथ हैं सुषमा, प्रांजलि, सोहम, सदानंद, विराज, स्वीट, अंशुमन, बेबी, ओवी। और अगला मैसेज भेजने वाले हैं कौशल्या देवांगन, आप ओ मेरे दिल के चैन ये गाना सुनना चाहते हैं और आपने आंसर भी लिखकर भेजा है, बिल्कुल सही। रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन आपके साथ।

हैं छत्तीसगढ़ से और अगले पेज की ओर रुक करते हैं। अगला मैसेज हमें किसने लिखकर भेजा है ये आपको बता देते हैं हम। तो ताज मोहम्मद का संदेश हमें मिलता है लक्षर से और आप उत्तराखंड से हमारे साथ हैं। आपके साथ हैं गुलाम साबिर राही मेरा जहां आजाद नगर से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपका संदेश बस आप प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं ऐसा आपने लिखकर भेजा है। अगला मैसेज है रामकुमार रेवाड़ का और सादुल शहर से आप चंद्रकला रेवाड़ के साथ प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं और बस आपने मौसमों की बात कुछ लिखी। अशोक वर्मा है प्रोग्राम सुनने वालों में और आपने भी जो है सही जवाब हमें लिखकर भेजा है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका मैसेज बहुत बड़ा है, आपने पूरी कह सकते हैं कि रिसर्च किया और पूरी बातें हमें बताई हैं कि क्या क्या हुआ था उस घटना से जुड़ा जो सवाल हमने आपसे पूछा। और सनावद मध्य प्रदेश से आपके साथ है अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। आप बाबू फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं जिसकी रिक्वेस्ट आपने हमें लिखकर भेजी है और साथ ही मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन का भी संदेश हमें बुलंदशहर से मिलता है। शाहनवाज सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अब्बान आपके साथ हैं। मैं बता दूं कि अगला जो संदेश आया है वो एक गाना सुनना चाहते हैं, तेरी सूरत से नहीं मिलती, जिद्दी फिल्म से ये गाना है। संजय पाटिल, उषा पाटिल, प्रथमेश निवृत्ति और संजय चौहान इस गाने को सुनना चाहते हैं।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: जी, सही जवाब लिखने वालों में लाइन अभी बहुत लंबी है। बिल्कुल, मुंबई से अनु बढ़ जाते हैं, शमशूल खान, अनुराज बेनारा ने भी बिल्कुल सही जवाब हमें लिखकर भेजा है। साथ ही सही जवाब देने वालों में नाम बहुत सारे शामिल हो रहे हैं, क्या बात है। और अगला सही जवाब जो है वो हम तक लिखकर भेजा है मुरादाबाद से मुकेश, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और आप कहना चाहते हैं कि कोई भी गाना आप सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हम आपको गाने सुनवा रहे हैं और अच्छे अच्छे ही सुनवा रहे हैं। तो अगला मैसेज हमारे पास आता है, वो दिल याद करो, इस फिल्म से आप सुनना चाहते हैं गाना। आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी ये रिक्वेस्ट लिखकर भेजते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास जो पहुंचा है वो है बड़ा बम चौक खंडवा से, संजय मारकंडे, बेबी किट्टू और ममता मारकंडे, आप माँ फिल्म से गाना सुनना चाहते हैं। और अगला जो मैसेज हमारे पास आया है वो पहुंचा है अनजाना फिल्म से गाना सुनने के लिए, मोहम्मद यूनिस, मोहम्मद सादिक खत्री, आयूब खत्री, आप सब इस गाने को सुनना चाहते हैं। और फिर एक और रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती है जिसमें नाम शामिल हैं किसके ये भी बता देते हैं। तो अगला मैसेज सनावत से शेख मूसा मोहसिन का है, और आपके साथ हैं कौन कौन, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाज में आप कब तलक क्षमा जली ये गाना सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज जो है वो पहुंचता है हमारे पास, मुझे लग रहा है सही आंसर वाले जो मैसेज हैं वो ज्यादातर शामिल हो चुके हैं जिनको मैं वैसे तलाश रही हूं। तो गाइड फिल्म से गाना सुनने की रिक्वेस्ट हमारे पास आती है सीताराम बाजार से स्वामी अनिल त्यागी नन्हे पहलवान की। मैं आपको बता दूं कि हम आपको सुनवा रहे हैं तुमसे अच्छा कौन है फिल्म से आशा सुरेश और सोनाली नारंग की पसंद का एक गाना, रंगत तेरी सूरत सी।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
2: आप सुन रहे हैं मन भावन, मैं हूं आपके साथ अपराजिता। और शो के स्टार्टिंग में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसके बहुत सारे सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं और साथ ही आपकी रिक्वेस्ट भी यहां प्ले की जा रही है, आपके नाम पढ़े जा रहे हैं और व्हाट्सएप पर, ईमेल पर आप हमें मैसेजेस भेज रहे हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब से कुछ ही देर में हम कॉल करेंगे एक लकी लिसनर को जिन्होंने सही जवाब दिया है और यहां ऑन एयर लाइव आपसे बात करेंगे मन भावन में ही। तो आप बस बिल्कुल अपने फोन के पास बैठे, हो सकता है कि वो लकी लिसनर आप ही हो। फिलहाल अगला मैसेज जो हमारे पास पहुंचा है वो आता है निमित अहूजा का और जलालाबाद वेस्ट से आपके साथ सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी हैं और जानी दुश्मन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। और अगला मैसेज हमारे पास पहुंचता है सरोज आनंद, सरोज बंसल, अनूप कौर, गुरुग्राम से आप हमारे साथ हैं और प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं।

अगला संदेश जो आता है हमारे साथ, हमारे पास जो मिलता है हमें, वो एक रिक्वेस्ट गाने की कर रहे हैं। और साथ ही हम आपको बता दें कि अगला जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश और पूरा संगई परिवार की ओर से आई है। पराया धन फिल्म से आप एक गाना सुनना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं वो है आपकी कसम फिल्म से, और इसकी रिक्वेस्ट हमें बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान ने लिखकर भेजी है।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।

जी आप सुन रहे हैं मन भावन और मैं आपको बता दूं कि आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और कोशिश की हमने आप तक पहुंचने की, कॉल की, लेकिन देखिए नहीं उठाया आपने फोन, तो भाई क्या किया जाए। अब किसी और की जो है बारी है और अब हम किसको कॉल करेंगे वो तो अब रहस्य ही है। और मैं फिलहाल बता दूं कि अगला जो गाना है वो किसकी पसंद का हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये पसंद हमारे पास लिखकर भेजी है लक्ष्मीनगर रेवाड़ी से राज जांगरा, उवान और दिव्यम जांगरा ने। तन्वी भी है आपके साथ और भावना भी है।

भाई बताइए, क्या पता क्या खबर, आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, मेल करते हैं, और जब हम फोन करते हैं तो आप फोन नहीं उठाते। भाई वाह, ये तो बड़ी मजेदार बात हो गई। और मैंने तीन हमारे लिसनर्स को फोन किया जो हमारे रेगुलर कॉलर्स भी हैं और जिन्होंने आज सही जवाब भी दिया था, और मैं आपके नाम भी बताना चाहूंगी। पहला कॉल मैंने मस्कीन परिवार को किया, तुलसी चैतन्य मस्कीन, आपने फोन नहीं उठाया, दो बार कॉल किया। उसके बाद पर्ल विलिस जो हैं उन्हें भी कॉल किया गया और आप लोगों ने भी फोन नहीं उठाया। अब मैं एक लास्ट ट्राई कर रही हूं, और अब एक और ट्राई जो मैंने किया था फोन प्रकाश गोगिया साहब को, उनका फोन मिल गया था लेकिन उनका फोन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा था। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी कि फिर किसी रोज आपसे बात होगी, अभी समय जाने का हो गया है। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से जवाब लिखकर भेजे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पर बोलते हुए कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह अनुरोध इसलिए किया गया क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है, जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने यह विधेयक पेश किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों विधेयक बिना चर्चा के पारित हो गए। कार्यवाही पूरी होने के बाद लोकसभा को आज दिनभर के लिए स्थगित कर दिया गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। राज्यसभा में न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश किया गया। लोकसभा विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्य

0: की योग्यता, नियुक्ति और सेवा में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को सुचारू बनाना भी है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज निर्वाचन आयोग से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई की। न्यायालय ने नियुक्त न्यायाधिकरणों द्वारा निपटाई गई अपीलों का विवरण देने को कहा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की SIR से संबंधित अपीलों के शीघ्र निपटारे की याचिका पर संज्ञान लिया। अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। झारखंड में JPSC JSSC परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने का ऐलान किया है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची समेत कई इलाकों में प्रभावी रहा। प्रमुख बाजारों में प्रतिष्ठान बंद रहे और यातायात पर असर पड़ा। राजधानी में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूर्णतः नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रुपए के इनामी माओवादी सलुका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस केंद्र में सिंहभूम संभाग के उप महानिरीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने समर्पण किया है। यूक्रेन में रूस के हमले में 9 लोगों की मौत हुई है और कई लोगों के घायल होने की खबर है। क्षेत्रीय गवर्नर इवान फेडोरोव ने बताया कि ज़ापोरिज़िया में 6 लोग मारे गए और 19 घायल हुए हैं। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वियातेक कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। स्वियातेक ने रूस की डायना श्राइडनर को 6-2, 6-1 से हराया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said the Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam. He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a roar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protests over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Meanwhile, Rajya Sabha has taken up the Tribunals Reforms Bill 2026 for consideration and passing. Lok Sabha has already passed the bill

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। एक बार फिर प्रेम पर्वत फिल्म से ये गाना आप सबके लिए।

0: मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं। घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: एक सहायक रजिस्ट्रार, एक रिक्ति वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी, दो रिक्तियां प्रधान निजी सचिव, एक रिक्ति सहायक सूचना अधिकारी अपर निदेशक प्रचार, एक नियुक्ति अनुसंधान अधिकारी, दो रिक्तियां पुलिस उपाधीक्षक, दो रिक्तियां सहायक लेखा अधिकारी, एक रिक्ति निजी सहायक, तीन रिक्तियां निरीक्षक, छह रिक्तियां वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, एक रिक्ति प्रोग्रामर असिस्टेंट, दो रिक्तियां लेखाकार, दो रिक्तियां स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड वन, एक रिक्ति सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, एक रिक्ति स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड टू, एक रिक्ति स्टाफ कार ड्राइवर, तीन रिक्तियां कांस्टेबल एक रिक्ति तथा डिस्पैच राइडर एक रिक्ति। पदों की संख्या में बदलाव भी हो सकता है। जो उम्मीदवार पात्र हैं और एक से ज्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें हर पद के लिए अलग अलग आवेदन जमा करना होगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख रहेगी 8 से 14 अगस्त 2026 के रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से 45 दिन तक। अधूरे आवेदनों, अनिवार्य दस्तावेजों से रहित आवेदनों और निर्धारित अंतिम तारीख के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए रोजगार समाचार पत्र 8 से 14 अगस्त 2026 का। अवर सचिव स्थापना का फोन नंबर है 0112466-3278। इस पर भी आप आवश्यक जानकारी ले सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन में आवश्यकता है इन पदों को भरे जाने की। साइंटिस्ट ग्रेड ई, साइंटिस्ट ग्रेड डी, साइंटिस्ट ग्रेड सी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तथा सेक्शन ऑफिसर। विस्तृत जानकारी, नियम, शर्तों, वेतन, आरक्षण आदि के लिए देखिए वेबसाइट www.spmniwas.in तथा jalshakti.ddws.gov.in। इसके अतिरिक्त DOPT की वेबसाइट पर भी आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
2: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
3: दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।

0: And I was talking about different festivals which is still to come up. Festivals like Nag Panchami encourage the protection of snakes which emerge from flooded burrows and act as natural rodent controllers for farm crops. And if we talk about the ritual offerings during these pujas, like the Belpatra, the neem and the peepal, they all promote the preservation of native medicinal trees that oxygenate and purify the humid air which is during this time. And in olden times, Jaya, when health and our well-being were connected to religious rituals, people used to believe them instantly and follow them. And that is why they were all connected with something puja part se relate kiya jata tha in some cheezon.
1: Bilkul, jis tarah se hamari bhartiya sanskriti hame bahut kuch sikhati hai, to isme vigyan bhi chipa hota hai, na sirf hum ek manyata mein chal rahe hote hain, jaisa aapne metabolism ko lekar ke kaha ki usme low hota hai, to सावन का महीना कह के हम नॉनवेज होता है मांसाहारी भोजन को त्याग देते हैं उस महीने के लिए,
0: जस्ट टू गिव अ लिटिल रेस्ट टू आवर गट आवर बाउल सिस्टम एंड ऑल.
1: तो संस्कृति और विज्ञान का हमेशा हमने मिलन देखा है और सावन का महीना भी उसी का एक प्रतीक है.
0: वेरी राइट. एंड नाउ शैल वी बिगिन विद द न्यूज़ हेडलाइंस. जया
1: जी,
0: लोकसभा पासेस केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल एंड नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल.
1: सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो.
0: 9 पीपल किल्ड इन ओवरनाइट रशियन एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस यूक्रेन.
1: मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों और उड़ीसा में अगले 3 दिनों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया.
0: एंड इन कैनेडियन ओपन टेनिस, पोलैंड्स इगा श्वांटेक स्टॉर्म्स इनटू सेमीफाइनल्स विद स्ट्रेट सेट विन ओवर रशियाज डायना श्नाइडर. And as always, Jaya, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level. And first in the series of the topics that we will discuss today is Journey of Our Tricolor. Today, Jaya, let's talk about something that's instantly, it fills every Indian heart with pride, our Tiranga.

0: बेहद खूबसूरत सा संगीत, सच में एवरी इंडियंस के दिलों को ये प्राइड से भर देता है। और अगर हम कहें तो राष्ट्रीय ध्वज की जो यात्रा है वो बहुत पहले शुरू हुई थी, 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने हमारे मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को अपनाया था, आजादी से बस कुछ सप्ताह पहले।
1: एग्जैक्टली, एंड एज इंडिया प्रिपेयर्स टू सेलिब्रेट इट्स 80th इंडिपेंडेंस डे, द तिरंगा कंटिन्यूज टू रिप्रेजेंट आवर फ्रीडम, यूनिटी, सोवरेनिटी एंड नेशनल प्राइड।
0: लेकिन अनुजा मुझे बताइए कि क्या हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमेशा वैसा ही दिखता था जैसा तिरंगा आज दिखता है?
1: नॉट एट ऑल। द फ्लैग इवॉल्वड अलोंग विद इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। देयर वर सेवरल डिजाइंस बिफोर द प्रेजेंट ट्राइकलर इमर्ज्ड।
0: एक अहम पड़ाव 1921 में आया जब आजादी की लड़ाई लड़ने वाले पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी के सामने झंडे का एक डिजाइन पेश किया और गांधी ने उसमें सफेद पट्टी और चरखा जोड़ने का सुझाव दिया था।
1: यस, एंड देन इन 1931 अ फ्लैग वाज अडॉप्टेड विद अ सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन कलर्स विद अ चक्र एट इट्स सेंटर।
0: और फिर 1947 में ऐतिहासिक बदलाव आया, संविधान सभा ने तिरंगे को तो अपना बनाए रखा लेकिन चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया, बीच में वह सुंदर गहरे नीले रंग का चक्र।
1: यस जया, विथ 24 स्पोक्स सिंबलाइजिंग धर्म, जस्टिस एंड कंटिन्यूअस प्रोग्रेस। सो जया, हियर्स अ क्विक क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी स्पोक्स डज द अशोक चक्र हैव, एनी आइडिया?
0: इसका जवाब है 24।
1: जी हाँ।
0: रंग क्या कहते हैं, आइए इन तीन रंगों का मतलब भी समझते हैं।
1: यस, सैफ्रन रिप्रेजेंट्स करेज, सैक्रिफाइस एंड सेल्फलेसनेस, व्हाइट रिप्रेजेंट्स पीस, ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी,
0: और हरा रंग समृद्धि, विकास और प्रतीक के साथ साथ तालमेल का प्रतीक है। और बीच में अशोक चक्र हमें हमेशा आगे बढ़ने की याद दिलाता रहता है।

0: A wonderful message for a nation constantly looking towards progress. The Tiranga carries the sacrifices of countless freedom fighters.
1: और जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, हर घर तिरंगा अभियान एक बार फिर नागरिकों को हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़ने की याद दिलाता है। यह अभियान लोगों को अपने घरों, कार्यस्थलों और संस्थानों में सम्मान और गौरव के साथ तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित करता है।

0: And Jaya, there's something interesting for our young listeners too. The Department of Youth Affairs has launched the National Flag Quiz 2026 on the My Bharat portal. And there is something else.
1: आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज़ाद भारत तक तिरंगे का सफ़र एक राष्ट्र के तौर पर हमारे अपने सफ़र को दर्शाता है। ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, ये हमारी आज़ादी, हमारी एकता और नागरिकों के तौर पर हमारी जिम्मेदारियों का प्रतीक है।
0: So whenever you see the Tiranga flying high, remember the history behind it and the values it represents.

0: And we have another topic in our Dateline section today. So moving on to the next topic, let me begin with a question. When was the last time you picked up a physical book? Not an e-book, Jaya, not your phone, but an actual book? Do you remember it?
1: ये तो मुश्किल सवाल है और मुझे लगता है कि इसलिए आज का टॉपिक
0: Absolutely. Today we are talking about a trend that's bringing books, rising book cafe culture. That is bringing books, coffee and people together, the rising culture of book cafes.
1: और शायद ई-बुक्स और डिजिटल रीडर्स के दौर में बुक कैफे असल किताबों को नई जिंदगी दे रहे हैं.
0: थिंक अबाउट इट, यू वॉक इन टू अ कैफे, ऑर्डर योर फेवरेट कॉफी, फाइंड अ कंफर्टेबल कॉर्नर एंड इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली रीचिंग फॉर योर फोन, यू पिक अप अ बुक.
1: बिल्कुल, बुक कैफे पढ़ने के आनंद और कैफे के आराम का मेल होते हैं.
0: And they have become increasingly popular across the country, attracting readers, writers, students, and even people simply looking for a peaceful place to just unwind themselves.
1: लेकिन book cafe सिर्फ ऐसी जगह नहीं है जहां लोग चुपचाप बैठकर पढ़ते हैं.
0: Right, that's right. They are becoming literary communities.
1: Book club, reading group, कविता सत्र और open mic nights लोगों को एक साथ लाते हैं. और यहाँ कुछ कैफे में अपनाए जाने वाला एक बढ़िया आइडिया है, एक किताब ले एक किताब छोड़े.
0: What a wonderful concept. You bring a book you have finished and exchange it for another. One person's old favorite becomes another person's new discovery.
1: अब बुक कैफे के सबसे आकर्षक हिस्से रीडिंग नुक के बारे में बात करते हैं.
0: Oh yes, a comfortable chair, cushions, a good view, maybe some soft music.
1: और एक ऐसी किताब जिसे आप बस हाथ से रख ही नहीं पाते या लगभग बाहरी दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाने जैसा है.
0: And that's important today. We spend so much time looking at screens, our phones or any other screens like iPads or whatever. There has to be some screen in front of our eyes.
1: बिल्कुल, डिजिटल थकान की वजह से बहुत से लोग किताब का पन्ना पलटने जैसी साधारण खुशी को पसंद करने लगे हैं.
0: So here's a challenge for our listeners. Next time you have a free hour, try spending it without your phone, just a book and a cup of tea or coffee.
1: Book cafe क्यों बढ़ रहे हैं? इस ट्रेंड के पीछे कई कारण हैं. एक कारण वह है जिसे हम थर्ड प्लेस लिविंग कह सकते हैं.
0: A comfortable space that's neither home nor workplace, somewhere people can relax, read, meet friends or even work remotely. And there's the social factor as well.
1: बिल्कुल, कविता पाठ, बुक लॉन्च और बुक क्लब लोगों को ऐसे दूसरे लोगों से मिलने का मौका देते हैं जिनकी रुचियां एक जैसी हों.
0: So a book cafe can turn a solitary activity, reading, into a shared experience.
1: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास आज क्या कुछ खास है.
0: तो वेयर आर वी गोइंग फर्स्ट?
1: सबसे पहले चलते हैं हरिद्वार.

कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कल शाम तक 4,43,78,000 से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्यों के लिए हरिद्वार से रवाना हो चुके थे। आज सावन शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ कांवड़ यात्रा का समापन हो रहा है। सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।

0: And now, from Haridwar to Mumbai. Mumbai is currently hosting the BRICS Friendship Cities Conclave 2026, bringing together representatives from around 15 cities. Addressing the gathering during the opening ceremony this morning, Maharashtra's Governor Jishnu Dev Verma underlined the growing interdependence of nations, stating that the idea of Vasudhaiva Kutumbakam is no longer merely a philosophy, but a reality in today's interconnected world. Mr. Verma emphasized that the conclave must help translate proposed ideas and solutions into concrete action and partnerships. We have more on this from our Mumbai correspondent.
1: Maharashtra's Deputy Chief Minister, who also holds the urban development portfolio, Mr. Eknath Shinde, was the chief guest at the conclave, stating that cities are not merely structures of brick and concrete, but the growth engines of a nation's economic progress. Mr. Shinde urged cities across BRICS nations to share their experience, technology, and innovation to build citizen-centric cities for the 21st century. Describing Mumbai as a capital of India's aspirations, Mr. Shinde said, modern cities should be defined by their resilience, innovation, cooperation, and sustainability. Stressing that rapid urbanization, climate change, floods, heat waves, traffic congestion, pollution, water management, and affordable housing are some of the common challenges faced by major cities across the world. Mr. Shinde said, addressing these challenges require cooperation and exchange of experiences that go beyond national borders. As the BRICS Friendship Cities Conclave returns to Mumbai after a decade, the focus is on stronger outcomes, moving from dialogue to action and showcasing how cities can adapt, innovate, and lead at scale. Nisha Rani for Parikrama from Mumbai.
2: और श्रोताओं को लिए चलते हैं आंध्र प्रदेश, जहां गुंटूर में 8 और 9 अगस्त को दो दिन का अमरावती चित्रकला विथी आर्ट फेस्टिवल आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में लगभग 800 कलाकारों ने हिस्सा लिया, जिससे उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने और सीधे जनता से जुड़ने का मंच मिला। और जानकारी के लिए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: The Amravati Chitrakala Vidhi Open Air Art Festival featured paintings, sculptures, traditional art forms and other creative works. Artists from different parts of Andhra Pradesh participated in the event. Visitors had an opportunity to view the artworks, interact with the artists and purchase some of the works. The festival aims to support artists by giving them greater opportunities to display their work and reach art lovers directly. It also seeks to promote the rich artistic traditions of Andhra Pradesh and encourage young and upcoming artists. The Amravati Chitrakala Vidhi is an initiative of Andhra Pradesh State Creativity and Culture Commission. The first edition was held in Rajamahendravaram in 2025 with around 550 artists participating. The organizers said the event would help bring art closer to the public and provide artists with a wider platform to gain recognition for their work. Allu Murli for Parikrama, Akashwani News, Vijayawada.
2: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
0: सो टू बिगिन विथ लेट्स टॉक अबाउट कनाडा ओपन। इन टेनिस कैनेडियन ओपन 2026 फॉर्मर वर्ल्ड नंबर वन ईगा श्वांटेक स्टॉर्म्ड इनटू द सेमीफाइनल्स विद अ 6-2-6-1 विन ओवर रशियाज डायना श्नाइडर इन 64 मिनट्स। द सिक्स टाइम ग्रैंड स्लैम चैंपियन विल फेस यूक्रेन्स नाइन्थ सीड एलिना स्वितोलिना।
2: खेल से और खबर है हमारे पास कि नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक जीते। रविवार को शुरू हुई प्रतियोगिता 14 अगस्त तक चलेगी।
0: And in some business news, benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today after a choppy trading session. The Sensex shed 388 points to close at 78,154. Nifty lost 112 points to settle at 24,472. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index ended on a flat note, while the small-cap 100 index gained 0.2%.
2: और अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
4: आज हम महान स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने 11 अगस्त 1908 को फांसी दी थी। उस समय उनकी उम्र केवल 18 वर्ष थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वतंत्रता की वेदी पर प्राण न्योछावर करने वाले वे सबसे कम आयु के शहीद थे।
5: खुदीराम बोस का जन्म हुआ था 1889 में पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के महोबनी में 1908 में बोस को ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड को मारने की जिम्मेदारी दी गई, जो युवा स्वतंत्रता सेनानियों को क्रूर शारीरिक यातनाएं देने और कठोर सजा सुनाने के लिए कुख्यात था।
4: 20 अप्रैल 1908 को बोस और प्रफुल्ल कुमार चाकी ने यूरोपियन क्लब के सामने किंग्सफोर्ड को ले जा रहा वाहन समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर अदालत के वरिष्ठ वकील बैरिस्टर प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी सवार थे।
5: इस हमले की खबर पूरे शहर में फैल गई और दोनों को पकड़ने के लिए कलकत्ता पुलिस को बुलाया गया। खुदीराम बोस को वाइनी रेलवे स्टेशन से पकड़ा गया, जहां वो 25 किलोमीटर पैदल चलकर हमले की अगली सुबह पहुंचे थे। प्रफुल्ल कुमार चाकी ने गिरफ्तार होने के ठीक पहले आत्महत्या कर ली।
4: जब बोस को पकड़कर मुजफ्फरपुर पुलिस थाने लाया जा रहा था तो भारी भीड़ उनके इर्द गिर्द जमा थी। कई सुनवाइयों के बाद खुदीराम को मौत की सजा सुनाई गई और 11 अगस्त 1908 को उन्हें फांसी दे दी गई।
5: खुदीराम बोस में देशभक्ति का जज्बा इतना गहरा था कि फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय भी उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। जब उनके पार्थिव शरीर को निकाल कर ले जाया जा रहा था तो भारी भीड़ रास्ते में दोनों तरफ खड़ी थी। लोग फूल बरसा रहे थे, मानो देश की आजादी के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान की मौन सराहना कर रहे हों। इस महान शहीद को आकाशवाणी समाचार का नमन।
4: आज हम राष्ट्रवादी राम कल्याण को भी याद कर रहे हैं, जो 11 अगस्त 1947 को शहीद हुए थे। पूर्व के बूंदी स्टेट, जो कि अब राजस्थान में है, वहां के रहने वाले राम कल्याण ने अगस्त 1947 में बूंदी कामगारों के संघर्ष में भाग लिया। 5 अगस्त 1947 को श्रमिकों ने अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल की। पुलिस ने बड़ी संख्या में श्रमिकों और उनके नेताओं को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया।
5: बाकी कामगारों ने जन समर्थन और सहयोग से अपना संघर्ष जारी रखा और 11 अगस्त 1942 को एक विशाल रैली निकाली। जब प्रदर्शनकारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लिए रैली में मार्च कर रहे थे तो सशस्त्र पुलिस ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई आंदोलनकारियों को गोलियां लगी, राम कल्याण के सीने में कई गोलियां लगी और उसी दिन उनकी मौत हो गई। स्वदेश की माटी के इस बहादुर बेटे को हमारा नमन।
4: आज हम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रमा प्रसाद और सियाम्बरम का भी स्मरण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज निवासी इन दोनों सेनानियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रैली पर पुलिस गोलीबारी में चंद्रमा प्रसाद और सियाम्बरम दोनों शहीद हो गए। आकाशवाणी समाचार इन अमर शहीदों को नमन करता है।
5: आज हम शहीद बिसराम राउत को भी याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया।
4: एक मुठभेड़ में उन्हें पकड़ लिया गया, उन पर विद्रोह करने और लोगों को भड़काने का मुकदमा चलाया गया और कठोर परिश्रम के साथ आजीवन कारावास की सजा दी गई। उन्हें अंडमान द्वीप भेज दिया गया, वहां हिरासत में ही 11 अगस्त 1859 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान देशभक्त को हमारा नमन।
2: आज ही के दिन साल 1924 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय संगीत के एक ऐसे महामनीषी का जन्म हुआ था, जिन्होंने लुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों को पुनर्जीवन दिया और संगीत को एक वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान की। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पंडित लालमणि मिश्र जी की।

0: श्रोताओं, पंडित लालमणि मिश्र जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे केवल एक उत्कृष्ट वादक ही नहीं बल्कि एक सिद्ध गायक भी थे, लेकिन संगीत जगत में उनका सबसे ऐतिहासिक योगदान विचित्र वीणा वादन को माना जाता है। उन्होंने इस वीणा पर मिश्र बाणी नामक एक शैली और नई तकनीकों का आविष्कार किया, जिसने पूरी दुनिया के संगीत प्रेमियों को विस्मित कर दिया।
1: वी ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू पी जयराज, the legendary Indian film actor, director and producer who held the record for the longest career in Indian cinema. He received the prestigious Dada Saheb Phalke Award in 1980. He began acting in silent films in 1929 before transitioning to talkies with his movie Shikari, which came in 1931. Renowned as Indian cinema's premier action and stunt hero, famously portraying notable historical roles, he became very popular, and so here we have for you a popular song from one of his movies.

0: बिल्कुल, उनकी फिल्मों के गीत भी बेहद लोकप्रिय हुए थे जैसा अभी हमने सुना। और फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने भारत व्यास जी के लिखे और संगीतकार बसंत देसाई के संगीत से सजे गानों को जयराज साहब पर बेहद खूबसूरती से फिल्माया गया था। इससे फिल्म का एक बेहद प्रसिद्ध और सुरीला गीत था।
1: काया सिंह बरन जो सुहाए, अरे मूछे चाट रही गहलों को, मूछे चाट रही गहलों को, त्योरी बदले हो रही जाए, क्या कहना है रा...
0: आज ही के दिन अपनी पैनी दृष्टि से आधुनिक हिंदी कविता विशेषकर छायावाद को एक नई पहचान और प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रख्यात समीक्षक, पत्रकार और प्रशासक आचार्य नंदू दुलारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था, जब हिंदी साहित्य में छायावाद की कविताओं को लेकर तमाम तरह के विवाद और जयशंकाएं थी, तब वाजपेयी जी ने अपनी निष्पक्ष और गहरी समीक्षा दृष्टि से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महाकवियों की कविताओं के सौंदर्य और उनकी गहराई को समाज के सामने रखा। यही कारण है कि उन्हें छायावाद का शीर्षस्थ आलोचक माना जाता है। उनकी समीक्षा शैली बेहद स्पष्टवादी, गंभीर और वैज्ञानिक थी, जो नई पीढ़ी के साहित्यकारों के लिए बेहद मददगार है।
2: And we also pay tribute to Rahat Indori, the legendary Urdu poet, Bollywood lyricist and cultural icon, whose powerful voice, fearless couplets and unmatched stage presence redefined modern mushairas. He was also a former professor of Urdu language and a painter. Indori performed in Mushaira and Kavi Sammelan for 40-45 years and he travelled widely internationally to recite poetries. He attended poetic symposiums in almost all the districts of India and has travelled multiple times to the US, UK, Australia and many other countries. Let's hear a song written by him.

0: उनका असली ठिकाना लेकिन अगर हम कहें तो वो मुशायरों का मंच था। और जब राहत साहब माइक पर आते थे तो अपनी बुलंद आवाज, हाथों के खास इशारों और बेबाक अंदाज से हजारों की भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देते थे।
1: अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। कोई आसमान थोड़ी है साहब, लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है।
0: 5 दशकों से ज्यादा समय तक साहित्य और सिनेमा की सेवा करने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी को देश विदेश में अनगिनत सम्मानों से नवाजा गया। और श्रोताओं, अब समय हो चला है परिक्रमा के इस अंक को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए जया भारती यानी मुझे और अनुजा कुमार को। नमस्कार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। भारत ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और उसकी स्थिति पर कोई भी बदलाव संभव नहीं है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कोई भी तथ्यों को नहीं बदल सकता कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
2: श्री जायसवाल ने बताया कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट पर वार्ता जारी है और इसकी प्रगति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना भारत की प्राथमिकता है। श्रीलंका और भूटान के साथ रिश्ते और बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को ब्रिक्स आउटरीच सत्र का निमंत्रण दिया गया है। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। इस विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने 2015 में अधिकरणों के युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए

0: विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायालय की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश दिया है। झारखंड में राज्य पुलिस ने पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा, कोल्हान और पोराहट वन प्रभागों को पूरी तरह से नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। 10 लाख रूपये के इनामी माओवादी सलूका कायम समेत 4 माओवादियों ने चाईबासा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। श्री अनुरंजन ने बताया कि पिछले एक वर्ष में 52 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। इस मुद्दे पर हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही भी बाधित हुई है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश का और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। अगले 2 दिन में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और राजस्थान में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Lok Sabha today passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "The Kerala Legislative Assembly had passed a resolution in 2024 requesting the centre to change the name of the state from Kerala to Keralam." He said the request in this regard was made because the name of the state in Malayalam is Keralam, while in the constitution it is written as Kerala. The lower house also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. Minister of State for Cooperation Muralidhar Mohol moved the bill, which aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET matter. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. After passing the bill, the House took up special mention in which various members raised the issues of public importance. The chair adjourned the House for the day after completing its business to meet again at 11 a.m. tomorrow.

नमस्कार, स्वागत आप सभी का गाते गुनगुनाते में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं आपके साथ अपराजिता, और आप जानते हैं जब गाते गुनगुनाते में अपराजिता होती है तो आपके लिए बहुत सारे सवाल लेकर आती है। तो सवालों के जवाब लिखने हैं आपको, और सही जवाब लिखकर भेज देने हैं बहुत जल्दी से fmgoldairdelhi@gmail.com पर। ये तो सब बातें आप जानते हैं, लेकिन सवाल पूछने से पहले एक प्यारा सा गाना सुनते हैं परदेश फिल्म से, और फिर शुरू करते हैं अपना सवालों का सिलसिला।

तो भाई पहला सवाल एफएम गोल्ड सुनने वालों के लिए है एक ऐसी फिल्म से जिसे डायरेक्ट किया अब्बास मस्तान ने। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में राखी गुलजार, फरीदा जलाल, सुरेश ओबेरॉय, दलीप ताहिल और आशीष विद्यार्थी ने भी काम किया। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म ने फिल्मफेयर अवार्ड्स में 5 नॉमिनेशंस अपने नाम किए। वैसे 2 कैटेगरीज में फिल्म ने 2 अवार्ड जीते भी, जो थे बेस्ट फीमेल डेब्यू और बेस्ट एक्शन कैटेगरी के लिए। ये कहानी है उस बेटे की जो अपने पिता के नाम पर लगे दाग को साफ करना चाहता है और उन लोगों से बदला लेना चाहता है जिन्होंने उसके पिता को जालसाजी से फंसाया था। अगर इन कड़ियों को जोड़ पाए हैं आप और पहुंच गए हैं फिल्म के नाम तक, तो आपको करना है एक बहुत ही आसान सा काम। आपको फिल्म का नाम टाइप करना है और भेज देना है fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। यह है हमारा ईमेल आईडी और जो जल्द से जल्द अपना आंसर हम तक पहुंचाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसका नाम भी आएगा। तो हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्णा फिल्म से ये एक बहुत ही

तो भाई अगर जवाबों की बात करें तो पहला सही जवाब हमें लिख भेजा नवीन भाटिया साहब ने, दूसरे नंबर पर सही जवाब भेजते हैं नागेंद्र ठक्कर और तीसरे नंबर पर आते हैं प्रणव शिंदे जो मुंबई से हमें सही जवाब लिखकर भेजते हैं। आपके साथ यश शिंदे भी हैं तो आप सभी को मुबारकबाद पहले तो, और बाकी और लिसनर्स भी हैं जिन्होंने सही जवाब लिखा है। वैसे कन्फ्यूजन ना दो फिल्मों के नाम के बीच में है, एक सोल्जर एक बाजीगर, और सही जवाब है सोल्जर। अजीत भावसार ने हमें विरमगाम से उमेश कुमार गौड़ बुलंदशहर वाले इनके साथ आंसर लिखकर भेजा है। और साथ ही इसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम आता है राजेश मानकलाल शाह का, और आपके साथ परिमल झा भी हैं, और इसके बाद बहुत सारे बाजीगर बादशाह खिलाड़ी ऐसे नामों के बाद जगदीश बजाज ने बिल्कुल सही जवाब विकासपुरी से लिखकर भेजा है। और फिर आती है बारी सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी की जो सोनीपत से सही जवाब भेज रहे हैं हमें। गिरीश वैशाली बम्बी हैं वडोदरा से हमारे साथ, और इसके बाद आती है बारी किसकी, प्रफुल मोहत प्रफुल हैं और आपने अमरावती से हमें बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। और इसके बाद कुशाग्र अग्रवाल ने भी हमें सही जवाब भेजा है आदित्य अग्रवाल के साथ, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं बता देती हूं आपको कि सोल्जर ये जो फिल्म है ये 1998 में आई, और इसमें अगर लीड रोल की बात करें तो बॉबी देओल और प्रीति जिंटा इसमें लीड रोल में नजर आए, मतलब कि इन्होंने इसमें मेन हीरो हीरोइन का जो रोल है वो अदा किया। और अगर मैं अवार्ड की बात करूं तो प्रीति जिंटा को इस फिल्म में दिल से और सोल्जर के लिए बेस्ट डेब्यू फीमेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, यानी कि उन्होंने शेयर किया था, इन दोनों फिल्मों में उनका डेब्यू परफॉर्मेंस था इस साल में, तो उन्हें मिला फिल्म फेयर डेब्यू का फीमेल अवार्ड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये जो फिल्म है ना अगली जिसके बारे में अब हम बात करेंगे वो इंस्पायर्ड है एक अंग्रेजी फिल्म से। ये फिल्म है देव अनीता प्रिया और राज की। देव की शादी अनीता से, प्रिया की शादी राज से होनी तय हो चुकी है, लेकिन जब ये लोग एक क्रूज पर मिलते हैं तो देव और प्रिया एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं और फैसला करते हैं कि अपनी सगाई तोड़कर कुछ समय बाद फिर मिलेंगे। लेकिन क्या सच में जैसा उन्होंने एक दूसरे से वादा किया होता है और जैसा सोचा होता है कि हम ऐसा करने वाले हैं, क्या वो ऐसा कर पाते हैं, इसी के बारे में है ये कहानी यानी कि ये फिल्म। तो अगर आपने पहचान लिया है फिल्म की स्टोरी लाइन या फिर किरदारों के नाम से आप पहचान चुके हैं कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ, स्टोरी लाइन से पहचान चुके हैं, तो आप fmgoldaiadelhi@gmail.com पर जल्दी से फिल्म का नाम लिखकर भेज दीजिए। ज्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको क्योंकि नाम है छोटा सा। और तब तक मैं आपको सुनवा रही हूँ सोल्जर फिल्म से ये गाना।

0: फिलहाल गाते गुनगुनाते में समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर से आएंगे और जानेंगे कि किस किस ने सही जवाब लिखकर भेजे हैं और अगला सवाल है क्या, ये जानने के लिए सुनते रहिए एफएम गोल्ड।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

सुनवा रही हूँ आपको मासूम फिल्म से एक गाना, और इस गाने के बाद जानेंगे कि किस किसने सही जवाब हमें लिखकर भेजा है ईमेल पर।

सही जवाब हम तक पहुंच गए हैं। पहला सही जवाब हमें लिखकर भेजा है नागेंद्र ठक्कर ने। दूसरे नंबर पर आते हैं मिलिंद खड़के और तीसरे नंबर पर इस बार बाजी मार ली है इदरीस सैफी साहब ने। इसके बाद अजीत भावसर, धीरज अरोड़ा, प्रणव शिंदे, जगदीश बजाज, सतप्रकाश सनौठिया, भगवती सिंह, गिरीश वैशाली, अजिंक्य बम और ये लोग कह रहे हैं कि हम ट्रेन में सुन रहे हैं। भाई वाह, क्या बात है। और पुष्पेंद्र सिंह का भी संदेश आया है योगेश नागर के साथ ग्रेटर नोएडा से, आपने बिल्कुल सही बताया। और राजकोट से जैमिन जैन भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। संदीप सलूजा हैं हमारे साथ नोएडा से, सुदर्शन, अनीता सिमरनमुखी सोनीपत से, अंबर पटवर्धन हैं, इन्होंने भी बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। और सही जवाब देने वालों में हैं जयंती नाशिकार, जिन्होंने हमें मेन लीड्स के नाम भी बताए हैं, आमिर और मनीषा कोयराला, बिल्कुल सही। और सही जवाब देते हैं प्रफुल मोहत प्रफुल और राजकोट से हेतल भावसर। बस यही सही जवाब पहुंचे हैं और मुझे लगता है कि काफी सही जवाब इस सवाल के लिए हमारे पास आए हैं। तो इस फिल्म के बारे में तो आपको पता चल गया, आमिर खान और मनीषा कोराला इसमें रहे। आमिर इसमें देवकरण सिंह की भूमिका में नजर आए और प्रिया का रोल मनीषा कोयराला ने प्ले किया। आपको गाना जरूर सुनवाएंगे लेकिन मैं अगला सवाल जरूर पूछूंगी उससे पहले। अगला सवाल आपके लिए 90s की एक रोम कॉम यानी कि रोमांटिक कॉमेडी फिल्म से है जिसे डायरेक्ट किया है डेविड धवन ने। ऐसा होता है ना, ज्यादातर जब हम रोम कॉम की बात करते हैं, कोई भी कॉमेडी फिल्म की बात करते हैं, तो डेविड धवन का नाम जहन में जरूर आता है। ऋषिकेश मुखर्जी की एक फेमस 70s की फिल्म से इंस्पायर्ड है ये फिल्म, जिसमें कादर खान, परेश रावल ने हीरो और हीरोइन के पिता का रोल निभाया है। इस मल्टी स्टारर फिल्म में रीता बहादुरी, अनिल धवन, हिमानी शिवपुरी, शगुफ्ता अली, सतीश शाह और शक्ति कपूर ने भी एक्टिंग की है और लाजवाब एक्टिंग की है। फिल्म के कुछ सीन्स जो हैं वो स्विट्जरलैंड में भी शूट किए गए हैं। अगर आप राजू की कहानी वाली इस फिल्म को पहचान चुके हैं तो जल्दी से आंसर अपना टाइप करें और इसे भेज दें fmgoldaiadelhi@gmail.com पर। तब तक मैं मन फिल्म से एक बहुत ही प्यारा गाना आप सबको सुनवा रही हूं।

0: फिलहाल टाइम है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर से आने के बाद फिल्म का नाम तो जानना है, और मैं ये जानती हूं कि आप लोग जानते हैं कि फिल्म है कौन सी। बहुत सारे सही जवाब आ गए हैं, और जैसे जैसे हम प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़ते हैं ना, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा लीनियंट हो जाती हूं और आपको बहुत सारे हिंट्स दे देती हूं, और इसीलिए जाते जाते आप सब लोग सही जवाब लिख देते हैं। वैसे एक तरीके से ठीक भी है ना, सबका पार्टिसिपेशन हो जाता है। ब्रेक के बाद मिलते हैं।
1: NCERTPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
2: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज़ मांझा कभी ना अपनाए।
3: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

बिल्कुल, गाते गुनगुनाते ही ये सफर चल रहा है और अगर आपके जवाब ना हो तो ये गाना गुनगुनाना जो है ना वो कम हो जाए। तो पहला सही जवाब जो हमारे पास पहुंचता है गाते गुनगुनाते, वो आया है आदित्य कलेले का। और इसके बाद दूसरे नंबर पर जवाब देते हैं सही नागेंद्र ठक्कर। तीसरे नंबर पर सही जवाब देने वाले हैं प्रणव शिंदे। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके बाद भी बहुत सारे सही जवाब आए हैं, जैसे मैंने ब्रेक पर जाने से पहले भी आपको बताया था। तो नवीन भाटिया साहब है मोतीनगर से, धीरज अरोड़ा गाजियाबाद से, राजेश मानकलाल शाह और परिमल झा का भी सही जवाब आता है। विरमगाम गुजरात से हमारे साथ हैं अजीत कुमार भावसार और प्रमिला भावसार हैं इनके साथ। कुशाग्र अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल का भी सही जवाब आता है। आपके बाद जो ईमेल आई है वो हमें लिख भेजिए, हर्ष आर गुप्ता।

गुप्ता ने। बिल्कुल सही सही बताया आपने। और पवन के कसेरा हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है फिल्म का नाम। और उमेश कुमार खयाला से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजते हैं। इसके बाद सही जवाब देते हैं जगदीश बजाज विकासपुरी दिल्ली से। प्रफुल मोहत प्रफुल हैं, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और इसके बाद सही जवाब देने वालों में नाम आता है गिरीश वैशाली बम का। और नवीन चौहान हैं हमारे साथ, एस रैना भी हैं आपके साथ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। सुदर्शन अनीता सिमरन मुखी ने बिल्कुल सही पहचाना है शांतिनगर सोनीपत से। और संदीप सलूजा ने भी नोएडा से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेज दिया है हमें। और अक्षय सचदेव ने भी पहचाना है, अरे वाह, अक्षय सिंगापुर से हमारे साथ हैं, ऐसा ये लिखकर बताते हैं हमें। और ये तो बड़ी खुशी की बात है। और आप हमें सुन रहे हैं, आपने करेक्शन भी किए अपने आंसर में, आपने पहले भी हीरो नंबर वन लिखकर भेजा और दोबारा से हीरो नंबर वन लिखकर भेजा है, तो आपका आंसर सही है। और बड़ी खुशी की बात है कि देश में से तो लोग सुनते ही हैं। वैसे बीच में हमारे पास बहुत सारे लिसनर्स ऐसे आते थे, कुछ जर्मनी से मैसेज आते थे, तो आज सिंगापुर से आया है, तो एक और अचीवमेंट हो गई है ये। एक और हमारे पास मैसेज आता है उमेश कुमार गौड़ का, बुलंदशहर से, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। जयंत टी नाशिकार हैं, आपने लिखा है गोविंदा और करिश्मा जी, बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है गोविंदा और करिश्मा ने इसमें। अगर आपने हीरो नंबर वन नहीं देखी है ना, तो देखिएगा जरूर, बड़ी मजेदार फिल्म है। और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया है डेविड धवन की फिल्म है, रोमांटिक कॉमेडी है, तो आप कहीं पर भी इस फिल्म में बोर नहीं होंगे। और जो मल्टी स्टारर फिल्म होती है ना, इसमें जो सभी कैरेक्टर रोल प्ले करने वाले लोग लिए जाते हैं ना, जैसे मैंने इस फिल्म में भी आपको बताया कादर खान परेश रावल हैं इसमें, अनिल धवन हिमानी शिवपुरी रीटा बहादुरी सतीशा, ये सब लोग इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं ना कि कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि फिल्म कहीं ढीली पड़ रही है या उसकी पटकथा कहीं छूट रही है। बहुत ही मजेदार ये फिल्म है। और इसके बाद डीबी राणा साहब ने नेहरू विहार से बिल्कुल सही जवाब लिखकर भेजा है। जगदीश चंद्र पांडे हैं हमारे साथ उत्तराखंड से, और आप संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से हमें जवाब भेज रहे हैं, वाह क्या बात है। और इसके बाद अंबर पटवर्धन का भी सही जवाब हमारे पास पहुंचता है। और सही जवाब देने वाले मोहम्मद सईद अब्बासी ने भी सही जवाब दिया है, लेकिन मुझे लगता है मैं आंसर जब अनाउंस कर चुकी हूं उसके बाद आप लोग जवाब दे रहे हैं। प्रकाश गोगिया भी हैं हमारे साथ, और आपने भी बिल्कुल सही सही पहचान लिया है। तो आप सभी ने फिल्म तो बिल्कुल सही पहचानी है, गाने इस फिल्म में सभी एक से बढ़कर एक हैं। एक गाना चुनकर लाई हूं आपको, जरूर सुनवा रही हूं वो यहां पर, हीरो नंबर वन से ये गाना आप सबके लिए।

जाने से पहले आपको छोड़े जा रही हूँ सड़क फिल्म के एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, जो है कुमार सानू की आवाज में। आप सब हर बार गाते गुनगुनाते में इतना बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। इस गाने के बाद समय होगा समाचार का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए विधेयक लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने कहा कि सरकार ने कल विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित हर मुद्दे पर विस्तृत चर्चा का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा कि गृहमंत्री अमित शाह भी विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने

0: आया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह बात कही।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा का झारखंड बंद आज रांची सहित कई इलाकों में प्रभावी रहा। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 388 अंक गिरकर 78,154 पर बंद हुआ। निफ्टी 112 अंक की गिरावट के से 24,472 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: Good evening. This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. The bill aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. The legislation also proposes to establish a National Tribunals Commission. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Earlier in the day, the upper house witnessed continuous uproar over various issues, including alleged police action during students' protests over the NEET matter. Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. The Lok Sabha has also passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026. The bill aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act of 1962. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju accused the Congress and opposition parties of running away from a discussion on the students' protest, saying that the government is ready for a detailed discussion on the issue. Speaking to reporters at Parliament premises, Mr. Rijiju said Home Minister Amit Shah was also ready to respond to the issues raised by the opposition, but they are not allowing the House to function. Meanwhile, Congress MP Pawan Khera alleged that the Home Minister was avoiding making a statement on the matter. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for New Delhi. The spokesperson said this was also reiterated at the recently held 36th meeting of the Working Mechanism for Consultation and Coordination on India-China Border Affairs.
1: India-China border affairs, which was held on 6th and

0: you already aware of the statement that we put out. At this meeting, the two sides engaged in frank discussions and reviewed the situation along the line of actual control. The Indian side again underlined that maintaining peace and tranquility in the border areas is essential for the overall development of bilateral relations. It was agreed to continue to use existing mechanisms, diplomatic and military channels, including the WMCC, local commander level meetings, and other agreed mechanisms to resolve outstanding issues and avoid misunderstanding and miscalculation along the line of actual control.
1: The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity.
2: Ghar Ghar Tiranga, Har Ghar Tiranga.
1: Sharing a video on a social media platform, Prime Minister Modi urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. He further urged all to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. Global ratings agency Fitch Ratings has affirmed India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook, citing robust growth prospects, improving macroeconomic stability and strong external finances. Meanwhile, the Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. And in Canadian Open tennis, 19 seed Luciano Daddari of Italy will face 28 seed Brandon Nakashima of the US in the men's singles quarterfinals tonight. In the other quarterfinals, Spain's 20th seed Rafael Jordar will take on 18 seed Arthur Fields of France later tonight. And that is the end of this news bulletin.
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आप सभी का स्वागत। मैं हूं विशाल शर्मा। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल की गई है। स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने द सेमिकॉन कंसोर्टियम की शुरुआत की है। ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप निवेशकों और वैश्विक कंपनियों को एक मंच पर लाने का प्रयास है। ये पहल ऐसे समय में हुई है जब सरकार ने हाल ही में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जुलाई को 1,27,500 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए इस मिशन को मंजूरी दी। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सेमीकॉन 2.0 भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में क्या बदलाव ला सकता है, मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर इसका क्या असर होगा और सेमीकंडक्टर का बढ़ता क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था और रणनीतिक क्षमता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने वर्ष 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की थी। अब पहले चरण से मिली गति को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले चरण यानी सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। आइए अब समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की अब तक की यात्रा कैसी रही है और सेमीकॉन 2.0 इस यात्रा को किस तरह आगे बढ़ाएगा।
4: सेमीकॉन 2.0 के तहत पूरे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए 6 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा रहा है। पहला क्षेत्र है डिजाइन। देश में 100 से अधिक स्टार्टअप चिप डिजाइन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन स्टार्टअप के जरिए रणनीतिक और व्यावसायिक उपयोग वाले उत्पादों के लिए जरूरी डिजाइन और तकनीक विकसित की जा रही है। दूसरा क्षेत्र है मशीन और सामग्री। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी मशीनों, सामग्री, रसायनों और गैसों के निर्माण तथा इनके क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट करने वाली कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए जरूरी आधार तैयार होगा और देश में प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। तीसरा क्षेत्र है और अधिक फैब स्थापित करना। फैब यानी फैब्रिकेशन प्लांट वह विशेष संयंत्र है जहां सिलिकॉन वेफर पर बेहद छोटे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तैयार किए जाते हैं और उनसे सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाती है। भारत में पहली फैब के 2028 में शुरू होने की उम्मीद है। चौथा क्षेत्र है ATMP और

0: और OS-80 उद्योग को और मजबूत करना। भारत में ATMP यानी सेमीकंडक्टर पैकेजिंग और टेस्टिंग से जुड़े संयंत्रों में हो रहे काम के बाद दुनिया भारत को ऐसे संयंत्रों के लिए एक वैकल्पिक स्थान के रूप में देख रही है। सेमिकॉन 2.0 के तहत इस क्षेत्र को और बढ़ावा दिया जाएगा और उन्नत ATMP तकनीकों को भारत लाने पर जोर रहेगा। पांचवा क्षेत्र है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। छठा क्षेत्र है टैलेंट डेवलपमेंट। सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए कुशल लोगों की जरूरत को देखते हुए देश में 315 विश्वविद्यालयों में छात्रों को आधुनिक EDA टूल्स की मदद से चिप डिजाइन की ट्रेनिंग दी जा रही है। अब तक करीब 68,000 छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। श्रोताओं, अगर सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण की बात करें तो अब तक 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें कुल 1,64,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश शामिल है। इन 12 स्वीकृत प्रस्तावों में से 3 कंपनियों ने व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है, जबकि एक और कंपनी के जल्दी ही उत्पादन शुरू करने की उम्मीद है। डिजाइन के क्षेत्र में भी पहले चरण के तहत स्टार्टअप और MSME की 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है।
1: श्रोताओं, सेमिकॉन 1.0 के तहत भारत ने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक मजबूत आधार तैयार किया। अब सेमिकॉन 2.0 के साथ इस यात्रा को अगले चरण में ले जाने की तैयारी है। पहले चरण से दूसरे चरण तक भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में क्या बदलाव आया है, इसे समझने के लिए आकाशवाणी समाचार ने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक चांडक से विशेष बातचीत की। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: फेज 1 में हमारा क्रेडिबिलिटी बन गया है और फेज 2 में आउटकम जो होगा हमारा उससे हम कैपेबिलिटी बिल्डअप करेंगे और इस पॉलिसी में पूरा एंड टू एंड इकोसिस्टम बनेगा, जो फाउंड्री मैन्युफैक्चरिंग है, पैकेजिंग है जिसे ATMP कहा जाता है, डिजाइन है, R&D भी किया जाएगा इसमें और साथ में मशीनरी और मटेरियल्स कहेंगे हम, उसमें करीबन 200 से 250 प्रकार के केमिकल्स, गैसेस और मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है और इक्विपमेंट की, उसको भी फोकस किया जाएगा। उसके लिए भी 30% का गवर्नमेंट ने सब्सिडी तय किया है जिससे वो काम भी इंडिया में बना जाएगा। हमें अब सिर्फ चिप बनाने की बात नहीं लेकिन चिप बनाने के लिए और इसके डिजाइन के लिए जो भी कौशल विकास और सप्लाई चेन है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इस इनिशिएटिव से देश में अधिक मूल्य संवर्धन होगा, इकोनॉमिक वैल्यू ऐड होगी, देश में आयात की निर्भरता भी बहुत कम होगी। मैं अगर नंबर की बात करूं यहां पर हमारा 2030 में करीबन $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर कंजम्पशन होगा।
1: श्रोताओं, सेमिकॉन 2.0 में पूरे इकोसिस्टम के विकास के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग और वैश्विक निवेश पर भी विशेष जोर दिया गया है। भारत को सेमीकंडक्टर निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में इन प्रयासों का क्या महत्व है, इस पर अशोक चांडक ने विस्तार से बात की।
2: अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है तो अंतरराष्ट्रीय सहयोग बहुत जरूरी है, इसके बिना ये होगा नहीं। हमारे पास प्रोसेस टेक्नोलॉजी नहीं है, नथिंग रॉन्ग, नहीं है तो नहीं है, उसको ला सकते हैं। तो इसलिए भारत केवल जो आर्थिक प्रोत्साहन है जिसे हम बोलेंगे कि इकोनॉमिक बेनिफिट ये दे रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में भारत की जो स्टेबल पॉलिसीज और कुशल मानव संसाधन टैलेंट और जो हमारा घरेलू बाजार है, डोमेस्टिक मार्केट, ये काफी तेजी से विकसित हो रहा है और इसीलिए ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पूरा टोटल है इसे हम बना रहे हैं और ये जब बनेगा तभी भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियां इंटरेस्ट बताएंगी और वो निवेश करेंगी। हमारे पहले चरण में जो सेमिकॉन फेज 1 में कुछ इंटरनेशनल कंपनियों ने ऑलरेडी कोलैबोरेशन किया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है और मैं और एक कहना चाहूंगा, एक हम इवेंट करते हैं सेमिकॉन इंडिया जो कि अभी सितंबर में आ रहा है, इसमें हम काफी प्रमोशन करते हैं और विदेशी कंपनियां आती है। इस साल भी सेमिकॉन इंडिया में करीबन 300 विदेशी कंपनियां आएंगी।
1: श्रोताओं, सेमीकंडक्टर को अक्सर केवल मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन आज सेमीकंडक्टर आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर महत्वपूर्ण क्षेत्र का आधार बन चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, रक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर सेमीकंडक्टर उद्योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है और हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं।
0: अनुमान है कि 2035 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार $1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का हो सकता है। वहीं भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 2035 तक करीब $200 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। लेकिन भारत के सामने एक बड़ी चुनौती भी है। देश में सेमीकंडक्टर की मौजूदा खपत का करीब 90 से 95% हिस्सा आयात से पूरा होता है। इसका मतलब है कि घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है लेकिन उसे पूरा करने की हमारी अपनी क्षमता अभी सीमित है। भारत की

0: आयात निर्भरता का एक सीधा आर्थिक असर विदेशी मुद्रा पर भी पड़ता है। वित्त वर्ष 2017 से वित्त वर्ष 2025 के बीच भारत ने महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात पर करीब 150 बिलियन अमरीकी डॉलर खर्च किए। इसी अवधि में सेमीकंडक्टर उत्पादों के आयात में सालाना औसतन 23% की दर से बढ़ोतरी हुई। अगर ये गति बनी रहती है तो 2035 तक सालाना आयात लागत 240 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच सकती है। इसलिए भारत के लिए घरेलू सेमीकंडक्टर क्षमता विकसित करना केवल आयात कम करने का सवाल नहीं है, ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने, विदेशी मुद्रा बचाने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को सप्लाई में होने वाले व्यवधान से बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। आज की आधुनिक रक्षा प्रणालियां भी सेमीकंडक्टर पर काफी हद तक निर्भर है। मिसाइल, ड्रोन, रडार, लड़ाकू विमान, नौसैनिक प्रणालियां और सुरक्षित संचार व्यवस्था, इन सभी में सेमीकंडक्टर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, भारत ने अब सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपनी आगे की दिशा तय करना शुरू कर दिया है। 2035 तक भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन को 120 से 150 बिलियन अमरीकी डॉलर का बनाना है और इसी अवधि में 35 से 50% तक चिप सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस तरह देखें तो सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की कोशिश केवल अपनी जरूरत पूरी करने की नहीं है, लक्ष्य एक ऐसा मजबूत इकोसिस्टम तैयार करना है जो घरेलू जरूरतों को पूरा करे, वैश्विक सप्लाई चेन में भारत की भूमिका बढ़ाए और सेमीकंडक्टर को आर्थिक विकास, तकनीकी क्षमता और रणनीतिक आत्मनिर्भरता का आधार बनाए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

मानव अंतरिक्ष प्रौद्योगिकीषु परस्पर सहयोगस्य विस्तारः स्वीकृतः। ऋतुविज्ञान विभागेन आगामिषु द्वित्रिदिवसेषु ओडिशा राज्ये वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतीव तीव्र वृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता। विभागेन तावत् आगामि दिनद्वयोः अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे अरुणाचल प्रदेशे असमे मेघालये नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा राजस्थानेषु च वज्रपात मेघगर्जनाभ्यां सह अतितीव्रतर वृष्टिः भविष्यतीत्यपि अनुमानितम्। कनाडा ओपन टेनिस प्रतियोगितायां पोलैंड देशस्य पूर्व विश्व प्रथम वरीया इगा स्वीटेक रशिया देशस्य डायना श्नाइडर इत्येतां 6-2, 6-1 इति अंकैः केवलं चतुष्षष्टि निमेषेषु पराजित्य उपान्त्यचक्रं प्राविशत् इति वार्ताः।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I am Gaurav Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओ, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड पुनीत, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स, बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसीज फॉल नियरली 0.5%, सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 400 पॉइंट्स, निफ्टी सेटल्स बिलो 24,500। Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB with a stable outlook, says country's economy remains strong despite headwinds, and stocks to be replaced in NSE indices, changes to take effect on 30th of September this year.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट, सेंसेक्स 400 अंकों के आसपास नीचे आया, निफ्टी 24,400 से नीचे पहुंचा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी, कहा यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कई सूचकांकों में स्टॉक बदलने की घोषणा की, बदलाव इस वर्ष 30 सितंबर से लागू होंगे।
0: Before we move into the program, we'd like to share with you listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे।
0: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. The benchmark indices opened on a negative note and remained range-bound throughout the session, following a rise in oil prices amid lingering geopolitical uncertainties.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.7

0: प्रतिशत से ज्यादा, एक्सिस बैंक और इंडिगो में 1.5% और भारतीय एयरटेल में 1.4% से अधिक की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2%, इन्फोसिस में लगभग 0.5% और टाइटन में 0.3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।
1: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, hospitals dipped 1.8%, realty shed 1% and FMCG lost 0.9%. In contrast, focused IT climbed more than 0.4%. IT rose almost 0.4% and healthcare added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,033 advanced and 198 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मार्केट में हमने गिरावट देखी, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही कि गिरावट देखने को मिली, और खासतौर पर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं, लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह थोड़ी सी तेजी भी देखी गई थी।
2: निखिल, आज मजे की बात यह है कि हम, हालांकि आपने कहा कि बाजारों में गिरावट देखी और इनफैक्ट मार्केट ब्रेड्स भी कुछ नेगेटिव है, काफी कंपनीज में गिरावट थी, लेकिन अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप है, जो ज्यादातर जो गिरावट बाजार में देखी गई वो लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी हेडलाइन जो नंबर्स होते, जब बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो शेयरों में, वहां हमने गिरावट देखी। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, आपने बताया कि इंडेक्स में भी वहां पर गिरावट नहीं थी, स्मॉल कैप में तो थोड़ा हल्की बढ़त थी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो FIIs हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं, उनकी बहुत खरीदारी अभी बाजार में नहीं है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है। FIIs का रुख बड़ा मिला जुला है, वो किसी दिन, अब आप देखेंगे कि पहले तो वो लगातार सेलिंग कर रहे थे कई महीनों तक, अब हम देख रहे हैं कि जो अगस्त का महीना गया है कि उसमें कुछ मिक्स्ड ट्रेंड है। जुलाई और अगस्त में कभी एक दिन वो खरीदारी करते हैं, एक दिन वो बिकवाली करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स जो शेयर्स हैं, जो इंडेक्स में वेटेज है इनका ज्यादा, वहां पर हमने आज सेलिंग देखी थी, इसलिए वहां पर गिरावट थी। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज भी काफी स्टेबिलिटी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा तेजी थी, पर स्टेबल थे। तो बाजार को इस वक्त हम काफी, मतलब आप कह सकते हैं मिला जुला रुख है बाजार के अंदर। सीधा हम ये नहीं कह सकते बाजार में कमजोरी है या बाजार में तेजी है, इसलिए ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वी नीड टू लुक एट इट डिफरेंटली।
0: तो इसमें मुनाफा वसूली भी एक कारण माना जा सकता है इसके लिए?
2: देखिए, मुनाफा वसूली बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त, बल्कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे IT क्षेत्र था, वहां पर थोड़ी सी हमने कमजोरी देखी थी, वहां रिबाउंड हुआ है, तो कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मैं ये कहूंगा कि चर्निंग हो रही है, जो ओवर वैल्यूड सेक्टर्स थे वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और अंडर वैल्यूड सेक्टर्स में यानी IT जैसे क्षेत्र में और बैंकिंग में वहां पर थोड़ी बाइंग हो रही है।
1: Puneet, so you would agree that, you know, and I remember this conversation earlier also with you before we moved into the studio, that means there's a broad-based movements are not, there are no broad-based trends, but stock-specific.
2: Absolutely.
1: So without mentioning stocks, just give us an idea about this, please.
2: So you're right. I mean, so what we are observing is that while there is no broad-based trend, no, we can't say that the market is moving up or moving down either way. There are pockets of strength within the market. So you will find that there are pockets of strength in a particular sector. For example, we have seen IT sector rebounding lately. You know, last couple of weeks, we have seen a big 15-20% move in IT sector stocks because they're really beaten down. So some money may have moved from other sectors which there were profits to be taken. So those that money may have moved to IT sector stocks. Similarly, within the mid-cap and small-cap space, we find stocks which have done very well actually. And a lot of retail investors, mutual funds, they are attracted to mid-cap and small-cap companies because the growth that we have seen in the numbers that we saw for the last quarter, that has been very good for small and mid-cap companies. So a lot of money has actually rotated out of large caps into mid caps and small caps.
1: Right. So when we look at, you know, earlier when we spoke about IT shares and AI shares, I mean, let's go back 6 to 8 months, we always saw that, you know, IT shares were being beaten down and AI shares were really coming up and all. But we also know that while the movement has been in different directions, IT and AI are very closely interlinked because success of AI and success of IT are strongly interdependent. Your views on this?
2: So, Gaurav, what happened was very interesting. In fact, in India, and see, India largely has these IT services companies. We do not have pure play AI companies

0: The stocks are given weights according to the free float market capitalization. So as the prices change during the year, you will find that the free float market cap of the stock also changes. So there was a time when, let's say, HDFC Bank had no highest weightage in the index. But if the price fell, the market cap also fell, and therefore the weight in the index goes down.
1: But it could still be in the index.
0: It would still be in the index. Okay. So if you look at Nifty 50, the NSE has said that there was Wipro in the index. Now, Wipro will be taken out on 30th of September, and we will see BSE, which is a listed share, that will be added to the index. Now, what is the significance of this? The significance is that there are, in fact, lakhs of crores of rupees which are riding on the Nifty index itself. A lot of investors have put money in the Nifty, either Nifty ETF, Nifty 50 ETF, or Nifty mutual funds. Now, that money will have to be realigned or reallocated in line with the new weightages, and in case of replacement, for example, the mutual funds were holding Wipro in their portfolio as part of Nifty. Now they will have to sell Wipro and they will have to buy the BSE share.
1: Right.
0: So it does make a huge difference to where the money flows whenever the indices are rebalanced, or their stocks are included or they're excluded. So it is a very big thing. Our estimate is that roughly 5 to 6 lakh crore rupees is invested in Nifty 50 itself through the mutual fund route and through the ETF route. Now that money gets churned as a result of this rebalance. So it's a very significant exercise. But it happens twice a year, so every 6 months it is done. And largely we don't see very big changes in the index, in Nifty 50. It's rare that we see a stock being excluded and another being included. Which
1: the
0: is
1: weightage
0: happening.
1: Is changed.
0: The weightage is changed, okay. Mostly. But this time, of course, we're going to see... So whichever stock is excluded sees a lot of selling pressure. And whichever stock is included will see a lot of buying push in that stock.
1: Right. So quickly, your comment on the MSCI rejig is due tomorrow.
0: That's right. So MSCI again is a... See, so what we are doing with the domestic indices in terms of mutual funds, the Morgan Stanley, so this is called Morgan Stanley Composite Index. So worldwide, Morgan Stanley is considered to be the most credible, most reliable source for allocating or creating these indices. And a lot of international funds, they allocate their funds in line with the MSCI index. For example, if MSCI increases India weightage in the index, we will see money coming into India from FIIs. FIIs will be literally forced to buy into India because they benchmark their mutual funds to MSCI. So it's the same thing. This is part of the passive investing trend that we see worldwide.
1: Right.
2: वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है. एजेंसी ने कहा कि यह भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है. फिच ने भारत के लिए स्थिर दृष्टिकोण भी बनाए रखा है और कहा है कि पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न ऊर्जा संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है. फिच रेटिंग्स ने कहा कि देश में व्यापक आर्थिक स्थिरता संतुलित है और नीतिगत विश्वसनीयता में सुधार जारी है, जो आगे भी प्रगति का आधार बनेगा. एजेंसी ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी. फिच ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति लचीली रही है, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कुछ जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि भारत ऊर्जा का एक बड़ा आयातक है. फिच ने यह भी कहा कि ऊर्जा संकट के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि भारत में महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमानित 2-6% की सीमा के भीतर रहेगी. पुनीत, मेरे दो प्रश्न हैं इस खबर को लेकर के. पहला तो ये कि एक ऐसा स्टेटमेंट आना कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर बनी हुई है, इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो पॉलिसीज हैं उन पर क्या इम्पैक्ट है. दूसरा सवाल ये कि फिच ने जब ये बोला है कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी, कहीं ना कहीं ये मार्केट को स्टेबिलिटी देने का प्रयास करने की बात जैसा है. और दूसरा यह भी कि इकोनॉमिक वैल्यू को अगर हम समझें तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे.
0: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिच की जो सॉवरेन रेटिंग होती है, जो फिच ने जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग BBB रखी है, ये एक और स्टेबल है, क्योंकि पहले भी BBB थी. हम ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अब BBB से अगला जो कदम है वो A रेटिंग जो होती है, अगर वो आती है तो इसका देखिए असर पड़ता है भारत की, किस रेट पर हम पैसा भारत रेज कर सकता है. ये क्रेडिट रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देश के लिए, क्योंकि भारत तो ऐसा कोई फॉरेन बोरोइंग नहीं करता है, लेकिन जो हमारे देश की कंपनियां हैं इस रेटिंग के बेसिस पे उनको क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उससे आगे वो पैसा रेज कर सकते हैं। तो काफी बड़ा असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर।

0: भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरा यह है कि जो भारत में अभी कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा डालते हैं, तो इस रेटिंग से उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर फिच ये कहता है कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है या ग्रोथ है वो स्टेबल है और अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ता है फॉरन इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो ये काफी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए क्रेडिट रेटिंग का बने रहना। तो मुझे लगता है अभी स्टेबिलिटी की तरफ संकेत कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इस पे थोड़ी से बेहतर करेंगे। एंड इफ वी गो इनटू द इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल बी इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इससे अगर बेहतर होता है भारत को फायदा हो सकता है।
1: जून में देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,973 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो जुलाई में 14.8% घटकर 24,697 करोड़ रुपए रह गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी में 31,961 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो जून के मुकाबले अधिक है। इक्विटी फंड श्रेणी के लिए जुलाई में स्मॉल कैप फंड्स में सबसे अधिक 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स ने कारोबार किया। हालांकि इस दौरान लार्ज कैप और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड्स से निकासी देखी गई। पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश घटकर 1,559 करोड़ रुपए रह गया। वहीं डेट फंड्स में ट्रेंड उल्टा हो गया, पिछले महीने इनमें 1,87,511 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। डेट ओरिएंटेड स्कीमों में लिक्विडिटी फंड्स में सबसे अधिक 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पुनीत, अभी जुलाई के महीने में जितना हमने इन्वेस्टमेंट देखा, जून के महीने में जितना देखा, जुलाई में घट करके वो काफी कम रह गए, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं?
0: देखिए, ये आप अगर देखें तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि लार्ज कैप्स का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कम हुआ है पिछले दिनों, और इन्वेस्टर्स जो है, रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर वो अब मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये डेटा उसको पुष्ट करता है, उसको दिखाता है कि हमारा आंकलन जो है वो सही है। और देखिए, जो एसआईपीज है, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें काफी उसमें से पैसा लार्ज कैप में भी जाता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जरिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक दर्शाता है कि जो रिस्क एपिटाइट है इन्वेस्टर्स की, वो थोड़ी बढ़ रही है। और कुछ हद तक जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, उसकी वजह से ये डेटा अफेक्ट हो रहा है। आने वाले समय मेरी उम्मीद है कि जो 2 या 3 महीने कंसोलिडेशन का जो समय है मार्केट्स के लिए, ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पर प्रदर्शन बेहतर होगा। और मार्केट्स, मुझे लगता है कि ये बता रहा है हमें कि मीडियम टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है।
1: और एसआईपी के बढ़ने का क्या कारण?
0: देखिए, एसआईपी एक फॉर्चुनेटली एक बहुत ही स्टेबल एक तरीका है मार्केट में पैसा डालने का, जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो रोजमर्रा में मार्केट को नहीं देखते हैं, तो ये एसआईपी के वजह से हमारे भारतीय बाजारों में काफी स्थिरता आपने देखेंगे, स्टेबिलिटी है। और जो एफआईआई का इतनी सेलिंग हमने एब्जॉर्ब करी है, वो भी कुछ हद तक उसका श्रेय जो है वो एसआईपी को जाता है। तो ये एक स्टेबल ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी आने वाला है, और थोड़ा बेहतर ही होगा आने वाले समय में।
2: And a quick comment on the increase in debt funds.
0: So Gauram, what happens is that whenever money, so debt fund is purely parking of money by corporates.
2: Reflection of the volatility.
0: And if people are avoiding large caps in the time being, then they will park money for short term in debt funds. But debt fund flows are very, very volatile. So this month you may have seen 1 lakh crore inflow. Next month you might see 1 lakh crore outflow. Okay. This is a typically short term money. This is not really long term invested in the Indian debt markets.
2: So wait and watch is what a lot of retail investors and investors
0: Absolutely.
2: Are doing.
0: And retail investors are tilting towards higher risk, which is basically mid caps and small caps.
2: Right. Moving on to our next story, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has informed that the progress of area coverage under Kharif crops has recorded more than 967 lakh hectare area as of the 7th of this month. Meanwhile, the government has said that it is continuously monitoring the evolving monsoon situation and the possible impact of El Nino conditions on agriculture in close coordination with the India Met Department. The Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Mr. Ramnath Thakur, said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. He informed that district agriculture contingency plans have been updated for 15 states covering 342 districts which are likely to receive below normal rainfall. Quickly again, Puneet, so fears of actually the monsoon completely skewing up production, that somewhat receded?
0: Yeah, that is really receded a lot, and I think it's a big relief for the economy.
2: Absolutely. The Reserve Bank of India governor has called on Indian banks to adopt artificial intelligence with a clear focus on innovation, accountability and customer trust. Addressing the 2026 edition of Back on Mumbai, the RBI governor said AI could transform Indian banking by improving credit delivery, customer service, financial inclusion, operational efficiency and fraud detection.
1: एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। वहीं प्रमुख यूरोपीय इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स में 0.2% की बढ़त हुई, जबकि लंदन के फुटसे 100 में मामूली तेजी आज देखी गई थी। पुनीत, अभी कुछ समय पहले हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड मार्केट की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया का मार्केट बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, लेकिन अभी जो मौजूदा आर्थिक अस्थिरता की हम बात करें, स्थिरता तो नहीं कहना चाहिए, उसका असर लग रहा है कि आपको एशियन मार्केट्स में ज्यादा पड़ रहा है?
0: देखिए, एशियन मार्केट्स में काफी वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी और बहुत हमने तेजियां देखी, फिर बहुत बड़ी करेक्शन मार्केट्स में देखी। मुझे लगता है अब कुछ कंसोलिडेशन, अब कुछ जो एक इनिशियल एक अफरा तफरी थी वो कुछ कम होगी और बाजार अब यहां पर कंसोलिडेशन होकर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर शायद चलेंगे, वो अच्छा भी है मतदानों के लिए।
1: और चिप सेक्टर से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं?
0: देखिए, चिप सेक्टर अच्छा सेक्टर है, लेकिन वहां वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी, तो हमने देखा है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ हद तक वो पैसा रोटेट होकर इंडियन मार्केट की तरफ आया है।
2: सो व्हेन वी आर लुकिंग एंड वी विल जस्ट रीड द यूएस मार्केट्स, बट आफ्टर दैट योर कमेंट ऑन, so now are world markets moving more on domestic issues or domestic this thing or geopolitical still?
0: So there is no longer this global trend in the markets now. We see the US markets move in a different direction. So right now they're kind of disconnected with each other. It happens in certain times, right. But right now they're not moving following each other.
2: Right. So let's see where the US markets are moving. Most US equities closed lower yesterday as uncertainty over a possible peace deal between the United States and Iran pushed oil prices higher. Among major indices, the Nasdaq Composite Index declined 0.3%, the Dow Jones Industrial Average dipped 0.1%, while the S&P 500 fell marginally. Moving to crude oil prices now, and Puneet will of course take your comment on this also. Global crude oil prices paired early gains today. Brent crude was trading nearly unchanged at $87.75 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.21 per barrel when reports last came in. So countries realigning their oil policies and all, even for the long term in the future, even if the Middle East thing gets sorted out. But they're saying, we really can't be so dependent again. You think that's going to happen?
0: Absolutely. I think the oil trade is being rewritten all over. And I think next 10 years, we will see the oil markets being very different from what they are today. So it's a good thing. It's probably a geopolitical commodity right now. But going forward, I think this will be de-risked to a large extent. And the dominance of the Middle East in the oil trade, I think that will decline over the next 10 years.
1: Puneet, अगर oil sector की हम बात करते हैं तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर के लगातार एक चिंता का माहौल देखा गया है पिछले कुछ समय में। भारत के नजरिए से अगर देखें, खासतौर पर ऐसी स्थिति जो हम तेल को बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसी स्थितियां बन सकती हैं हमारे लिए?
0: देखिए निखिल, अभी जो हमें कंपनी जगत के नतीजे आए हमारे सामने, ये बात साफ है कि कॉस्ट प्रेशर्स इस तिमाही में बहुत ज्यादा थे और कंपनीज के मार्जिन्स पे भी असर पड़ा उसका। तो भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत सेंसिटिव है और एनर्जी प्राइसेस को, क्योंकि लार्जली बिकॉज हम 80-90% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी, तो उसका असर भारतीय कंपनियों पर, हमारी इकोनॉमी पर बहुत गहरा पड़ता है। अभी तक सरकार ने उसको अच्छा मैनेज किया है, पर मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म डीरिस्किंग पॉलिसी जरूर भारत को चाहिए होगी। हम इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर या अनसर्टिनिटी के ऊपर। तो मुझे मेरा अपना अनुमान यह है कि वो पॉलिसीज भी आएंगी, भारत अपने भी एनर्जी व्यापार को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है हमारे लिए।
1: इस पे यूएस मार्केट का कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्या इंपैक्ट डाल रहा है?
0: देखिए, एनर्जी प्राइसेस जो है उससे यूएस मार्केट्स पर तो देखिए फर्क पड़ ही रहा है, बिकॉज वहां पर जो पॉलिसी है उसको सीधा सीधा वो असर डालती है। वहां पर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इंपैक्ट पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ने काफी हद तक इसको दरकिनार करके और ज्यादातर एआई ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रेड पर ध्यान दिया है और वहां पर उसका असर ज्यादा है
1: जी। अब गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। सोना 1.4% की बढ़त के साथ 152,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.7% की तेजी के साथ 235,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कॉमेंट्स होंगे, पिछले कुछ दिनों में एक ऊपर चढ़ने का सिलसिला हम देख रहे हैं।
0: देखिए जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स उसका सीधा असर अगर आप देखें तो ऑयल डॉलर और सोना चांदी जो इसका जो वो बना हुआ है
1: कॉम्बिनेशन
0: बना हुआ है। और जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना हुई तो वहां पर गोल्ड के दाम पड़े
1: जी। पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: एब्सोल्युटली थैंक यू पुनीत, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। एंड नाउ लुक एट द हेडलाइंस वंस अगेन। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल बाय नियरली 0.5%। सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 400 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,500। Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook, says country's economy remains strong despite headwinds, and stocks to be replaced in NSE indices, changes to take effect on 30th of September this year. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी और लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। यह विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
5: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का भी आह्वान किया। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य और अभिन्न अंग है तथा इसे निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ये बात कही।
6: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
4: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां आयोजित करने का आह्वान किया है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से भारत के विनिर्माण क्षेत्र को मिलती नई मजबूती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक ए.के. भट्टाचार्य। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
1: संसद ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया। इस विधेयक में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में संशोधन कर हमारे डिजिटल भुगतान प्रणाली के मजबूतीकरण, व्यापार की सुगमता बढ़ाने और निवेश एवं विनिर्माण को गति देने वाले अहम प्रावधान शामिल हैं। इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक विश्लेषक मिस्टर ए.के. भट्टाचार्य। मिस्टर भट्टाचार्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, धन्यवाद।
1: मिस्टर भट्टाचार्य, ये जो एक लैंडमार्क बिल आया है कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026, इसके महत्व को आप कैसे देखते हैं और आपके अनुसार इसमें सबसे प्रमुख की टेकअवेज जैसे हम कहते हैं क्या है?
2: इसमें जो विदेशी जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं जो वो विनिवेश करते हैं इस देश में, पर्टिकुलरली जो सरकारी जो सिक्योरिटीज जो हैं उसमें जो निवेश करने से उनको टैक्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो बर्डन था, उसको उठा लिया गया है। आपको ये मालूम होगा कि करीबन जून 2026 में जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार ने एक साथ मिलकर हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को और भी सुदृढ़ करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, क्योंकि वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसमें हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज जो हैं वो बढ़ने की आशंका लोग जता रहे थे। उस समय सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर तय किया था कि किस तरह से हमारे देश की जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हमारे देश में इन्वेस्ट कर सकें और इन्वेस्टमेंट की अट्रैक्टिवनेस जो है उसको बढ़ावा दें। मैं समझता हूँ कि पहला जो प्रधान जो इसका जो टेकअवे है जिसे आपने कहा वो है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पहले क्या करते थे, अगर वो सरकारी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे उनका जो इंटरेस्ट जो आय होता था उसके ऊपर इनकम टैक्स लगता था, और अगर मान लीजिए वही फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को और कहीं बेचे या कैपिटल गेन्स को बुक करें तो उसमें भी उनको कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता था, और इनकम टैक्स इंटरेस्ट का जो रेट था वो 20% था और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 30% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स था 12.5%। इस विधेयक से सरकार ने ये ऐलान तय कर लिया है कि पहली अप्रैल 2026 से अब ये फाइनेंशियल फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को ऐसी ना इंटरेस्ट के इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स माफ हो जाएगी, और कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो लॉन्ग टर्म में 12.5% और शॉर्ट टर्म में 30% ये भी टैक्स माफ हो जाएगी। उससे सरकार का मानना यह है कि ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो सरकारी सिक्योरिटीज में थोड़ा और बहुत पैसा लगाए, और जिससे कि लगाने से हमारी जो देश की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट स्थिति है वो और भी मजबूत हो जाए।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में बताया कि ये विधेयक मौजूदा डेटा सेंटर्स के

0: विस्तार में और विदेशी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स को बढ़ावा देने में सहायक होगा। इससे बड़े स्तर पर विस्तार होगा और भारत में हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स स्थापित होंगे।
1: ऑफ प्रोविजंस प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन टू अ फॉरेन कंपनी प्रोक्योरिंग डेटा सर्विसेज फ्रॉम अ स्पेसिफाइड डेटा सेंटर एंड दिस एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड अप टू द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2047। Long-term certainty so that investments come. These are big-ticket investments. They have to come with a certainty which can be provided to them. The outcome that I'm expecting is to provide ease of doing business for companies, providing cloud services by way of procuring data center services in India. The amendment is also expected to enable much larger ecosystem, again, of Indian data centers providing data center services to a foreign company. The reform will enable AI data cities in India and is expected to bring in significant investments for AI data cities in India. There is an apprehension that this is only for foreign companies. These kind of exemptions are not going to be available for Indian companies. It's not true at all, sir. I want to explain how. This will enable, sir, current data centers to expand their footprints and services for foreign cloud service providers.
0: दूसरा एक जो पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे, बल्कि हम आपसे ही चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा विस्तार में समझाएं कि जो यूपीआई हमारा जो डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है उसको सस्टेनेबल बनाने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, जो लॉन्ग टर्म व्यू के साथ जो उसके रेवेन्यू मॉडल में कुछ बदलाव करने के लिए जो एनेबलिंग प्रोविजन आया है उसके बारे में बताएं, और जो एक स्पष्टीकरण भी आया है सरकार का जिसमें उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए अभी भी यूपीआई का इस्तेमाल मुफ्त बना रहेगा, स्मॉल मर्चेंट्स के लिए भी, तो इसके बारे में क्या प्रोविजन है और ये स्पष्टीकरण क्या है, इसके बारे में थोड़ा समय बताएं।
2: इस कानून में एक प्रोविजन का एक परिवर्तन किया गया है, वो है कि जो हमारे देश में जब 2007 में ये जो एक कानून बनी थी पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007
0: जी,
2: उसके जरिए से हमारे देश में पिछले 10 साल और 12 साल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए बहुत सारे पेमेंट का इंटरेक्शन होता है और डिजिटल पेमेंट होता है ऑलमोस्ट रियल टाइम में। जैसे हम बात कर रहे हैं वो पैसा मेरे से आपके पास चला जाएगा या मेरे से कोई मर्चेंट में चला जाएगा, और ये मोबाइल फ्रेंडली सिस्टम था यूपीआई। तो इसका जब 2020 जनवरी में सरकार ने ये तय किया कि इस डिजिटल पेमेंट की और भी उसको जनप्रिय बनाने के लिए उन्होंने जो एक मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है कि जो मर्चेंट जब पैसा लेता है तब उसको कुछ सर्विस चार्जेस देने पड़ती हैं, वो करीबन 0.5% होता है, कभी 0.3% होता है, बहुत ही कम होता है, पर तब भी एक जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता है वो सरकार ने उसका विलय कर दिया। उन्होंने कहा कि जिससे कि लोग और भी डिजिटल पेमेंट को वो अपनाएं, जिससे कि जो टेक्नोलॉजी का और भी प्रभुत व्यवहार भी हो, इसलिए किया था। पर पिछले 5 साल में स्थिति सामान्य हुई है और इसकी जनप्रियता इतनी बढ़ गई है कि यूपीआई की पेमेंट करीबन महीने में 29 लाख करोड़ की होती है
0: जी।
2: तो सरकार ने ये सोचा कि इसका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, इसका टेक्नोलॉजी का भी जो इम्पैक्ट होता है उसका भी कॉस्ट बढ़ रहा है, तो सरकार एक सब्सिडी देती है, करीबन 1500 करोड़ की सब्सिडी भी देती है। तो सरकार ने ये सोचा कि इसको हम क्यों ना कानूनी तौर से एक ऐसा एक प्रावधान लाएं जिससे कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो ये यूपीआई को चलाती है उसके पास ये पावर रहे कि जब उसको जरूरत होगी वो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट को एनफोर्स कर सकता है। पर सरकार ने ये भी ऐलान कर दिया इसके साथ साथ कि ये जो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल की जो ट्रांजैक्शन होगी उसमें कोई मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, और जो भी डिस्काउंट रेट आएगा लगेगा वो मर्चेंट और इंडिविजुअल्स के बाद उसमें भी थ्रेशोल्ड्स होंगी। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ के ऊपर ज्यादा बिजनेस है उसमें लगेगा। इससे ऐसा होगा कि टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी, साइबर फ्रॉड की चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी
0: जी।
2: और मैं समझता हूँ कि इसमें इंडिविजुअल और जो छोटे व्यापारी जैसे खोमचे वाला है या सब्जी वाला है उसको पेमेंट करने में, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल पेमेंट होती है, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तो ये MDR का जो इंट्रोडक्शन, ये अगर आप देखें कि लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण से ये काफी हमारी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम को और भी सुदृढ़ करेगा, ये भी देखेगा कि इंडिविजुअल को कोई असुविधा ना हो। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कानूनी परिवर्तन है। इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक कमिटी है, वो कमिटी उसको देखेगी कब किस तरह से मर्चेंट डिस्काउंट रेट की लागू होगी, पर ये रेट कभी भी इंडिविजुअल से इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के ऊपर लागू नहीं होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने संसद में बोलते हुए स्पष्ट किया कि इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा और छोटे मर्चेंट्स पर भी कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा।
1: विल कंस्यूमर्स पे एनी यूपीआई चार्ज? नो, यूपीआई हैज रिमेन्ड फ्री फॉर कंस्यूमर्स सिंस इट्स लॉन्च एंड एवरी इंडियन विल कंटिन्यू टू मेक इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट विदाउट पेइंग अ ट्रांजैक्शन चार्ज। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, टेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई इंक्लूसिव ग्रोथ, उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है। एनी फ्यूचर एमडीआर विल अप्लाई ओनली टू अ लिमिटेड कैटेगरी ऑफ मर्चेंट ट्रांजैक्शंस अबाउ अ सर्टेन प्रिस्क्राइब्ड हाई थ्रेशोल्ड।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, एक और एस्पेक्ट जो मेक इन इंडिया को एनकरेज करने के लिए कुछ सेक्टर्स को खास प्रावधान उनके लिए लाए गए हैं, अगर हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की बात करें जिसमें हमने पिछले दशक में बहुत प्रगति देखी है, मोबाइल फोन्स एक जैसे पोस्टर बॉय है इस प्रगति के, उसके बारे में आप हमें बता सकते हैं कि किस तरह के प्रावधान है इस विधेयक में?
2: जैसे विदेशी जो कंपनियां हैं जब वो कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या कोई कैपिटल गुड्स जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में काम में आएगा, जैसे कि मान लीजिए जो मोबाइल फोन की कंपनियां जो यहाँ पे मोबाइल फोन बनाती हैं और आज हम बहुत सारे मोबाइल फोन एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो मोबाइल फोन बनाने में जो टूल इक्विपमेंट टूलिंग्स की यंत्र जो आते हैं उसकी जरूरत होती है, उसके सप्लाई में जो सप्लाई होती है उनका जो टैक्स जो होता है वो टैक्स, उनको टैक्स हॉलीडे दिया गया है जिससे कि करीबन 15 साल का मतलब अप्रैल 1, 2026 से मार्च 2041 तक उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इससे मैं समझता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रॉनिक और भी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बाहर से कैपिटल गुड्स और टूल्स ला सकते हैं और जो कंपनीज उनको सप्लाई करेंगी उनके ऊपर कोई टैक्स का कोई एनफोर्समेंट नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा एक बढ़ावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर भी है।
0: एक और जो सेक्टर जिसका मेंशन है ग्लोबल रफ डायमंड ट्रेड को भारत में आकर्षित करने का, ये क्या पहलू है और इस पर क्या प्रमुख प्रावधान इस विधेयक में लाया गया है?
2: देखिए, ये बताया गया है नए कानून में कि जो रफ डायमंड्स जब कोई कंपनी बेचती है अगर सेल्स जो होता है वो अगर नोटिफाइड स्पेशल जोन में हो
0: जी,
2: वो अगर जब विदेशी कंपनी जब बेचती है उसके ऊपर कोई टैक्स अब नहीं लगेगा। पहले उनके ऊपर टैक्स नॉर्मल रेट में लगता था, अब वो टैक्स नहीं आएगा। उससे ये होगा, जैसे आप जानते हैं कि हमारी जो जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट जो है वो रफ डायमंड इंपोर्ट करती है, आयात करती है, उसको फिर प्रोसेस करके वैल्यू एड करके उनकी फिर निर्यात करते हैं
0: जी।
2: तो इससे क्या होगा कि जो फॉरेन कंपनी अब थोड़ा झिझकते हैं क्योंकि वो जब रफ डायमंड सप्लाई करते हैं तब उनके ऊपर टैक्स लग जाती है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके साथ साथ और एक बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है वो डेटा सेंटर के ऊपर है। वो डेटा सेंटर में क्या है कि जो फॉरेन कंपनियां जो अपनी इंडियन डेटा सेंटर से जो सर्विस सप्लाई करेंगी उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो मैं पूरी ओर से अगर देखूं कि इन्वेस्टमेंट जो क्लाइमेट जो है वो टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो उसमें काफी रिलैक्सेशन आई है, उसमें क्लैरिटी आई है और एक स्टेबिलिटी भी आई।
0: मिस्टर भट्टाचार्य, बहुआयामी और व्यापक रूप से हमारे देश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाने और हमारे देश की विनिर्माण को मेक इन इंडिया मुहिम को गति देने वाले विभिन्न प्रावधान जो है इस नए कानून के, उन पर प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 से

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz। ये वक्त है सांस झले का और सांस झले में मैं विमलेश स्वागत करती हूँ आप सभी का। नमस्कार।

0: अगर मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकु सुकु,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु।

0: साथ है, जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू।

जी हाँ, अभी आपने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में फिल्म जंगली से ये गीत सुना, और अब एक और बेहतरीन सा नगमा लता मंगेशकर जी की आवाज़ में फिल्म अलबेला से।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़े। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ, ऐसा ही लगता है जब कोई ऐसा हमें नज़र भर के देखता है जिसकी नज़र का हमें इंतज़ार रहता है। हमें बस यूँ लगता है कि वो एक बार देखे तो सही, हमें एक बार पलटे तो सही, हमारी तरफ देखे तो सही। शायद ये श्रृंगार, ये सब जो वह भी है, थोड़ा बहुत हमने अपने आप को खूबसूरत बना के रखा हुआ है, शायद उन्हीं के लिए जिनको चाहते हैं कि हम, जिसके लिए सजना चाहते हैं, जिसके लिए सवरना चाहते हैं, वो अगर हमें देखता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। शायद इसी तरीके से मोहम्मद रफ़ी साहब ने उन जज्बातों को इस गाने में पिरोया कि तुमने मुझे देखा हो के मेहरबा। फिलहाल ये जो गीत अभी हम आपको सुनाएंगे फिल्म खानदान से है, और ये गीत भी बहुत प्यारा है। अपने आप में बहुत सारे जज्बात इस गीत में भी सिमटे हुए हैं, और वक्त रहा तो ज़रूर फिर से आपसे बातें करेंगे, लेकिन फिलहाल ये इस प्रोग्राम का अंतिम गीत है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा है कि सरकार ने डेंगू और मलेरिया के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, क्योंकि मई से ही इस बात का अंदाजा था कि बारिश के मौसम के कारण बीमारियां फैल सकती हैं। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि राजधानी के सभी अस्पतालों में ऐसे मामलों के लिए बेड का इंतजाम भी किया गया है।
4: हमारे हर हॉस्पिटल में उसके लिए बेड की व्यवस्था, साथ में आईसीयू में वेंटिलेटर की भी अलग से इमरजेंसी हो गई है, और अभी तक से पेशेंट आए लेकिन वो ठीक होकर अपने घर गए, और हम डॉक्टर विद मेडिसिन सब कुछ हर हॉस्पिटल में प्रिपरेशन है और कोई मिसहैपनिंग नहीं हुई है अभी तक से, ये एक अच्छी अवश्य है।
3: दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि सभी विदेशी नागरिक 15 दिन की तय समय सीमा से ज्यादा समय तक राजधानी के होटल में रुके हुए थे। पुलिस ने विदेशी नागरिकों के पास से बांग्लादेशी पासपोर्ट, 7 डबल एंट्री वीजा और 7 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। साथ ही विदेशी पंजीकरण कार्यालय के जरिए कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने उनके आने जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं और देश से वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी होने तक सभी लोगों को हिरासत केंद्र में भेज दिया गया है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर आरोप लगाते हुए श्री सिरसा ने कहा कि बजट होने के बावजूद पिछले 3 सालों में पूंजीगत व्यय में लगातार गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार कई योजनाएं लाई लेकिन उन्हें कभी लागू नहीं किया गया।
5: इम्पोर्टेंट बात एक जो और सामने आई कि बहुत सारे हेड को तब्दील इधर उधर किया गया जिनकी जरूरत नहीं थी, और कई जगह तो पैसा और भी मांगा गया और मांगने के बाद पता चला कि वो भी सरेंडर कर दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें अभी उस पर चर्चा होगी और आपके सामने वो भी लेके आएंगे।
3: दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने 2020 दंगों की साजिश को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। दिल्ली विधानसभा में उन्होंने कहा कि हिंसा को श्री ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। श्री सूद ने कहा कि पिछली सरकार के कई वरिष्ठ नेताओं ने पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन का बार बार बचाव किया और उसे राजनीतिक संरक्षण देने का भी प्रयास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वतंत्रता दिवस को गर्व, सम्मान और धूमधाम से मनाने का आह्वान किया है और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए श्री मोदी ने सभी नागरिकों से एकजुट होकर देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सभी से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली विधानसभा परिसर में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। ये यात्रा महात्मा गांधी की प्रतिमा से शुरू होकर डॉ बीआर अंबेडकर की प्रतिमा पर समाप्त हुई। संवाददाताओं से बातचीत में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का यह अवसर तिरंगे के तले दिल्ली और देश की सेवा करने के संकल्प को दोहराने का मौका देता है।
6: तिरंगा यात्रा 2014 से ही प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद, देश की सेवा में आने के बाद से ही तिरंगा यात्रा का पूरे दिल्ली भर में और देश भर में आह्वान किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस का ये मौका तिरंगे की छांव में दिल्ली और देश के लिए सेवा के संकल्प को पुनः लेने का अवसर होता है।
3: राजधानी के अक्षरधाम मंदिर में आज आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिसर में 4 नए टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया। सद्गुरु श्री जग्गी वासुदेव जी ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और देश की राजधानी होने के साथ साथ इसका ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने आज इन सभी पहलुओं को देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि गुमशुदा व्यक्तियों की उम्र या लिंग चाहे जो हो उसकी गुमशुदगी पर तुरंत प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। न्यायमूर्ति एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने इसका पालन नहीं करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया। एक रिपोर्ट।
7: शीर्ष न्यायालय ने इसका अनुपालन न करने वाले राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुखों को अदालत के समक्ष पेश होकर ये बताने का निर्देश दिया है कि उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को होगी। न्यायालय ने इससे पहले पुलिस को सभी गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों में बिना किसी प्रारंभिक जाँच के तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा के लिए भी उपाय लागू किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के प्रभावी उपयोग से अब सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सुगम और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि राजधानी में सरकारी खरीद प्रक्रिया पहले छोटे कारोबारियों और उद्यमियों के लिए कठिन और अधिक समय लेने वाली थी। एक रिपोर्ट।
8: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की सरकारी खरीद में जेम के बढ़ते उपयोग और सेवाओं की खरीद में लगातार बढ़ रही भागीदारी को देखते हुए दिल्ली को सस्टेन्ड सर्विस प्रोक्योरमेंट एडॉप्शन श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जेम के माध्यम से सेवाओं की खरीद में बढ़ती हिस्सेदारी और जेम के फायदों को पहचानते हुए दिल्ली के सरकारी खरीददारों द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि जेम के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के लगभग 600 करोड़ रुपए के 156% अधिक है। वहीं इसको बढ़ावा देने के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 65 से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए, जिनमें 3600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि एमएसएमई सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि रोजगार, नवाचार और स्थानीय अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का संकल्प है कि हर एमएसएमई को अवसर, हर उद्यमी को पारदर्शी बाजार और हर छोटे कारोबारी को आगे बढ़ने का मजबूत प्लेटफॉर्म मिल सके। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप से।
3: जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 8 सितंबर कर दी है। एक रिपोर्ट।
9: अभी तक के 49 कार्यक्रमों के अलावा CDOE ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 11 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसका उद्देश्य अपने शैक्षणिक दायरों को बढ़ाना और सीखने वालों को आवश्यक शैक्षणिक भाषा और व्यवहारिक कौशल का अवसर प्रदान करना है। इसके अलावा बैचलर ऑफ एजुकेशन और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रवेश परीक्षा अब 22 अगस्त के बजाय 19 सितंबर को होगी। दोनों कार्यक्रम के लिए परीक्षा केंद्र JMI कैंपस के अंदर ही होगा और इसकी जानकारी एडमिट कार्ड के जरिए दी जाएगी। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ और रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद मेहताब आलम रिजवी ने जरूरी और कौशल आधारित कार्यक्रम के जरिए शैक्षणिक अवसरों को मजबूत करने और विश्वविद्यालय की पहुंच बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वीरेंद्र कौशिक।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। बृहस्पतिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस पुरस्कार समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग को फिक्की पब्लिकान 2026 पब्लिशिंग अवार्ड में प्रतिष्ठित बुक ऑफ द ईयर नॉन फिक्शन हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तक सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के लिए प्रदान किया गया। ये पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वपूर्ण भाषणों का संकलन है। और बात मौसम की, राजधानी दिल्ली में आज मौसम सामान्य रहा, हालांकि कई क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ ही कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। कल अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। अब आप दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल सागर। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन कई विधेयक जहां पारित किए गए, वहीं शून्यकाल में कई विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाए। शून्यकाल के दौरान मोतीनगर विधानसभा के सुदर्शन पार्क में भूमिगत जलाशय बनाने का मुद्दा क्षेत्रीय विधायक हरीश खुराना ने उठाया। भाजपा विधायक श्याम शर्मा ने एक बार फिर गायों मवेशियों के सड़कों पर खुलेआम छोड़े जाने का मामला रखा। वहीं भाजपा विधायक जितेंद्र महाजन ने जीटीबी अस्पताल में अनुबंधित कर्मियों को निकाले जाने का मामला सदन में रखा। इसके बाद दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन में प्रस्ताव रखा कि दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 पर विचार किया जाए। इस दौरान विपक्ष के सदस्यों ने विधेयक का विरोध करते हुए सदन में हंगामा किया। नारेबाजी के बीच सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। दोबारा सदन शुरू होने पर फिर नारेबाजी चलती रही और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके बाद दिल्ली के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री पंकज कुमार सिंह द्वारा सदन में रखे गए दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान विपक्ष ने सदन में फिर हंगामा और नारेबाजी की, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के आदेश पर सुरक्षाकर्मियों ने आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह, कुलदीप कुमार, जुबैर अहमद सहित लगभग सभी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया। इसके बाद दिल्ली नागरिक समयबद्ध और सुगम सेवा प्रदानार्थ अधिकार विधेयक को चर्चा के बाद पारित कर दिया गया। इसके अलावा दिल्ली शयन कक्ष और भोजन संस्थापना निरसन विधेयक 2026 को भी पारित किया गया। विधानसभा में आज दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड संशोधन विधेयक 2026 भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इसके साथ ही श्री सूद ने दिल्ली अग्निशमन सेवा विधेयक 2026 सदन पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के अंतर्गत नेशनल बिल्डिंग कोड शब्द की जगह केवल बिल्डिंग बाइलाज रखा जाए, जिससे आने वाले समय में अग्नि सुरक्षा संबंधित नियम सुव्यवस्थित हों। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा 7 अगस्त को सदन पटल पर रखी गई दिल्ली सरकार से संबंधित नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के ऊपर प्रस्तुत कागजातों पर चर्चा की गई। साथ ही 10 अगस्त को प्रस्तुत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित वर्ष 2024-25 के राज्य वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के ऊपर भी चर्चा हुई। श्रीमती गुप्ता ने सीएजी रिपोर्ट पर बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस आम आदमी पार्टी ने 34 योजनाओं में 2,961 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सीओजी रिपोर्ट संख्या 1 में मुख्य रूप से वर्ष 2022-23 के दौरान दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से संबंधित सीएजी की टिप्पणियां, लेखा परीक्षा निष्कर्ष और निष्कर्षात्मक टिप्पणियां शामिल हैं। इसके बाद सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप विधानसभा में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा, सरकार ने डेंगू और मलेरिया के बचाव के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन विस्टा के अंतर्गत वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 7 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि हर लापता व्यक्ति के संबंध में तत्काल प्राथमिकी दर्ज होना जरूरी है, चाहे उसकी उम्र या लिंग कुछ भी हो। सरकारी ई मार्केट प्लेस जेम के अंतर्गत दिल्ली में वित्त वर्ष 2026-27 में जुलाई तक लगभग 1500 करोड़ रुपए की खरीद हुई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के ऑनलाइन शिक्षा केंद्र ने अपने सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही

ये आकाशवाणी है। अब आप जया भारती से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन के लिए आयोग गठित करने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। राज्यसभा ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 पर हुई चर्चा का विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा जवाब दिए जाने के बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले सदन ने विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को ध्वनिमत से खारिज कर दिया। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र को बदलने का नहीं है, बल्कि इसका प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए सदस्यों ने कहा कि देश में न्यायाधिकरण व्यवस्था को मजबूत करने से अदालतों में लंबित बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। कुछ सदस्यों ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग के गठन से न्यायाधिकरणों के गठन में पारदर्शिता बढ़ेगी। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के न्यायाधीशों की बहुत कम नियुक्ति की जा रही है। इस पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। इस मामले में केंद्र सरकार की भूमिका केवल कॉलेजियम की सिफारिशों को मंजूरी देना भर ही है। उन्होंने कहा कि वह देश के पहले ऐसे आदिवासी हैं जो कानून मंत्री बने तथा डॉ बीआर के बाद कानून मंत्री बनने वाले दूसरे बौद्ध हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित आयोग का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी में होगा और इसमें एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश इस प्रस्तावित आयोग के अध्यक्ष पद के लिए पात्र होंगे। विधेयक के मसौदे के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने हाल में न्यायाधिकरण सुधार अधिनियम 2021 के कुछ प्रावधानों को इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि वे शक्तियों के पृथककरण और न्यायिक स्वतंत्रता के सिद्धांतों के विपरीत हैं। उच्चतम न्यायालय ने एक ऐसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग के गठन का भी निर्देश दिया था जो स्वतंत्र हो, जिसमें पेशेवर विशेषज्ञता हो तथा विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों के चयन तथा नियुक्ति के लिए पारदर्शी प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था अपनाई जाए। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 2021 का अधिनियम निरस्त हो जाएगा। चर्चा में बीजद के सस्मित पात्रा, द्रमुक के तिरुचि शिवा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, रांगकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, तेलुगु देशम पार्टी के भाष्यम रामकृष्ण, भाजपा के सुभाष बराला, डॉ सतीश पुनिया, सुजीत कुमार, महेश केवट, स्वाति मालीवाल, मयंक कुमार नायक, बसपा के रामजी, बीएसआर के रविन्द्र चंद्र वद्यराजू और अन्ना द्रमुक के आईएस इनबादुरे ने भी हिस्सा लिया। विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन भारत के प्रधान न्यायाधीश के परामर्श से किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह भी देखना चाहिए कि न्यायाधीश के न्यायाधिकरण के आदेश का पालन किया जा रहा है या नहीं। बीजद के सस्मित पात्रा ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि न्यायाधिकरण सुधार केवल न्यायाधिकरण सुधार ही नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक सुधार भी है। उन्होंने कहा कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को भी इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि प्रस्तावित आयोग में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य होंगे। इनमें दो न्यायिक और दो तकनीकी सदस्य होंगे। इनका चयन सावधानी से और उत्कृष्टता के आधार पर किया जाना चाहिए। अन्ना द्रमुक सदस्य आईएस इनबादुरे ने कहा कि नेशनल ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड कामकाज में पारदर्शिता लाने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण में रिक्तियों को यथाशीघ्र भरा जाना चाहिए।
बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू ने कहा कि आयोग को निष्पक्ष तथा स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए और समय समय पर उसके काम की समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरणों की पीठ में पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए। भाजपा की स्वाति मालीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को यह अधिकार दिया जाए कि वह समय समय पर यह विश्लेषण करे कि किन न्यायाधिकरणों में क्षेत्रीय पीठों की जरूरत है। मंत्री के जवाब के बाद विधेयक को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इससे पहले जब न्यायाधिकरण सुधार विधेयक पर चर्चा शुरू हुई तब उपसभापति हरिवंश ने सदस्यों से केवल विधेयक से जुड़े विषय पर बोलने का आग्रह किया। उन्होंने शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने की अनुमति नहीं दी। इस पर विपक्षी सदस्यों ने नेता प्रतिपक्ष बोलने दो के नारे लगाए और हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाने का प्रयास किया। उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के सदन में आने की भी मांग की तथा राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी को लेकर नारा लगाए। उपसभापति हरिवंश ने श्री खड़गे को बोलने की अनुमति दी लेकिन उन्हें सदन में चल रहे कार्य यानी विधेयक पर ही अपनी बात रखने को कहा। श्री खड़गे ने राम मंदिर मुद्दे पर बोलने का प्रयास किया लेकिन आसन ने इसकी अनुमति नहीं दी। उपसभापति ने अगले वक्ता का नाम पुकारा। इस पर विरोध व्यक्त करते हुए INDI गठबंधन दलों के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। हालांकि विधेयक पर चर्चा जारी रही और कानून मंत्री के जवाब के बाद उसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद उच्च सदन में विशेष उल्लेख लिया गया। विशेष उल्लेख के जरिए अन्नाद्रमुक के IS इन्बादुरै, भाजपा के ब्रजलाल, जोगेन मोहन, डॉ के लक्ष्मण, लक्ष्मी वर्मा, कविता पाटीदार, सुभाष बराला, सुष्मिता देव, स्वाति मालीवाल, S सिल्वा गनबेती, मनोनीत सुधा मूर्ति और YSR कांग्रेस पार्टी के गिल्ला बाबूराव ने लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए और सरकार से उनके समाधान का अनुरोध किया। इसके बाद शाम 4:30 पर उच्च सदन की बैठक को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद एक बार 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सुबह 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति CP राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए कहा। सभापति ने बीजू जनता दल के डॉ संतृप्त मिश्र को अपना मुद्दा उठाने के लिए कहा। श्री मिश्र ने ओडिशा में उर्वरक की उपलब्धता से जुड़ा मुद्दा उठाया और अपनी बात ओडिया भाषा में रखी। इस दौरान विपक्षी सदस्य आसन से नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। जब बीजद सदस्य डॉ संतृप्त मिश्र ने अपना वक्तव्य समाप्त किया या करने वाले थे तभी खड़गे उठे और उन्होंने राम मंदिर से संबंधित नया मुद्दा उठाने की मांगी। नेता प्रतिपक्ष के इतना कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विरोध शुरू कर दिया। हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए और राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी का मुद्दा उठाने की मांग की। सभापति ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और कहा कि उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी झारखंड से जुड़ा मुद्दा उठाने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह राज्य का विषय है। राधाकृष्णन ने कहा कि विपक्ष के नेता राज्य से जुड़े विषय को उठा रहे हैं इसलिए इसे प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हर दिन एक ही विषय उठाकर सदन की कार्यवाही बाधित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने कहा कि आप जिस विषय को उठा रहे हैं वह राज्य का विषय है और इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। सत्ता पक्ष के सदस्य भी कुछ राज्य से जुड़े मुद्दे उठाना चाहते थे लेकिन मैंने उन्हें भी यह अनुमति नहीं दी। वे झारखंड का मुद्दा उठाना चाहते थे और मैंने कहा कि यह राज्य का विषय है, मैं किसी भी राज्य के विषय को उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। सभापति ने श्री खड़गे और हंगामा कर रहे अन्य सदस्यों से अपनी सीट पर बैठने को कहा और सूचीबद्ध प्रश्न लेकर कार्यवाही आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसके बाद भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा और नारेबाजी जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं PTI भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शन

अरे विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों के हंगामे के कारण आज लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2:25 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र के चौथे सप्ताह के दूसरे दिन की कार्यवाही भी पिछले 3 सप्ताह की तरह हंगामेदार रही और आज भी सदन में प्रश्नकाल तथा शून्यकाल नहीं चल सके। एक बार के स्थगन के बाद अपराह्न 2 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि केरल के 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। श्री राय ने कहा कि केरल सरकार ने इसका कारण दिया कि मलयालम भाषा में राज्य का नाम केरलम है, लेकिन संविधान की पहली अनुसूची में इसे केरल दर्ज किया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों के सांसद अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृहमंत्री शाह की जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। उन्होंने कहा कि एनसीडीसी का कार्य सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि उपज, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक उत्पादन और पशुधन संबंधी सेवाओं तक सीमित था, लेकिन अब एनसीडीसी प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन, आयात और निर्यात से संबंधित योजना बनाने और उन्हें लागू करने का भी काम कर रहे हैं। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सदन ने इस विधेयक को भी चर्चा के बिना ध्वनिमत से पारित कर दिया। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेनेट्टी ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाकर बैठने और विधेयकों पर चर्चा में भाग लेने का बार बार आग्रह किया। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पारित हो रहे हैं, आप लोग सीट पर जाकर बैठिए। तेनेट्टी ने कहा कि विपक्षी सांसदों ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर भी नहीं बोला। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले आज सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी दलों के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी दलों से सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि जब विद्यार्थियों के आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग पर सरकार ने सहमति दे दी है तो फिर विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि सदन सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर चलाना चाहिए। देश की जनता चाहती है कि सदन चले और सभी विषयों पर चर्चा हो। उन्होंने कहा कि सोमवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी उन्होंने सभी दलों से सदन चलाने का आग्रह किया था। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि मैंने व्यक्तिगत रूप से कई बार आग्रह किया कि प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसमें सत्ता की जवाबदेही तय होती है और कार्यपालिका में पारदर्शिता आती है। विपक्ष की विद्यार्थियों से संबंधित प्रमुख मांग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में स्पष्ट किया कि गृहमंत्री इस विषय पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, इसलिए अब आप सदन चलने दें। उन्होंने सदन के भीतर तख्तियां लाने पर भी आपत्ति व्यक्त की और कहा कि यह संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि आप लोग सहयोग करें, सदन नहीं चलने से मन व्यथित होता है। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने 11:04 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का।

0: ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञान नंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप में शैमुअल सेवियन के साथ ड्रॉ खेला। इगा स्वायतेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल सेमीफाइनल में जगह बनाई। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कल से पुणे में आयोजित होगी। और अफगानिस्तान ने एक दिवसीय विश्व कप 2027 में जगह बनाई। टूर्नामेंट के 10 टीम तय। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं शतरंज से, जहां आर प्रज्ञानंदा का लगातार अच्छा फॉर्म जारी है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के पहले दौर में अमेरिका के सैमुअल सेवियन के साथ आसान ड्रॉ खेला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: शीर्ष वरीयता प्राप्त फेबियानो कारुआना इस वर्ष के टूर्नामेंट में 10 खिलाड़ियों के 9 दौर की इस प्रतियोगिता के पहले दौर में जीत हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी रहे, जिससे उन्होंने शुरुआती बढ़त बना ली है। उन्होंने नीदरलैंड्स के जॉर्डन वैन फोरेस्ट को हराया। विश्व चैंपियनशिप के दावेदार उज्बेकिस्तान के जाओखीर सिंदारो ने अमरीकी खिलाड़ी लेवोन अरोनियन के साथ अंक साझा किए, जबकि जर्मनी के विंसेंट कीमर ने अमरीका के वेस्ली सो से बाजी ड्रॉ खेली। नीदरलैंड्स के अनीश गिरी ने भी फ्रांस के मैक्सिम वाचियर लाग्रेव के साथ ड्रॉ खेला। प्रज्ञानंदा के लिए यह एक अच्छी शुरुआत रही, लेकिन प्रज्ञानंदा ने अमरीकी खिलाड़ी सैमुअल सेवियन के साथ बाजी ड्रॉ खेली। दोनों खिलाड़ी 48 चाल के बाद अंक बांटने पर सहमत हो गए। कारुआना ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फोरेस्ट को 55 चाल में हराकर एक बार फिर अपना लोहा मनवाया। उन्होंने अंतिम क्षणों में फोरेस्ट की गलती का फायदा उठाकर पूरे अंक हासिल किए। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: और श्रोताओं, आपको बता दें कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब अपने नाम किया है। फाइनल में प्रज्ञानंदा ने एक राउंड बाकी रहते ही जाओखीर सिंदारोव को हराया था। इसके साथ ही प्रज्ञानंद जून में प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रख चुके हैं। लगातार उनका ये प्रदर्शन दर्शाता है कि किस तरह के फॉर्म में प्रज्ञानंदा है अभी शतरंज के खेल में। अब चलते हैं टेनिस के कोर्ट की ओर। इगा स्वायतेक ने कैनेडियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शीर्ष खिलाड़ी और छठी बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इगा ने रूस की डायना स्राइडर को 64 मिनट तक चले मुकाबले में 6-2, 6-1 से हराया। सेमीफाइनल में स्वायतेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वीं वरीयता प्राप्त एलिना स्वितलिना से होगा। स्वितलिना ने दूसरे क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रा को 3-6, 6-0, 6-3 से हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विशेष। महिला सिंगल्स में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, किन किन खिलाड़ियों पर नजरें होंगी?
2: देखिए प्रशांत, अगर आज के मुकाबलों की बात करें तो स्वितोलिना जो है उनका मुकाबला बहुत बेहद रोमांचक रहा। अलेक्जेंड्रोवा ने उनको पहला सेट हराया, लेकिन उन्होंने दूसरे और तीसरे सेट में शानदार वापसी करते हुए 6-0 और 6-3 से मुकाबला अपने नाम किया। अगर स्वायतेक की बात करें तो उन्होंने एक तरफा मुकाबला जीता है जहां उन्होंने 6-2 और 6-1 से जीत दर्ज करी। अगर हम कल के होने वाले क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो बेलिंडा बेनसिच और कोको गॉफ, ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि कोको गॉफ जो है बेहतरीन फॉर्म से गुजर रही हैं। वहीं एक बहुत कमाल की टक्कर हमको देखने को मिलेगी नाओमी ओसाका और एलिना रायबकीना के मुकाबले में। तो इन मुकाबलों के जो विजेता हैं वो 13 अगस्त को सेमीफाइनल में भिड़ेंगे, जबकि एक सेमीफाइनल मुकाबले के लिए इगा स्वायतेक और स्वितोलिना ने अपनी जगह पक्की कर ली है और 14 अगस्त को महिला सिंगल्स का फाइनल खेला जाएगा।
0: जी, आपने महिला वर्ग के बारे में बताया, लेकिन पुरुष सिंगल्स में भी बहुत ही रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले अगर हम बात करें तो लुसियानो डार्डरी की बात हो गई या फिर ब्रेंडन नाकाशिमा, राफेल जोडार जो है प्रतिस्पर्धा करते नजर आएंगे, तो इन खिलाड़ियों से क्या कुछ उम्मीदें होंगी?
2: जी, अगर देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में कार्लोस अल्कराज, जियानिक सिनर, नोवाक डीजोकोविक जैसे खिलाड़ी बाहर हैं, तो इन सभी जो खिलाड़ियों को काफी अच्छा मौका है वो इस मुकाबले में अपने जो उनका तरीका है उसको बेहतर तरीके से खेलकर देख सकते हैं। जबकि अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने इस टूर्नामेंट में अपनी जगह बनाई थी और राउंड ऑफ 32 में ही वो बाहर हो गए थे।
0: जी,
2: अगर क्वार्टर फाइनल मुकाबलों की बात करें तो दो क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज खेले जाएंगे, जैसा कि आपने बताया, नाकाशिमा और डाडेरी के बीच और जोडार और आर्थर फिल्स के बीच। वहीं कल भी दो मुकाबले खेले जाएंगे जहां पर एक मुकाबला जेकब मेंसिक और बेन शेल्टन के बीच होगा। ये दोनों ही खिलाड़ी बहुत ही शानदार तरीके से अभी तक

0: खेलते हुए आए हैं और आगे भी इसी प्रकार से इनसे उम्मीद की जा सकती है, और इनका भी फाइनल जो है 14 अगस्त को ही खेला जाएगा।
1: जी, अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों ही वर्ग में, महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में, कौन से खिलाड़ी बाजी मारते हैं और कैनेडियन ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम करते हैं। अब चलते हैं महिला हॉकी की ओर। 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 कल से पुणे में शुरू हो रही है। प्रतियोगिता के 3 वर्गों में कुल 30 टीम हिस्सा लेंगी। सुनते हैं विशाल शर्मा की ये रिपोर्ट।
2: 12 से 23 अगस्त तक होने वाली जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में टीमों को डिवीजन ए, डिवीजन बी और डिवीजन सी में रखा गया है। इस प्रतियोगिता में टीमें न केवल खिताब के लिए बल्कि अपने से ऊपर वाले डिवीजन में पहुंचने का भी प्रयास करेंगी। डिवीजन ए में 12 टीमें हैं जिन्हें 4 पूल में रखा गया है। पूल ए में झारखंड, पंजाब और चंडीगढ़, पूल बी में हरियाणा, ओडिशा और बंगाल, पूल सी में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मणिपुर तथा पूल डी में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल है। डिवीजन ए की 12 टीमें प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। इस डिवीजन में 11वें और 12वें स्थान पर रहने वाली टीमें अगली प्रतियोगिता के लिए डिवीजन बी में चली जाएंगी। डिवीजन बी में शामिल 10 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। पूल ए में आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, केरलम और मिजोरम, जबकि पूल बी में कर्नाटक, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार और गोवा शामिल है। इस डिवीजन की शीर्ष 2 टीमें डिवीजन ए में पहुंचेंगी, जबकि सबसे नीचे की 2 टीम डिवीजन सी में चली जाएंगी। डिवीजन सी में शामिल 8 टीमों को 2 पूल में बांटा गया है। पूल ए में अरुणाचल प्रदेश, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और त्रिपुरा, जबकि पूल बी में पुदुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर और तेलंगाना की टीम शामिल हैं। इस श्रेणी की शीर्ष 2 टीम अगली प्रतियोगिता के लिए डिवीजन बी में प्रवेश करेंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: और इसी सप्ताह के अंत में 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच विश्व कप, हॉकी विश्व कप भी खेला जाएगा, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में होना है। तो इस प्रतियोगिता के साथ साथ विश्व कप पर भी सबकी नजरें होंगी। और अब बात स्क्वाश पर। एचसीएल स्क्वाश पीएसए चैलेंजर टूर इवेंट के पुरुष सिंगल्स के शुरुआती राउंड में अरिहंत केएस ने स्विट्जरलैंड के लियांड्रो मैनहार्ट को 11-6, 9-11, 13-11, 11-4 से हराया। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
3: कोलकाता में महिलाओं के पहले राउंड के मुकाबलों में कल पूजा आरती रघु ने वापसी करते हुए काशवी मंगल को 13-15, 11-6, 11-6, 7-11 और 11-9 से हराया। वहीं अनन्या नारायण ने आना सिंह को 8-11, 11-2, 11-8, 11-8 से मात दी, जबकि वसुंधरा नांगरे ने अपने ही देश की जेनेट विधि को 11-8, 11-5, 11-5 से शिकस्त दी। पुरुषों के वर्ग में भारत की उम्मीदें चौथे सीड सूरज कुमार चंद और ओम सेमवाल पर टिकी रहेंगी, जबकि राहुल बैठा और संदेश पलानीवेल रवि कुमार टॉप संदेश पलानीवेल रवि कुमार टॉप 10 से बाहर हैं। महिलाओं के वर्ग में भारत की तन्वी खन्ना टॉप सीड हैं, जबकि राधिका सुंथथिरा सीलन 5वें और आकांक्षा सालुंके 6ठी सीड हैं। इस इवेंट में पुरुषों और महिलाओं के वर्ग के लिए $9,000 की इनामी राशि है। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में हसन मैनशावी, रवि दीक्षित, अरिहंत केएस, संदेश पलानीवेल, रवि कुमार, दीपक मंडल और शौर्य बाबा ने जीत दर्ज की। वहीं महिला वर्ग में पूजा आरती रघु, रिवा निम्बालकर, अनन्या नारायणन, अंजलि सेमवाल, व्योमिका खंडेलवाल, वसुंधरा नांगरे, अनिका दुबे और सहाना कलेवानन से मुकाबले जीते हैं। मुनीश शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: श्रोताओं को बता दें कि एचसीएल स्क्वाश पीएसए चैलेंजर टूर ने अब तक इंदौर, मुंबई और चेन्नई में इवेंट आयोजित किए और अब ये कोलकाता में आयोजित किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल जम्मू कश्मीर के उत्कृष्ट खिलाड़ियों और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि हासिल करने वाले खिलाड़ियों को कुल 2,71,00,000 रुपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए। श्रीनगर स्थित शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। समारोह में बुल्गारिया में आयोजित ब्रेव CF107 प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन के लिए ओवैस याकूब को सम्मानित किया गया। ओवैस कश्मीर के पहले पेशेवर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA खिलाड़ी हैं। कंपाउंड पैरा तीरंदाज शीतल देवी को दक्षिण कोरिया में आयोजित 2025 विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप की व्यक्तिगत ओपन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने के लिए भी सम्मानित किया गया। और अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। अफगानिस्तान ने दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले एक दिवसीय विश्व कप 2027 में जगह बना ली है। आयरलैंड के खिलाफ जारी पांच वनडे

0: मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में जीत दर्ज कर अफगानिस्तान ने विश्व कप 2027 में प्रवेश कर लिया है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: अफगानिस्तान ने आयरलैंड को तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में 3 विकेट से हराकर एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2027 में जगह बना ली है। इससे पहले 2003 के विश्व कप में अफगानिस्तान ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए विश्व विजेता रह चुके श्रीलंका, इंग्लैंड और पाकिस्तान जैसी टीमों को मात दी थी। 2027 विश्व कप में एक बार फिर अफगानिस्तान के प्रदर्शन पर नजरें रहेंगी। इस बार वेस्टइंडीज टूर्नामेंट में सीधे जगह बनाने में सफल नहीं रही। वेस्टइंडीज को अगले साल फरवरी में होने वाले क्वालिफायर्स के मुकाबले खेलने होंगे। इन मुकाबलों के परिणाम के आधार पर टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर सकेगी। क्वालिफायर के विजेता को 2027 विश्व कप के दूसरे राउंड में सीधे एंट्री मिलेगी, जबकि दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें सुपर सीरीज के जरिए पहला राउंड खेलेंगी। ये लगातार दूसरा मौका है जब वेस्टइंडीज को विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्वालिफाइंग मुकाबले खेलने होंगे। वनडे विश्व कप 2023 में भी वेस्टइंडीज क्वालिफाई नहीं कर सकी थी। अफगानिस्तान के क्वालिफाई करने के साथ ही वनडे विश्व कप 2027 में 10 टीमें तय हो गई हैं। ये टीमें भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे हैं। दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के चलते पहले ही विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: श्रोताओं को बता दें कि अफगानिस्तान ने तीसरे एक दिवसीय मुकाबले में आयरलैंड को 31 गेंद शेष रहते हुए 3 विकेट से हराया। आयरलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंद शेष रहते 206 रन पर सिमट गई थी। टीम के राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। और उधर भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला 15 अगस्त को श्रीलंका के गाले स्टेडियम में खेला जाएगा। इस टीम में कई अनुभवी खिलाड़ी तो कई युवा खिलाड़ी शामिल हैं। यह श्रृंखला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मद्देनजर बेहद अहम है। और हमारे साथ जुड़ गए विशेष विशेष टीम में घरेलू क्रिकेट में जो जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। अगर हम अकीब नवी की बात की जाए तो 60 विकेट लिया और जम्मू कश्मीर को उन्होंने पहला रणजी ट्रॉफी भी जिताया, तो क्या कुछ नजरें होंगी उन पर?
2: देखिए, आकिब नबी डार ने प्रशांत जसप्रीत बुमराह की जगह पर अपना स्थान पक्का किया है टीम में। और सबसे ज्यादा इन्होंने सुर्खियां बटोरी थी जब रणजी ट्रॉफी में इन्होंने 10 मुकाबलों में 60 विकेट लेकर जम्मू कश्मीर को उनका पहला रणजी ट्रॉफी टाइटल जिताया था
0: जी।
2: इस प्रतियोगिता में इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था और इसी सेंसेशन के चलते आईपीएल में इनको बहुत ही अच्छा प्राइज मिला था, 8.40 करोड़ का प्राइज मिला था। लेकिन आईपीएल में उनका प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करें घरेलू क्रिकेट लंबे फॉर्मेट की तो आकिब नबी डार एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं।
0: अगर हम देवदत्त पड्डीकल जिनको टीम में शामिल किया गया, विशेष अगर हम रणजी ट्रॉफी की बात करें तो 700 प्लस रन, उसके बाद आईपीएल में जब वो आते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 1 डाउन आकर के डोमिनेट करके उन्होंने जिताने में बहुत मदद की। अब टीम में उनको जगह मिली और अभी अभ्यास मैच में उन्होंने एक शतक लगाया, कैसे देखते हैं आप उनको?
2: ये अभ्यास मैच में अभी प्रशांत देवदत्त पड्डीकल ने 142 रन की शानदार पारी खेली थी। इससे पहले श्रीलंका से एक घरेलू सीरीज भी खेली जा रही थी जिसमें 3 इनिंग में 173 रन जो है देवदत्त पड्डीकल ने बनाए थे। अगर आईपीएल की बात करें तो करीब 500 रन का योगदान उन्होंने दिया था। आखिरी मुकाबला नवंबर 2024 में खेला था और अब अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को लेकर वो रेडी है।
0: साई सुदर्शन टीम से बाहर हो गए, उनकी जगह सरफराज खान को टीम में जोड़ा गया जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2024 में टीम में शामिल थे। अब जो है 2 साल बाद उनको टीम में जोड़ा गया है, तो क्या कुछ होंगे उनसे उम्मीदें?
2: देखिए, सरफराज खान को ये फर्क नहीं पड़ता है शायद कि उनको टीम में रखा जाए या ना रखा जाए, वो लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहते हैं। विजय हजारे में 303 रन, रणजी ट्रॉफी में एक बहुत बड़ा दोहरा शतक 227 रनों का, इसके अलावा 53 का औसत और सैयद मुश्ताक अली में 65 का औसत, विजय हजारे में 75 के औसत के साथ 303 रन, बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा उनका
0: जी। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्सकैन की टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद ने अधिक

0: प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया, राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है।
1: यह विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं, नियुक्तियों, सेवा की शर्तों और नियमों में दक्षता, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करने, अधिकरणों के प्रशासन और कामकाज को बेहतर बनाने, एक राष्ट्रीय अधिकरण आयोग की स्थापना करने तथा उससे जुड़े मामलों के लिए, जैसा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, इस विधेयक पर विचार किया जाए।
0: लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
2: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
3: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
4: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
5: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक

0: और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
1: इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। राज्य में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
2: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
1: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। दोनों देशों ने समझौते के अंतर्गत वैज्ञानिक आंकड़े साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि शहर केवल ईंट और कंक्रीट से बनी इमारतें नहीं हैं, बल्कि किसी राष्ट्र की आर्थिक प्रगति के विकास के इंजन हैं। मुंबई में आयोजित ब्रिक्स मैत्री नगर सम्मेलन में उन्होंने ब्रिक्स देशों से आग्रह किया कि वे 21वीं सदी के लिए नागरिक केंद्रित शहर बनाने के लिए अपने अनुभव, प्रौद्योगिकी और नवाचार साझा करें। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने आज पश्चिम बंगाल से घोषित अपराधी गोपाल दास को गिरफ्तार कर लिया। वो पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और हत्याकांड में शामिल था। आरोपी को बाद में कलकत्ता की अदालत ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पंजाब पुलिस ने पिछले 5 दिनों में फिरोजपुर और अमृतसर के सीमावर्ती जिलों से 10 आरोपियों से करोड़ों रुपए की 80 किलो से अधिक हेरोइन बरामद की है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने आज फिरोजपुर में सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 30 किलो से अधिक हेरोइन की खेप बरामद की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा है।
3: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
1: देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति

0: जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा है कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहतर बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने भारतीय बैंकों से नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करने पर बल देते हुए AI को अपनाने का आह्वान किया है। मुंबई में RBI गवर्नर ने कहा कि AI ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, परिचालन दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार करके भारतीय बैंकिंग में क्रांति ला सकता है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में रुक रुक कर हो रही बारिश से कई स्थानों पर जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण भूस्खलन से राज्य के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग और 204 अन्य सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हो गई हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 5 जिलों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को बृहस्पतिवार को संगीत नाटक अकादमी की छात्रवृत्तियां और पुरस्कार प्रदान करेंगी। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित ये छात्रवृत्ति और पुरस्कार विजेता पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने अधिकरण प्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय अधिकरण आयोग का प्रस्ताव रखा। लोकसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को विपक्ष के हंगामे के बीच मंजूरी दी। सहकारी विकास के दायरे को व्यापक बनाने वाले राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक को भी स्वीकृति दी। भारत ने कहा, चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी मून बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने को कहा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मंथन। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारेख। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: डॉक्टर पारेख, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर पारेख, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,25,00,000 से ज्यादा मकान स्वीकृत हुए हैं और 1,00,00,000 से ज्यादा मकान पूरे भी हो चुके हैं। अगर इनिशियली हम देखें तो वर्ष 2015 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और तब से लेकर अब तक शहरी आवास की तस्वीर में काफी बदलाव आया है, तो आपके विचार में इस उपलब्धि को आप किस तरह से देखते हैं? इसका सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव जो था वो क्या था?
2: देखिए, पक्का हाउस मिलना सबके लिए बहुत जरूरी बात है। अब जब हम क्लाइमेट चेंज के

0: क्या प्रभाव देख रहे हैं, हीट वेव्स बढ़ रहा है, ये सब के जरिए हैविंग ए शेल्टर, एक अच्छा मकान होना एक जरूरी बात है। लेकिन एक दृष्टि ये देखिए तो जो सबको न पक्का मकान अर्बन एरिया में देना, वो टारगेट था 2022 का। इसमें दो बहुत बहुत प्रगति हुई है, फिर भी टारगेट से हम दूर है। फिर भी जितना हुआ है इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज होती है। घर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें अंदर रहने से, आबोहवा से, गर्मी से आपको राहत मिले। अरे इसके लिए हमको पक्का मकान की जरूरत है। लेकिन पक्का मकान की एक और भी बात है जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए।
1: जी
0: गरीब लोग को ये पक्का मकान अपना होना एक बहुत इज्जत की बात होती है, जो सोसाइटी में, समाज में उनका महत्व बढ़ता है, और लोग समझते हैं कि अच्छा इनके पास घर तो अपना है। और इसके असर काफी होती है, क्योंकि लड़के के लिए अच्छी बहू और लड़की के लिए अच्छा घर मिल सकता हूँ एक्सचेंज में।
1: जी
0: तो ये सब मेरे ख्याल से बहुत अगत्य की बात थी कि ऐसा पीएम आवास योजना अर्बन में ऐसी सुंदर घोषणा की सरकार ने।
1: पारिक जी, आज की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जो दूसरा चरण है 2.0, तो जाहिर सी बात है इसे पिछली योजना के अनुभवों से सीख लेकर तैयार किया गया है और अगले 5 वर्षों में शहरी परिवारों की आवास जरूरतें पूरी करने को विशेष तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो अभी स्थितियों में अगर देखें तो किस तरह का बदलाव लाया गया है और किस तरह से जो चुनौतियां भी सामने आई उनको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
0: बात ये सच सच है कि पहले चरण में हमने लगभग 1 करोड़ लोग को आवास दिया है,
1: जी
0: और अगर हम दूसरे चरण में ऐसी प्रगति करें तो भी काफी होगी। बट इससे भी अच्छा कोई कर सके तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मेरा ख्याल से इसमें क्या हुआ है कि सडनली जो सब्सिडी दे रहे वो कैसे मिलनी चाहिए, ये सब आसानी से हो गया है। तो पहले से इससे ब्यूरोक्रेसी इसकी कम हुई है, यानी इसकी जरूर असर होगी कि कभी लोग को पहले से एप्लीकेशन किया लेकिन उनको मिला नहीं, लेकिन आज बहुत सा अप्रूवल हो गया है
1: जी
0: और काफी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट किया गया है। तो अगत्य की चीज ये है कि बस हम ये प्रोग्राम जारी रखें जब तक पूरा ध्येय हासिल न हुए, और ध्येय हासिल करने के लिए जितने ताकत, जोर और पैसे लगाना चाहिए।
1: परीक जी, अभी जो 6 अगस्त को बैठक हुई जिसमें केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई थी, इसमें 2 लाख से अधिक नए मकानों को मंजूरी दी गई है और ये भी कहा गया कि 1,42,000 मकान लाभार्थी आधारित निर्माण और 67,000 से अधिक मकान जो है वो साझेदारी में किफायती आवास के तहत बनाए जा रहे हैं। तो ये जो 2 मॉडल रखे गए हैं तो इनका लाभ किस तरह के परिवारों को मिलता है और जिन परिवारों के पास अपनी जमीन है या फिर अपनी जमीन जिनके पास नहीं है उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं इन योजनाओं से?
0: इसमें बहुत से पहलू है। एक तो स्लम क्लियरेंस है, स्लम डेवलपमेंट, इसमें तो जे वहां रहते हैं स्लम ऑफिशियल स्लम रेसिडेंट है सबको मकान मिलने वाला है। ज्यादातर मकान देने में प्रॉब्लम ये होती है कि जमीन नहीं मिलती है,
1: जी
0: लेकिन इसमें से जमीन मिल रही उनको मिल जाएगी। दूसरा पहलू ये है कि सरकार जिसके पास जमीन है अपनी उनको भी मदद करती है, और जिसके पास पुराना घर है उनको अपग्रेड करना चाहे इसके भी मदद होती है, और प्राइवेट सेक्टर को भी साथ लेने के लिए उन्होंने अलग अलग स्कीम बनाई है। तो मेरा ख्याल से ये सब स्कीमों हैं 5-6 अलग अलग तरीके के, इससे नॉट ओनली EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन बट ऑल्सो मिडल और अपर मिडल को भी फायदा होगा। एंड इसका जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन की बात करें, जिसको हमको मदद करते हैं वो धीरे धीरे उनके साथ जो दूसरे को मदद नहीं होती है इसके ऊपर वाले थोड़े, तो इनको होता है कि ये सब गलत हो रहा है, ये सब हमको क्यों नहीं। मेरे ख्याल से जरा कॉम्प्रहेंसिव विचार करके प्रोग्राम बनाया गया है।
1: आइए सुनते हैं पीएम आवास योजना पर ये विशेष रिपोर्ट। देश के शहरों में बिना पक्के मकान के रहने वाले परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक बड़ी पहल रही है। इस योजना के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें 1 करोड़ से अधिक घरों का निर्माण भी पूरा हो चुका है। महिलाओं को घर के स्वामित्व में भागीदारी देकर उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करना भी इस योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। इस योजना के दोनों चरणों के तहत मंजूर घरों में से लगभग 1 करोड़ घर महिलाओं को आवंटित किए गए।
2: गए हैं। ये घर परिवार की महिला मुखिया के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को

0: जिस जून 2015 से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले और सभी मौसम में सुरक्षित पक्के घर उपलब्ध कराना है। योजना के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर इसे आगे बढ़ाते हुए 1 सितंबर 2024 से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण को 4 श्रेणियों के माध्यम से लागू किया जा रहा है। इनमें लाभार्थी द्वारा निर्माण, साझेदारी में आवास निर्माण, किफायती किराए का आवास और ब्याज सब्सिडी योजना शामिल है। बीते सप्ताह 6 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की 8वीं बैठक हुई। बैठक में विभिन्न राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए 2.09 लाख से अधिक घरों को मंजूरी दी गई। इनमें लगभग 1.42 लाख घर लाभार्थी द्वारा निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इस श्रेणी में लाभार्थियों को अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता दी जाती है। वहीं 67,045 घर साझेदारी में आवास निर्माण श्रेणी के तहत हैं। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साझेदारी में सार्वजनिक और निजी एजेंसियां किफायती आवास परियोजनाएं विकसित करती हैं और पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एक मांग आधारित योजना है, यानी लाभार्थियों के आवेदन के बाद मांग का आकलन, परियोजनाओं का निर्माण और लाभार्थियों का चयन संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार योजना की प्रगति की निगरानी करती है और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर मंजूर घरों को तय समय में पूरा करने पर जोर देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने पिछले वर्षों में शहरी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। अब 1 करोड़ से अधिक घरों के पूरा होने के बाद अगली चुनौती मंजूर घरों को समय पर पूरा करना और दूसरे चरण के तहत तय किए गए 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र परिवारों तक सहायता पहुंचाना है। अनिकेत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: पारिक जी, इस योजना में महिलाओं के नाम पर या फिर संयुक्त स्वामित्व में मकान देने को विशेष प्राथमिकता दी गई, यानी कि अगर किसी महिला को मकान दिया जा रहा है तो उसे विशेष प्राथमिकता मिलेगी। तो कुल जो 1.25 करोड़ स्वीकृत मकान है, इसमें लगभग 1 करोड़ मकान जो है महिलाओं के नाम या फिर संयुक्त स्वामित्व में है। तो इस तरह का जो फैसला है, ये महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका में किस तरह से बदलाव आपको बताता है, किस तरह से दिखाता है कि अब महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भागीदारी बदल रही है?
2: महिलाओं को जब हम घर की मालिकी देते हैं तब उनका प्रभुत्व बढ़ता है, घर में उनकी एजेंसी बढ़ती है और ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं का सशक्तिकरण जितना बने इतना करे। तो ये अच्छी बात है प्रोग्राम में कि महिलाओं को सरकार प्राथमिकता दे रही है और सबसे ज्यादा तो वीडोज को और भी ज्यादा प्राथमिकता दी गई है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, ये जरूर से इनके लिए उनकी घर में भी इनकी आवाज की कीमत ज्यादा होगी और लोग उनको इनका फैमिली नाम का जो फैमिली है वो भी उनको ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: डॉक्टर पारिक, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एक मांग आधारित योजना है और परियोजनाओं के प्रस्ताव जो हैं वो राज्यों से या फिर केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से आते हैं। तो ऐसे में क्या अलग अलग राज्यों की प्रशासनिक क्षमता और शहरी नियोजन व्यवस्था के कारण योजना को कैसे मतलब चेंज किया जाता है कि किसी प्रदेश में इस तरह से आवास बनेंगे, दूसरे प्रदेश में दूसरी तरीके से बनेंगे, या फिर संख्याओं का जो वितरण होता है उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं?
2: हमारा जो राष्ट्र है इसमें राज्यों की सरकार को काफी स्वतंत्रता मिलती है, तो इसको साथ में ले जाना जरूरी है। मेरा ख्याल से ये प्रोग्राम ऐसा है कि इसमें सब राज्यों को भी ऐसा लगेगा कि हमारे हित में है, जो उनकी सरकार है उनको भी लगेगा, इससे हमारी फॉलोइंग बढ़ेगी। मेरा ख्याल से राज्यों को तो अलग अलग करना है, लेकिन राज्यों को बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करवाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर भी 1 डजन से हमारे यहाँ दरेक राज्य में अलग अलग सरकार है, उनका क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ध्येय है, उसकी समझ नहीं आती है लोगों। और कभी कभी ऐसा एक लगता है कि ये तो अच्छी बात है, दूसरे को लगे कि इससे अच्छा दूसरा कोई है, तो इसमें ये प्रॉब्लम तो होने वाला ही है, बंधारण ने दिया हुआ प्रॉब्लम है, तो इसका कुछ हम कर नहीं सकते। लेकिन राज्यों के साथ बातचीत करके प्रोग्राम को मठारित कर सकते हैं कि कैसे करा जाए, कैसे दिया जाए, जितना बने इतना ज्यादा राज्य इसमें अपना पूर्ण योगदान दे।
1: जी, डॉक्टर पारेख, पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात हम करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 1,18,00,000 से अधिक मकान स्वीकृत हुए, जिसमें से करीब 88,00,000 से अधिक मकान पूरे हुए हैं और इनमें 8,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश हुआ था। तो अगर रोजगार के नजरिए से देखें तो

0: इतने बड़े निर्माण कार्यक्रम का क्या महत्व है, और जाहिर सी बात है इसमें निर्माण सामग्री की भी काफी मांग होती है, तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा और लोगों के लिए किस तरह रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए?
1: एक काफी लगता है, फिर भी हमको देश में कितना कंस्ट्रक्शन, कितना बांध काम हो रहा है इसके हिसाब से इसको देना चाहिए। इससे सर्टनली थोड़ी बढ़त होती है, बिकॉज कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, कब से ज्यादा अनस्किल लेबरर को एम्प्लॉय करता है, तो इसीलिए ये प्रोग्राम से घर बांधने से सबका फायदा होता है और खास करके वो अनस्किल लेबर हो उनका।
0: जी, और सरकार का लगातार लक्ष्य ये रहा है कि सरकार ने इन योजनाओं के साथ में जल जीवन मिशन को जोड़ा है, स्वच्छ भारत मिशन को जोड़ा है, सौर ऊर्जा की बात करते हैं तो उसके लिए भी काम किए जा रहे हैं, बिजली जो पहले एक बड़ी समस्या मानी जाती थी आज उस दिशा में इतना काम हो रहा है कि घर पर ही लोग अपना सौर पैनल लगा करके अपनी बिजली बना सकते हैं और साथ ही अगर एक्स्ट्रा बिजली का उत्पादन होता है उसे बेच भी सकते हैं, तो इस तरह की जो योजनाओं के साथ तालमेल किया जा रहा है इनसे नागरिकों के जीवन में कैसा बदलाव आ रहा है?
1: पहले हमने आवास योजना बनाई थी और आज की आवास योजना में ये जो बदलाव आया है अलग अलग प्रोग्राम का लिए, स्वच्छता मिशन 95% से भी ज्यादा घरों में आजकल बिजली पहुंची है, तो इससे बहुत फर्क हुआ है। इसलिए लोगों का बस क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षाओं बढ़ गई है।
0: पारिक जी, सरकार की तरफ से जो सहायता प्रदान की जाती है उसमें सब्सिडी भी उपलब्ध कराई जाती है लोगों को ताकि वो अपने खुद का मकान जल्दी से जल्दी बना सकें, तो लोग इन चीजों का फायदा कैसे उठा सकते हैं?
1: ये अलग चीज है कि बिल्कुल फ्री मकान देने की वजह सबको कहा है कि बस हम तो सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी देते है, तो इससे क्या होता है कि लोग आसानी से थोड़ा लोन अपने आप लेते हैं और उसको फिर मेरा मकान है, मैंने इसका पैसा दिया है, इस भाव से उनकी आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ इवेल्युएशन भी बढ़ता है, मेरा ख्याल से काफी असर होती है सबके ऊपर। बट अच्छी बात यह है कि जो प्रोग्राम है इसमें फाइनेंशियल एड सबको मिलती है, लेकिन इसको थोड़ा अपना इन्वेस्टमेंट के साथ जोड़ी हुई है, ये मेरा ख्याल से अच्छी चीज है, क्योंकि खाली पूरी फ्री बिल्डिंग देने से क्या होता है कि लोगों के बस सरकार पर निर्भरता बढ़ती जाती है और इससे पोते अपने आप जो प्रयत्न करना चाहिए करने से कम होता है। ये अच्छी बात है कि सरकार सभी बहुत सी तरीके से मकान में सहाय देती है फाइनेंशियल, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि पूरा नहीं, ओनली पार्शियल एड इज गिवन।
0: जी, डॉक्टर पारी के इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, चर्चा करने के लिए और तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मेरा सौभाग्य आपने मुझे बुलाया है।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री आवास योजना से बदलती शहरी आवास की तस्वीर पर चर्चा, इसमें भाग ले रहे थे नीति आयोग के पूर्व सदस्य किरीत एस पारिक। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। मंथन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव

0: कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुराने विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। इस बीच पाकिस्तान सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 60 से अधिक लोग मारे गए हैं और 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। आयकर विभाग ने इस महीने की 10 तारीख तक वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 8,11,000 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध प्रत्यक्ष कर एकत्र किया है। ये वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में 23.09% अधिक है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026.

0: कि कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है।
1: भारत और चीन के बीच सीमावर्ती क्षेत्रों से जुड़े मामले में हमने हमेशा चीन के साथ चर्चाओं में यह बात पर जोर दिया है कि हम इन मुद्दों को बेहद गंभीर मानते हैं। द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गलतफहमी और गलत आकलन से बचने और बाकी बचे हुए मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य तंत्रों सहित मौजूदा कूटनीतिक माध्यमों का उपयोग जारी रखा जाएगा।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
1: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराने जाने की जरूरत है।
0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर POJK में पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से विरोध प्रदर्शन शुरू होने वाले हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और POJK के लोगों के खिलाफ पाकिस्तानी प्रशासन द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। अवामी एक्शन कमेटी ने 14 अगस्त को पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन को काला दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। POJK में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोगों को घायल किया है। इस इलाके में लोगों के अगवा किए जाने की खबरों को लेकर भी चिंताएं बढ़ गई हैं। अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि कई देशों में पाकिस्तानी दूतावासों और राजनयिक मिशनों के बाहर प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्वतंत्रता दिवस गर्व के साथ मनाने और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेने का आग्रह किया है।
2: आइए 15 अगस्त को आन बान शान से मनाएं, स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दें, विकसित भारत का संकल्प लें। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा। आइए हर घर पर तिरंगा लहराइए।
3: भारत माता की जय।
4: वंदे मातरम।
5: वंदे
4: मातरम।
5: वंदे
4: मातरम।
0: देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ चलाया जा रहा है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास आज कुपवाड़ा जिले में करनाह क्षेत्र के टीतवाल में एक विशाल तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। रैली में 1200 मीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। रैली में स्कूली छात्र, शिक्षक, पूर्व सैनिक, नागरिक और पुलिस अधिकारी, समाज के सदस्य और स्थानीय निवासी शामिल हुए। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार की दमन करने की कार्रवाई की कड़ी निंदा भी की। उन्होंने कहा कि आज 11 अगस्त को बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप में मृतकों की संख्या 200 से अधिक हो गई है। स्थानीय अधिकारियों के हवाले से मीडिया ने बताया कि 3000 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। मृतकों की संख्या और बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कई लोगों के मलबे के नीचे फंसे होने की आशंका है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में आए भूकंप से हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अपने संदेश में उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर है। कोलंबिया ने आधिकारिक तौर पर सीरिया के कब्जे वाले गोलान हाइट्स पर इसराइल की संप्रभुता को मान्यता दे दी है। अमेरिका के बाद इसराइल में इस क्षेत्र के विलय को औपचारिक रूप से मान्यता देने वाला कोलंबिया एकमात्र अन्य देश बन गया है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और कई पूर्व अधिकारियों को सीरियाई अदालत ने मानवता के खिलाफ अपराध, सुनियोजित हत्या और यातना सहित कई अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है। सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि न्यायाधीश फखर अल दीन अल आर्यन ने असद को देश के सर्वोच्च निर्णयकर्ता के रूप में सरकारी संस्थानों को हिंसा का आदेश देने के लिए दोषी ठहराया है। असद के चचेरे भाई अतीफ नजीब और कई अन्य पूर्व अधिकारियों को भी मौत की सजा सुनाई गई है। कांगो में इबोला महामारी से मरने वालों की संख्या 2000 से अधिक हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 4381 मामले दर्ज हुए हैं। 211 लोगों की मौत हो चुकी है और 704 मरीज अस्पताल और आइसोलेशन केंद्रों में हैं। स्वास्थ्य अधिकारी विद्रोही संघर्ष, खराब सड़क और भुगतान विवादों के चलते काम बंद होने के कारण महामारी से प्रभावित दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के तहत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। एक रिपोर्ट।
5: भारत और अमेरिका ने समझौते के अंतर्गत खुले वैज्ञानिक डेटा को साझा करने पर सहयोग के लिए चर्चा को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। भारत अमेरिका नागरिक अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक 5 और 6 अगस्त को बेंगलुरु स्थित इसरो के मुख्यालय में आयोजित की गई थी। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने द्विपक्षीय अंतरिक्ष सहयोग को और मजबूत करने के को रेखांकित किया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बैठक से भारत और अमेरिका की पहल ट्रस्ट के अंतर्गत नागरिक और वाणिज्यिक अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा मिला है। दोनों पक्षों ने पिछले वर्ष नासा और इसरो के संयुक्त सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन की सफलता के बाद आपसी सहयोग बढ़ाने के साथ साथ भविष्य में विज्ञान और मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकी सहयोग को भी आगे बढ़ाने पर चर्चा की थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: चीन का संचार उपग्रह ले जाने वाले रॉकेट का लॉन्च नाकाम हो गया है। लॉन्च के फेल होने की वजह की जांच की जा रही है। लॉन्ग मार्च 7A रॉकेट पर चीन सेट 4B उपग्रह को देश के दक्षिणी द्वीप हैनान से लॉन्च किया गया था। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB- पर यथावत रखी है। एजेंसी ने कहा कि ये भारत की प्रबल विकास संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है। फिच ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट की चुनौतियों के बावजूद भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में बनी हुई है। एजेंसी का अनुमान है कि अगले वर्ष मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में GDP वृद्धि 6.4% रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक। दोहराया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में सरकार प्रायोजित आतंक को दुनिया के सामने लाने के लिए बृहस्पतिवार से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन। पश्चिमी कोलंबिया में कल आए शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 200 से अधिक हुई। सीरियाई अदालत ने अपदस्थ पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई और नासा ने आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत अपने महत्वाकांक्षी चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इसरो को आमंत्रित किया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Abhineet Shukla with The World News. The headlines. New Delhi stresses peace and tranquility in border areas essential for stronger ties with China, reiterates Arunachal Pradesh is integral part of India. POJK protests to go global from Thursday with calls for worldwide rallies to expose state-sponsored terrorism by Pakistan. Death toll from yesterday's powerful earthquake in western Colombia crosses 200. Syrian court sentences ousted former President Bashar al-Assad to death for crimes against humanity. And NASA invites ISRO to join its ambitious moon-based program under Artemis Accords. India today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Ardhi Jaiswal said, in matter

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज आज का हर श्रृंखार अर्पणा के साथ स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड में। 10:31 और 6 सेकंड हो चुके हैं तो चलिए हर श्रृंखार शुरू करते हैं यस बॉस फिल्म के गीत के साथ। आवाज है अलका याग्निक और कुमार सानू की।

जी हाँ, सोचने समझने की बात कहाँ रह जाती है जब बात होती है प्यार इश्क या हम कहें मोहब्बत की। बातें होती हैं तो होती हैं वादों की। वादों की जरूरत नहीं उन रिश्तों में वैसे, जहाँ निभाने वाले पर भरोसा होता है। और अगर आपको लगे कि निभाने वाले पर भरोसा है तो हर रास्ता आसान है। इश्क में मोहब्बत कहें या फिर प्यार कहें, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जरा सोचिए। सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी मोहब्बत को समय देना। फिलहाल समय हो गया है 10:36। अगला गीत होगा फिल्म विजयपथ से, एक बार फिर से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

दोस्तों, गलतफहमी की गुंजाइश नहीं होती मोहब्बत में। जहां किरदार हल्का होता है ना, कहानी डूब जाती है। अगर प्यार सच्चा हो तो विश्वास बना रहता है, किरदार पर भी और प्यार पर भी। फिलहाल आपका और हमारा प्यार बना हुआ है आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। हर श्रृंखार में आज अर्पणा आपके साथ है। 10:45 हो चुके हैं। अगला गीत आप सभी के लिए होगा अनुपमा देशपांडे की आवाज में। फिल्म का नाम है सैलाब।

ये इंतजार भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपको पता हो कि सामने से मोहब्बत मिलने वाली है, और ये इंतजार की घड़ियां बस यूं ही बीत जाती हैं। जैसे फिलहाल ये जो है हर श्रृंगार अब खत्म होने वाला है, और आज के हर श्रृंगार का आखिरी गीत जो होगा वो इम्तिहान फिल्म से होगा। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। 11:10 पर होगा मार्केट मंत्रा का पुनः प्रसारण, और 11:40 पर गीत मेरे मनमीत में मैं अर्पणा आपके साथ रहूंगी। फिलहाल 10:44:36 लीजिए ये गीत सुनिए, और गीत के बाद एफएम गोल्ड पर समाचार जरूर सुनिएगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते आज राज्य के कई हिस्सों में जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी है। कल विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता का कोई इसे बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को अपने चंद्र बेस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये आमंत्रण आर्टेमिस समझौते के अंतर्गत दोनों देशों की साझेदारी को और मजबूत करता है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, गंगा के मैदानी, पश्चिमी बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid a probe by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India Today reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Radhil Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
4: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
3: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman, Mr. Jaiswal said, New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held in the national capital. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK are set to go global from Thursday to expose state-sponsored terror by Islamabad. The Awami Action Committee, AAC, has urged Kashmiris across the world to hold rallies and draw international attention to the deadly force being used by the Pakistani establishment against the people of POJK. The AAC has also decided to observe 14th of August as a Black Day, coinciding with Pakistan's Independence Day. US space agency NASA has invited Indian space research organization ISRO to join its moon-based program, building on the two countries' partnership under the Artemis Accords. India and US have agreed to advance discussions for cooperation on open scientific data sharing under the accords. The ninth meeting of the India-US Civil Space Joint Working Group was hosted by India on the 5th and 6th of this month at the ISRO headquarters in Bengaluru. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of the life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. And that is the end of this news bulletin.
5: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Gaura Dhawan Lal with my co-anchor Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। स्टूडियो में आज चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद निखिल।
1: और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: थैंक यू निखिल एंड पुनीत, वंस अगेन वेलकम टू द प्रोग्राम। अ क्विक लुक एट द हेडलाइंस लिसनर्स। बेंचमार्क डोमेस्टिक इंडिसेस फॉल नियरली 0.5%। सेंसेक्स ड्रॉप्स अराउंड 400 पॉइंट्स। निफ्टी सेटल्स बिलो 24,500। Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB with a stable outlook, says country's economy remains strong despite headwinds. And stocks to be replaced in NSE indices, changes to take effect on 30th of September this year.
1: घरेलू शेयर बाजार में आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट। सेंसेक्स 400 अंकों के आसपास नीचे आया। निफ्टी 24,400 से नीचे पहुंचा। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत की सॉवरेन रेटिंग BBB पर यथावत रखी। कहा यह भारत की प्रबल विकास

0: संभावनाओं और सशक्त बाह्य वित्तीय बुनियादी स्थिति को दर्शाता है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कई सूचकांकों में स्टॉक बदलने की घोषणा की। बदलाव इस वर्ष 30 सितंबर से लागू होंगे।
1: Before we move into the program, we'd like to share with you listeners that the views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज लगभग आधे प्रतिशत की गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 388 अंक नीचे आकर 78,154 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 112 अंक गिरकर 24,472 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप इंडेक्स बिना किसी बड़े बदलाव के बंद हुआ, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 0.2% का उछाल देखा गया। भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुख्य सूचकांक गिरावट के साथ खुले और पूरे सत्र के दौरान एक सीमित दायरे में ही कारोबार करते रहे।
1: Benchmark domestic equity indices ended around 0.5% lower today. The Sensex shed 388 points to close at 78,154. The Nifty lost 112 points to settle at 24,472. Meanwhile, in the broader market on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 Index ended on a flat note, while the Small-Cap 100 Index gained 0.2%. The benchmark indices opened on a negative note and remained range-bound throughout the session following a rise in oil prices amid lingering geopolitical uncertainties.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 25 कंपनियों के शेयरों में सुस्ती देखी गई। सबसे अधिक खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.7% से ज्यादा, एक्सिस बैंक और इंडिगो में 1.5% और भारतीय एयरटेल में 1.4% से अधिक की गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ एटर्नल में 2%, इन्फोसिस में लगभग 0.5% और टाइटन में 0.3% से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई।
1: In sectoral indices on the BSE, 21 out of 28 sectors ended in the negative zone. Among the top laggards, hospitals dipped 1.8%, realty shed 1% and FMCG lost 0.9%. In contrast, focused IT climbed more than 0.4%. IT rose almost 0.4% and healthcare added over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 2,279 companies declined, 2,033 advanced and 198 remained unchanged.
0: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 15 पैसे कमजोर हुआ और 95.44 रुपए पर बंद हुआ। पुनीत, एक बार फिर से कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मार्केट में हमने गिरावट देखी, उसके पीछे कौन से मुख्य कारण रहे, ऐसी क्या वजह रही कि गिरावट देखने को मिली, और खासतौर पर ऐसे समय में जब हम देख रहे हैं कि लगातार बदलाव हो रहे हैं लेकिन पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह थोड़ी सी तेजी भी देखी गई थी।
2: निखिल, आज मजे की बात यह है कि हम, हालांकि आपने कहा कि बाजारों में गिरावट देखी और इनफैक्ट मार्केट ब्रेड्स भी कुछ नेगेटिव है, काफी कंपनीज में गिरावट थी, लेकिन अगर आप देखें तो जो लार्ज कैप है, जो ज्यादातर जो गिरावट बाजार में देखी गई वो लार्ज कैप स्टॉक्स में, यानी हेडलाइन जो नंबर्स हो, जब बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके जो शेयरों में, वहां हमने गिरावट देखी। और जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स थे, आपने बताया कि इंडेक्स में भी वहां पर गिरावट नहीं थी, स्मॉल कैप में थोड़ा हल्की बढ़त थी। तो कुल मिलाकर हम देख रहे हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं, जो FIIs हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर्स हैं, उनकी बहुत खरीदारी अभी बाजार में नहीं है, एग्रेसिव बाइंग नहीं है। FIIs का रुख बड़ा मिला जुला है, वो किसी दिन, अब आप देखेंगे कि पहले तो वो लगातार सेलिंग कर रहे थे कई महीनों तक, अब हम देख रहे हैं कि जो अगस्त का महीना गया है कि उसमें कुछ मिक्स्ड ट्रेंड है। जुलाई और अगस्त में कभी एक दिन वो खरीदारी करते हैं, एक दिन वो बिकवाली करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स जो शेयर्स हैं, जो इंडेक्स में वेटेज है इनका ज्यादा, वहां पर हमने आज सेलिंग देखी थी, इसलिए वहां पर गिरावट थी। लेकिन मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आज भी काफी स्टेबिलिटी थी, मैं ये तो नहीं कहूंगा तेजी थी, पर स्टेबल थे। तो बाजार को इस वक्त हम काफी, मतलब आप कह सकते हैं मिला जुला रुख है बाजार के अंदर। सीधा हम ये नहीं कह सकते बाजार में कमजोरी है या बाजार में तेजी है, इसलिए ये मैं कहूंगा कि थोड़ा सा वी नीड टू लुक एट इट डिफरेंटली.
0: तो इसमें मुनाफा वसूली भी एक कारण माना जा सकता है इसके लिए.
2: देखिए मुनाफा वसूली बहुत ज्यादा नहीं है इस वक्त, बल्कि जो अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स जैसे आईटी क्षेत्र था वहां पर थोड़ी सी हम

0: वाले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी। फिच ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था विभिन्न वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति लचीली रही है, लेकिन अमेरिका ईरान संघर्ष से जुड़ी अनिश्चितता के कारण कुछ जोखिम बने हुए हैं, क्योंकि भारत ऊर्जा का एक बड़ा आयातक है। फिच ने यह भी कहा कि ऊर्जा संकट के कारण महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि भारत में महंगाई रिजर्व बैंक के अनुमानित 2-6% की सीमा के भीतर रहेगी। पुनीत, मेरे दो प्रश्न हैं इस खबर को लेकर के। पहला तो ये कि एक ऐसा स्टेटमेंट आना कि भारत की घरेलू अर्थव्यवस्था बेहतर बनी हुई है, इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और जो पॉलिसीज है उन पर क्या इम्पैक्ट है। दूसरा सवाल ये कि फिच ने जब ये बोला है कि अगले वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहेगी, कहीं ना कहीं ये मार्केट को स्टेबिलिटी देने का प्रयास करने की बात जैसा है। और दूसरा ये भी कि इकोनॉमिक वैल्यू को अगर हम समझें तो इसके क्या इंपैक्ट होंगे।
1: देखिए, सबसे पहली बात यह है कि फिच की जो सॉवरेन रेटिंग होती है, जो फिच ने जो इंडिया की सॉवरेन रेटिंग BBB रखी है, ये एक और स्टेबल है, क्योंकि पहले भी BBB थी। हम ऑफकोर्स हम चाहते हैं कि अब BBB से अगला जो कदम है वो A रेटिंग जो होती है, अगर वो आती है तो इसका देखिए असर पड़ता है भारत की किस रेट पर हम पैसा भारत रेज कर सकता है। ये क्रेडिट रेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ देश के लिए, क्योंकि भारत तो ऐसा कोई फॉरेन बोरोइंग नहीं करता है, लेकिन जो हमारे देशी कंपनियां हैं इस रेटिंग के बेसिस पे उनको क्रेडिट रेटिंग मिलती है और उससे आगे वो पैसा रेस कर सकते हैं। तो एक काफी बड़ा असर पड़ता है इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर भारतीय कंपनियों के लिए। दूसरा यह है कि जो भारत में अभी कुछ हद तक हम देख रहे हैं कि बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट होती है, जो विदेशी निवेशक हैं वो पैसा डालते हैं, तो इस रेटिंग से उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर फिच ये कहता है कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमिक आउटलुक है या ग्रोथ है वो स्टेबल है और अच्छा है, उसका एक पॉजिटिव असर जरूर पड़ता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स में और इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर। तो एक काफी महत्वपूर्ण रहता है किसी भी देश के लिए क्रेडिट रेटिंग का बने रहना। तो मुझे लगता है स्टेबिलिटी का संकेत कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम इसमें बेहतर थोड़ी से बेहतर करेंगे। एंड इफ वी गो इनटू द इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, BBB इज इन्वेस्टमेंट ग्रेड, इससे अगर बेहतर होता तो भारत को काफी फायदा हो सकता है।
0: जून में देश में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 28,973 करोड़ रुपए का निवेश आया था, जो जुलाई में 14.8% घटकर 24,697 करोड़ रुपए रह गया। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP में 31,961 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जो जून के मुकाबले अधिक है। इक्विटी फंड श्रेणी के लिए जुलाई में स्मॉल कैप फंड्स में सबसे अधिक 7,700 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ। इसके बाद मिड कैप फंड्स, फ्लैक्सी कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स ने कारोबार किया। हालांकि इस दौरान लार्ज कैप और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम फंड्स से निकासी देखी गई। पिछले महीने गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश घटकर 1,559 करोड़ रुपए रह गया। वहीं डेट फंड्स में ट्रेंड उल्टा हो गया, पिछले महीने इनमें 1,87,511 करोड़ रुपए का निवेश देखा गया। डेट ओरिएंटेड स्कीमों में लिक्विडिटी फंड्स में सबसे अधिक 1,19,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश हुआ है। पुनीत, अभी जुलाई के महीने में जितना हमने इन्वेस्टमेंट देखा, जून के महीने में जितना देखा, जुलाई में घट करके वो काफी कम रह गए, इसके पीछे क्या कारण रहे?
1: देखिए, ये आप अगर देखें तो अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि लार्ज कैप्स का जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो कम हुआ है पिछले दिनों, और इन्वेस्टर्स जो है रिटेल इन्वेस्टर्स ज्यादातर वो अब मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो ये डेटा उसको पुष्ट करता है, उसको दिखाता है कि हमारा आंकलन जो है वो सही है। और देखिए, जो SIPs हैं, जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, उसमें काफी उसमें से पैसा लार्ज कैप में भी जाता है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जरिया है। लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरा एक दर्शाता है कि जो रिस्क एपिटाइट है इन्वेस्टर्स की वो थोड़ी बढ़ रही है, और कुछ हद तक जो स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स की परफॉर्मेंस है, आउट परफॉर्मेंस है कंपेयर टू लार्ज कैप्स, उसकी वजह से ये डेटा अफेक्ट हो रहा है। आने वाले समय मेरी उम्मीद है कि जो 2 या 3 महीने कंसोलिडेशन का जो समय है मार्केट्स के लिए, ये जब निकल जाएगा तो यहां पर प्रदर्शन बेहतर होगा, और मार्केट्स मुझे लगता है कि ये बता रहा है हमें कि मीडियम टर्म में थोड़ी कंसोलिडेशन के बाद मार्केट्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है।
0: और SIP के बढ़ने का क्या कारण?
1: देखिए, SIP एक फॉर्चुनेटली एक बहुत ही स्टेबल एक तरीका है मार्केट में पैसे डालने का। जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं, जो रोजमर्रा में मार्केट को नहीं देखते हैं, तो ये SIP के वजह से हमारे भारतीय बाजारों में काफी स्थिरता आपने देखेंगे, स्टेबिलिटी है। और जो FIIs का इतनी सेलिंग हमने एब्जॉर्ब करी है, वो भी कुछ हद तक उसका श्रेय जो है वो SIPs को जाता है। तो ये एक स्टेबल ट्रेंड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव अभी आने वाला है, और थोड़ा बेहतर ही होगा आने वाले समय में।
2: And a quick comment on the increase in debt funds.
1: So Gauram, what happens is that whenever money, so debt funds is purely parking of money by corporates.

0: Reflection of the volatility.
1: And if people are avoiding large caps in the time being, then they will park money for short term in debt funds. But debt fund flows are very, very volatile. So this month you may have seen 1 lakh crore inflow. Next month you might see 1 lakh crore outflow. Okay. This is a typically short term money. This is not really long term invested in the Indian debt markets.
0: So wait and watch is what a lot of retail investors and investors Absolutely. Are doing.
1: And retail investors are tilting towards higher risk, which is basically mid caps and small caps.
0: Right. Moving on to our next story, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has informed that the progress of area coverage under Kharif crops has recorded more than 967 lakh hectare area as of the 7th of this month. Meanwhile, the government has said that it is continuously monitoring the evolving monsoon situation and the possible impact of El Nino conditions on agriculture in close coordination with the India Met Department. The Minister of State for Agriculture and Farmer Welfare, Mr. Ramnath Thakur, said this in a written reply to a question in the Lok Sabha today. He informed that district agriculture contingency plans have been updated for 15 states covering 342 districts which are likely to receive below normal rainfall. Quickly again, Puneet. So fears of actually the monsoon completely, skewing up production, that somewhat receded?
1: Yeah, that is really receded a lot. And I think it's a big relief for the economy.
0: Absolutely. The Reserve Bank of India governor has called on Indian banks to adopt artificial intelligence with a clear focus on innovation, accountability and customer trust. Addressing the 2026 edition of Back on Mumbai, the RBI governor said AI could transform Indian banking by improving credit delivery, customer service, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फ्रॉड डिटेक्शन।
2: एशियाई शेयर बाजारों में दक्षिण कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में आज 0.7% की बढ़त हुई, जबकि जापान के बाजार छुट्टी के कारण बंद रहे। पुनीत, अभी कुछ समय पहले हम लोग एआई के बारे में बात कर रहे थे, उससे रिलेटेड मार्केट की अगर हम बात करें तो साउथ कोरिया का मार्केट बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है, लेकिन अभी जो मौजूदा आर्थिक अस्थिरता की हम बात करें, स्थिरता तो नहीं कहना चाहिए, उसका असर लग रहा है कि आपको एशियन मार्केट्स में ज्यादा पड़ रहा है?
1: देखिए, एशियन मार्केट्स में काफी वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा थी और बहुत हमने तेजियां देखी, फिर बहुत बड़ी करेक्शन मार्केट्स में देखी। मुझे लगता है अब कुछ कंसोलिडेशन, अब कुछ जो एक इनिशियल एक अफरा तफरी थी वो कुछ कम होगी और बाजार अब यहां पर कंसोलिडेशन होकर इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर शायद चलेंगे, वो अच्छा भी है मतदानों के लिए।
2: और चिप सेक्टर से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं?
1: देखिए, चिप सेक्टर अच्छा सेक्टर है, लेकिन वहां वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई थी, तो हमने देखा है कि बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है और कुछ हद तक वो पैसा रोटेट होकर इंडियन मार्केट की तरफ आया है।
0: So now are world markets moving more on domestic issues or domestic this thing or geopolitical still?
1: So there is no longer this global trend in the markets now. We see the US markets move in a different direction. So right now they're kind of disconnected with each other. It happens in certain times. Right. But right now they're not moving following each other.
0: Moving to crude oil prices now. Global crude oil prices paired early gains today. Brent crude was trading nearly unchanged at $87.75 per barrel in intraday trade. West Texas Intermediate crude was trading 0.1% up at $82.21 per barrel when reports last came in. So countries realigning their oil policies and all, even for the long term in the future, even if the Middle East thing gets sorted out. But they're saying, we really can't be so dependent again. You think that's going to happen?
1: Absolutely. I think the oil trade is being rewritten all over. And I think next 10 years, we'll see the oil markets being very different from what they are today. So it's a good thing. It's probably a geopolitical commodity right now. But going forward, I think this will be de-risked to a large extent. And the dominance of the Middle East in the oil trade, I think that will decline over the next 10 years.
2: Puneet, agar oil sector ki hum baat karte hain, to kacche tel ki keematon ko lekar ke lagatar एक चिंता का माहौल देखा गया है पिछले कुछ समय में। भारत के नजरिए से अगर देखें, खासतौर पे ऐसी स्थिति में हम तेल को बड़ी मात्रा में आयात करते हैं, क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या लगता है कि आने वाले समय में कैसी स्थितियां बन सकती हैं हमारे लिए?
1: देखिए निखिल, अभी जो हमें कंपनी जगत के नतीजे आए हमारे सामने, ये बात साफ है कि कॉस्ट प्रेशर्स इस तिमाही में बहुत ज्यादा थे और कंपनीज के मार्जिन पे भी असर पड़ा उसका। तो भारतीय इकोनॉमी जो है वो बहुत सेंसिटिव है और एनर्जी प्राइसेस को, क्योंकि लार्जली बिकॉज हम 80-90% एनर्जी इंपोर्ट करते हैं अपनी, तो उसका असर भारतीय कंपनियों पर, हमारी इकोनॉमी पे बहुत गहरा पड़ता है। अभी तक सरकार ने उसको अच्छा मैनेज किया है, पर मुझे लगता है एक लॉन्ग टर्म डी रिस्किंग पॉलिसी जरूर भारत को चाहिए होगी। हम इस तरह से डिपेंडेंट नहीं रह सकते ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर या अनसर्टिनिटी के ऊपर। तो मुझे मेरा अपना अनुमान यह है कि वो पॉलिसीज भी आएंगी, भारत अपने भी एनर्जी व्यापार को बढ़ाएगा, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पड़ाव है।

0: हमारे लिए।
1: इस पे यूएस मार्केट का कैसा असर देखने को मिल रहा है, क्या इम्पैक्ट डाल रहा है?
0: देखिए एनर्जी प्राइसेस जो है उससे यूएस मार्केट्स पर तो देखिए फर्क पड़ ही रहा है, बिकॉज वहां पर जो पॉलिसी है उसको सीधा सीधा वो असर डालती है। वहां पर मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उसकी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्पैक्ट पड़ेगा। पर अगर आप देखें तो यूएस मार्केट ने काफी हद तक इसको दरकिनार करके और ज्यादातर एआई ट्रेड और टेक्नोलॉजी ट्रेड पर ध्यान दिया है और वहां पर उसका असर ज्यादा है
1: जी। अब गोल्ड और सिल्वर की बात करते हैं। सोना 1.4% की बढ़त के साथ 152,803 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं चांदी 1.7% की तेजी के साथ 235,352 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। गोल्ड और सिल्वर पर आपके क्या कॉमेंट्स होंगे? पिछले कुछ दिनों में एक ऊपर चढ़ने का सिलसिला हम देख रहे हैं।
0: देखिए जैसे जैसे डॉलर इंडेक्स उसका सीधा असर इस आप देखें तो ऑयल डॉलर और सोना चांदी जो इसका जो वो बना हुआ है
1: कॉम्बिनेशन
0: बना हुआ है। और जैसे डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट देखी, इंटरेस्ट रेट्स कम होने की संभावना हुई तो वहां पर गोल्ड के दाम पड़े
1: जी। पुनीत जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद निखिल।
2: एब्सोल्युटली थैंक यू पुनीत, वंडरफुल हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। एंड नाउ लुक एट द हेडलाइंस once again. Benchmark domestic indices fall by nearly 0.5%. Sensex drops around 400 points. Nifty settles below 24,500. Global ratings agency Fitch affirms India's sovereign rating at BBB- with a stable outlook. Says country's economy remains strong despite headwinds and stocks to be replaced in NSE indices. Changes to take effect on 30th of September this year. That's all for today. Namaskar.
1: Namaskar.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

गीत मेरे मन मीत में आप सभी का स्वागत करती है अर्पना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ से ये 11:41 और 4 सेकंड हो चुके हैं। तो गीत मेरे मन मीत की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज के साथ। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और फिल्म का नाम है आक्रमण।

0: प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
2: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।
3: पतंग उड़ाए, खुशियां मनाए, पर चाइनीज मांझा कभी ना अपनाए।
0: नायलॉन, प्लास्टिक या किसी अन्य सिंथेटिक सामग्री से बना अथवा नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ से लेपित चाइनीज मांझा इंसानों, पशुओं और पक्षियों के लिए जानलेवा है। चाइनीज मांझे का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद और उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। चाइनीज मांझे को ना कहें, सुरक्षित डोर से खुशियां जोड़ें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
4: ग्यारह बजकर 56 मिनट और 27 सेकंड हो चुके हैं। गीत मेरे मनमीत में अब जो आप गीत सुनेंगे वो मोहम्मद रफी की आवाज है, हसरत जयपुरी का लिखा गीत है, शंकर जयकिशन का संगीत पद है, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है। और इसी गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, स्वतंत्रता, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एक रूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण स्थगित कर दी गई है।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की

0: कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। नेपाल में भारतीय दूतावास और नेपाल सरकार की कई संस्थाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र में 8 परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इन परियोजनाओं के लिए भारत सरकार से अनुदान के तौर पर मदद मिलेगी। लगभग 80 करोड़ 30 लाख नेपाली रुपए की लागत वाली इन परियोजनाओं को नेपाल सरकार के तहत स्थानीय सरकारी संस्थाओं और अन्य संस्थाओं के जरिए पूरा किया जाएगा। खाद्य सुरक्षा में मानक प्राधिकरण ने पान मसाला पैकिंग में प्लास्टिक, सिंथेटिक सामग्री और एल्युमिनियम फॉयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the upper house met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said, "The new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court." The Rajya Sabha was adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home Nityanand Rai said, "Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for amendment in this regard." The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation NCDC Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by the opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India, and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Radhir Jaiswal said, "In matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
3: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression. And more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights. And I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
2: On Indian High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rahman, Mr. Jaiswal said New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session, which will be held in the national capital. Protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir POJK are set to go global from Thursday to expose state-sponsored terror by Islamabad. The Awami Action Committee, AAC, has urged Kashmiris across the world to hold rallies and draw international attention to the deadly force being used by the Pakistani establishment against the people of POJK. The AAC has also decided to observe 14th of August as a Black Day, coinciding with Pakistan's Independence Day. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till the 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi yesterday urged the countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. Sharing a video on a social media platform, Mr. Modi urged all to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. And that is the end of this news bulletin.

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 12:10 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम निशिगंधा।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अरे अब क्या कहना है, अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी।
1: अच्छा,
0: अब तो बाजा बजेगा, शहनाई बजेगी। मैं दूल्हा बनूंगा, तू दुल्हनिया सजेगी। अब तो बाजा

दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा। तुम मिले तो जिंदगी में नूर आ गया, तुम मिले तो जिंदगी में नूर आ गया, धड़कनों को जीने का जैसे सुरूर आ गया।

पूरी दुनिया को भुलाकर हम तुम्हें ही अपनी दुनिया बना बैठे। पूरी दुनिया को भुलाकर हम तुम्हें ही अपनी दुनिया बना बैठे। अब तुम ही बताओ कि तुम्हें छोड़कर हम कहाँ जाएं हम।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर गीत सुहाने लेकर एक बार फिर से रहूंगी आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 GHz पर।

0: संसद ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे कल राज्यसभा ने मंजूरी दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता, सुधार और एकरूपता सुनिश्चित करना है। विधेयक में राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना का भी प्रस्ताव है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक आधुनिक, स्वतंत्र और एकरूप अधिकरण प्रणाली स्थापित करने के लिए लाया गया है। लोकसभा ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने वर्ष 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है। उन्होंने केरल के कांग्रेस सांसदों पर विधेयक का समर्थन नहीं करने का आरोप लगाया।
1: कांग्रेस के कुछ सांसद जब आज पारित करने का प्रस्ताव करा रहे थे तो केरल के कांग्रेस के लोगों ने इसका समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या केरल का नाम केरलम करने में उनको क्या आपत्ति है।
0: लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 भी पारित कर दिया है। ये विधेयक निगम को औद्योगिक वस्तुओं के क्षेत्र में अपनी गतिविधियां संचालित करने की अनुमति देता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण कल दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित हुई। केंद्र सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा और गृह मंत्री द्वारा जवाब देने के आश्वासन दिए जाने के बावजूद कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने नारेबाजी जारी रखी। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों में आज भी प्रश्नकाल नहीं हो सका। विपक्ष की दोनों प्रमुख मांगे स्वीकार किए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि सदन संवाद और सहयोग के माध्यम से चलता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड

0: में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी से कल नई दिल्ली में केरल के बिजली मंत्री सनी जोसेफ ने मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने श्री जोसेफ से राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने की गति और तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ाने और पानी की सतह पर तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना के लिए राज्य की क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया। फुटबॉल में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 135वें डूरंड कप के अपने आखिरी मैच में FC1 को 3-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप ई के मैच में नोंकसेह SSCC ने मुंबई फुटबॉल क्लब पर 7-0 की शानदार जीत के साथ अपने अभियान का समापन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Parliament has passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha has already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service, of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. When the Upper House met at 2 p.m. after the second adjournment, Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said that the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. The Rajya Sabha is adjourned for the day after completing its business. The Lok Sabha has passed the Kerala Alteration of Name Bill 2026. The bill seeks to change the name of the state of the Kerala to Keralam in the first schedule of the constitution. A resolution in this regard was passed by the Kerala Legislative Assembly in June 2024. Speaking on the bill, Minister of State for Home, Nityanand Rai, said, Union Cabinet in February this year approved the proposal to change the name of the state to Keralam and to introduce the necessary legislation for the amendment in this regard. The lower house has also passed the National Cooperative Development Corporation, NCDC, Amendment Bill 2026. The legislation aims to further amend the National Cooperative Development Corporation Act, 1962. The bill allows the corporation to undertake its activities in industrial goods. Both the bills were passed without discussion amid uproar by opposition over several issues. After completing the business, the Lok Sabha was adjourned for the day. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance to the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violations being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
2: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression. And

दोस्तों समय हुआ है 1:11 और 2 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम लेकर आई हूं गीत सुहाने। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अल्फाज के साथ। लोग ढूंढते हैं मोहब्बत को किताबों में, लोग ढूंढते हैं मोहब्बत को किताबों में, हमने तो तुम्हें अपनी हर सांस में बहुत गहराई से बसाया है।

तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। तुम पूछो और मैं ना बताऊं, ऐसे तो हालात नहीं। बस इतना समझ लो कि तुमसे प्यार बहुत है और कोई बात नहीं।

न जाने मुझे तुमसे इतना प्यार क्यों है, तुम्हारी हर बात पर इतना एतबार क्यों है। तुम पास नहीं हो फिर भी पास लगते हो, इस दिल को बस तुम्हारा इंतजार ही क्यों है।

न चेहरा देखा न सादगी देखी तुम्हारी, न चेहरा देखा न सादगी देखी तुम्हारी, बस रूह से रूह तक की डोर बंद गई हमारी। न जाने क्यों तुम अपने लगते हो मुझे, न जाने क्यों तुम इतने अपने लगते हो मुझे कि तुम पर वार दी ये जिंदगी सारी।

सारी सारी रात जागते हैं बस हम इसी आस में, सारी सारी रात जागते हैं हम बस इसी आस में, शायद कोई ख्वाब बनकर तुम आओ मेरे पास में।

तुम मिले तो मिल गई इस दिल को उसकी मंजिल, तुम मिले तो मिल गई इस दिल को उसकी मंजिल, अब उम्र भर का साथ ही है हमारी चाहत का हासिल।

मेरी तन्हाई की रातों को तुमने रोशन कर दिया, मेरी तन्हाई की रातों को तुमने रोशन कर दिया, भीरा पड़े इस दिल को मोहब्बत से भर दिया। भटक रहे थे हम अंधेरों के मुसाफिर बनकर, तुमने आकर मेरी जिंदगी को एक नया सवेरा कर दिया।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर रात सुर में लेकर एक बार फिर से रहेंगे आपके साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिनभर के लिए स्थगित करना पड़ा था। लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ओमान की खाड़ी में उसके सैनिकों

समय हुआ है 2:11 और 12 सेकंड। ये समय है रात सुरमई का। मैं हूं अंजू, एक बार फिर से आप सभी के साथ, और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? तुमसे मिलना कोई इत्तेफाक कैसे हो सकता है भला? मेरी तो हर एक दुआ में सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र शामिल होता है।

छुपाए नहीं छुपती चेहरे की ये हसीन चमक, छुपाए नहीं छुपती चेहरे की ये हसीन चमक, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मोहब्बत हो गई है तुम्हें, झूठ मत बोलो क्योंकि रूह तक पहुंच गई है ये महक।

मेरी बातों पर तुम्हारा इस कदर मुस्कुराना साफ कहता है कि मुश्किल है अब दिल को बचाना।

मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये जो असर है तुम पर, मेरी बेपनाह मोहब्बत का ये जो असर है तुम पर, मानो या ना मानो कुछ तो तुम्हें भी होता होगा जिक्र आने पर।

इनका मिलना इन पर छोड़िए, लेकिन हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और थोड़ी देर बाद यानी 3:10 पर अर्जित रहेंगे आपके साथ कार्यक्रम हमराही लेकर। अभी सुनिए आप समाचार और मुझे अनुमति दीजिए, जल्द मिलूंगी आपसे। नमस्कार, शुभ रात्रि।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले कल लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली है और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बलूच नेता मीर यार बलूच ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने का आग्रह किया है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार के अत्याचारों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज बलूचिस्तान के लोग न केवल अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, बल्कि दुनिया से मांग करते हैं कि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता को कानूनी, राजनीतिक, कूटनीतिक और नैतिक रूप से मान्यता दी जाए। मीर यार बलूच ने दावा किया कि 50,000 से अधिक बलूच अभी भी पाकिस्तान की यातना कोठरियों में अमानवीय अत्याचार झेल रहे हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, आसियान, अफ्रीकी संघ, ओआईसी और यूरोप के सदस्य देशों से चुप्पी तोड़ने का आग्रह किया। हिमाचल प्रदेश में शिमला के चौरा मैदान में लगभग 50 तिब्बती पुरुषों, महिलाओं और बुजुर्गों ने 24 घंटे की भूख हड़ताल और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। वे तिब्बत के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने और तिब्बती भाषा, संस्कृति और धार्मिक पहचान को कमजोर करने की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ शिमला द्वारा आयोजित ये विरोध प्रदर्शन कल शाम 4 बजे शुरू हुआ और आज शाम 4 बजे खत्म होगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह भूख हड़ताल लोबसांग

रंग ज़ेन की याद में की जा रही है। आयोजकों के अनुसार उन्होंने चीन की सरकार की नीतियों के विरोध में 2 जुलाई को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर आत्मदाह कर लिया था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल ईगा स्वियातेक का मुकाबला यूक्रेन की 9वीं सीड एलिना स्वितोलिना से होगा। पूर्व विश्व नंबर 1 खिलाड़ी स्वियातेक 6 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन ने रूस की डायना श्नाइडर को 6-2 6-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। स्वितोलिना ने एक अन्य क्वार्टर फाइनल में रूस की एकातेरिना अलेक्जेंड्रोवा को हराकर अंतिम चार में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम हमराही।

मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, मिजाज हमारे तुम यूं ना समझ पाओगे, एक दो बार मिलकर तुम मेरे लिए क्या ही राय बनाओगे। समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, समझना है हमें तो आओ कभी फुर्सत से बैठें, एक बार जो समझ गए तो फिर कभी ना भूल पाओगे। 3:11 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें। 3:19 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

कैसे चुने सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

इस कदर हम थे तन्हा, इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। इस कदर हम थे तन्हा कि तन्हाइयों ने खुद ही मुझसे दोस्ती कर ली। घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, घूम रहे हैं अब तन्हाइयों के साथ दिन और रात हम, और लोग समझ रहे हैं हम आज भी तन्हा हैं। 3:37 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

भटक न जाओ कहीं, अब इस डर से बाहर ही नहीं निकलते हो। लोग क्या सोचेंगे, अब ये भी तुम ही सोचते हो। जितना जंजीरों में बांधोगे खुद को, उतना ही खुद से दूर हो जाओगे। इतनी सी बात भी क्या तुम नहीं समझते हो? बेशक समझदार होना अच्छी बात है, बेशक समझदार होना अच्छी बात है, पर हर दम समझदारी का बोझ अपने ही सर क्यों रखते हो? निकलो भटको, घूम कर आओ थोड़ा, निकलो भटको, घूम कर आओ थोड़ा, हर समय बिना बात के इतना क्यों डरते हो? 3:44 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: प्यार करने से पहले जरूरी है ये मैं तुझे जान लूं और तू मुझे जान ले।
1: जा जा।

नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फासले भी रखें, नज़दीकियाँ भी रखें और कुछ फासले भी रखें, हर रिश्ते में नज़दीकियों और फासलों का सामंजस्य बनाए भी रखें, पर जब भी कभी दिखें लड़ने के आसार, पर जब भी कभी भी दिखें लड़ने के आसार, कृपया उचित दूरी बनाए भी रखें। 3:51 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा था। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर के कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। पीओजेके में 2 महीने से ज्यादा समय से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना ने 90 से ज्यादा लोगों की जान ली और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता जताई है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है और साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। कोलंबिया में आए भूकंप में 250 से अधिक लोगों की मौत हुई है। सोमवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस सदी में कोलंबिया में आया सबसे विनाशकारी भूकंप था। पश्चिमी कोलंबिया के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में बचाव दल मलबे के ढेर के बीच काम कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जिससे कि वो उन लोगों की आवाज सुन सकें जो इमारतों के नीचे दबे हो सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार पंजाब, उत्तराखंड,

छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। 4:11 हो चुके हैं, लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम अरुणिमा।

कोशिश यही कीजिए कि कोई बिना बात के आपसे नाराज ना हो। कोशिश करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज ना हो। रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हो। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए। पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 4:11 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त एक बार फिर से अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: उदित नारायण जी की आवाज में अभी अभी आपने सुना तेरा मेरा मेरा तेरा सपना है। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। 4:20 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।
1: बरसों बाद ऐसा लगता है कि वो किसी और सभी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की बात ही तो लगती है।
2: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे। कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
1: भूल गई। ना ना,
2: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है,

0: हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर हर समय गमों की चर्चा क्यों करते हो? हासिल है जमाने की खुशियां तुमको, फिर हर समय गमों की चर्चा क्यों करते हो? बैठे तो हो सुकून से घर में, फिर इतना परेशान क्यों लगते हो? परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, परेशानियां तो सभी के पास होती ही हैं दो चार, पर तुम हर समय इतना परेशान क्यों लगते हो? 4:28 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

ये बेचैनियों के साथ अब जरा आराम से रहिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, मेरी इन बातों का थोड़ा ख्याल भी रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से चलिए। 4:35 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

छोड़िए अब बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़

कोशिशें तो इस कदर की मैंने कि कोशिश ने खुद मुझसे आकर कहा कि मुझसे अब और कोशिश ना हो पाएगी। सभी ने मुझसे कहा, रहने दो अब और कोशिशें, तुम्हारी कोशिशें व्यर्थ ही जाएगी। मैंने भी हार ना मानी, ना हुआ ज्यादा बेकरार, करता रहा कोशिशें यूं ही बार बार। और फिर दिखने लगा असर, होने लगा विश्वास, तब पता चला हर कोशिश में छिपा था मेरी सफलता का राज। 4:46 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल का नाम बदलने के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे और इसे पारित कराने की कोशिश करेंगे। लोकसभा ने पहले ही इसे पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। इससे पहले लोकसभा ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित किया और राज्यसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक पारित किया। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीपीवी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और एसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। कल नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: रांची में अनुशासित मर्यादित आंदोलन करने वाले छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है उसके ऊपर राहुल गांधी जी के कान पूरी तरीके से बंद है। रांची के छात्रों की गूंज उन्हें सुनाई नहीं दे रही है। यह साफ हो जाता है कि छात्र हितों से उनका कोई लेना देना नहीं है, केवल शुद्ध राजनीति करनी है और संसद के सदन को अपनी सनक और उद्दंडता का बंधक बनाकर रखना है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री का एक सभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रायोजित आतंकवाद को दुनिया के सामने लाने के लिए 13 अगस्त से वैश्विक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आवामी एक्शन कमेटी ने दुनिया भर की कश्मीरियों से रैलियां करने और पीओजेके के लोगों के खिलाफ पाकिस्तान सरकार द्वारा किए जा रहे अत्याचार की ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने का आग्रह किया है। विश्व बैंक ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के लिए घर बनाने के लिए दिए गए अरबों रुपए के फंड के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए मिले पैसों को बुनियादी परियोजनाओं में खर्च किया गया है। बैंक ने चेतावनी दी है कि इस कदम से पाकिस्तान में गरीबी और बढ़ सकती है, साथ ही आपदा से जुड़े जोखिम भी बढ़ सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. Union Home Minister Amit Shah is scheduled to move the Kerala Alteration of Name Bill 2026 for consideration and passing in Rajya Sabha today to alter the name of Kerala. The Lok Sabha had passed the bill yesterday. Rajya Sabha is also likely to take up the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 for consideration and passing today. In the Lok Sabha, the Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 will be tabled for consideration and passing. Yesterday, the proceedings of both the Houses of Parliament were once again disrupted following opposition uproar on various issues. Lok Sabha passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026 and the Rajya Sabha passed the Tribunals Reforms Bill 2026. The Parliament passed the Tribunals Reforms Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it yesterday. Lok Sabha had already passed the bill. The legislation aims to improve efficiency, ensure independence, transparency and uniformity in the qualifications, appointment of service of chairpersons and members of various tribunals, as well as the administration and functioning of the tribunals. It also proposes to establish a National Tribunals Commission. Minister of State for Law and Justice Arjun Ram Meghwal moved the bill. Replying to discussion on the bill, Mr. Meghwal said the new bill has a provision to establish the National Tribunals Commission, which will be chaired by a former judge of the Supreme Court or a former Chief Justice of a High Court. President Draupadi Murmu has given assent to prevention of insults to National Honour Amendment Bill 2026. Parliament had passed the bill last month, amending the Prevention of Insults to National Honour Act 1971. The legislation seeks to give national song Vande Mataram the same statutory protection as the national anthem Jana Gana Mana. The bill has become a law following the President's assent. India has reiterated that Arunachal Pradesh is an inalienable and integral part of India and nothing can change this indisputable reality. Briefing media in New Delhi yesterday, External Affairs Ministry spokesperson Ranveer Jaiswal said, in matters relating to the border areas between India and China, New Delhi always emphasized that the maintenance of peace and tranquility in these areas is of utmost importance for the overall development of bilateral relations with China. Replying to another query, Mr. Jaiswal highlighted that human rights violation being committed in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir and other parts of the neighboring country.
3: In the last several months, we have seen that during the elections and before that also, large-scale protests were held in Pakistan-occupied Kashmir. Public discontent were answered with bullets and blackouts and repression and oppression, and more than 90 people have been killed and many more have been injured. This has made news across the world. There have been grave violations of human rights, and I think it is time that the international community take note of what's happening there and hold that country responsible for its atrocities.
2: On and in High Commissioner Dinesh Trivedi meeting Bangladesh Prime Minister Tariq Rehman, Mr. Jaiswal said New Delhi has extended an invitation for a bilateral visit as well as for the BRICS outreach session which will be held in the national capital. The ongoing Har Ghar Tiranga campaign is gaining significant momentum across the country ahead of the 80th Independence Day celebrations, inspiring citizens from all walks of life to come together in a collective celebration of India's national pride and spirit of unity. The movement, which will continue till 17th of this month, coincides with the 150th anniversary of Vande Mataram this year, making the occasion even more heart-stirring for every patriot. Prime Minister Narendra Modi has urged countrymen to celebrate Independence Day with pride and grandeur, taking a pledge to build a Viksit Bharat. Sharing a video on social media platform yesterday, Mr. Modi urged everyone to hoist the tricolour at their homes under the Har Ghar Tiranga campaign. The Indian Meteorological Department has forecast heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Gangetic, West Bengal, Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra and Odisha today. According to IMD, parts of Punjab, Uttarakhand, Chhattisgarh, Gujarat, West Madhya Pradesh, West Rajasthan, Goa and northeastern states are expected to experience heavy rainfall for the day. In Canadian Open Tennis, 19th seed Luciano Dardari of Italy will face 28th seed Brandon Nakashima of the United States in the men's singles quarterfinal in Montreal last night. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर 5:10 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम भोर सुहानी। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है। हर पतंग को पता होता है कि आना उसे एक दिन जमीन पर ही है, फिर भी वो एक बार आसमान को छूना चाहती है। इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, इंसान भी हवा में उड़ना चाहता है, पर समस्या यहाँ पर है कि इंसान अपनी जमीन को भूलकर हमेशा ही हवा में रहना चाहता है। 5:11 हो चुके हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज के इस प्रोग्राम जिसका नाम है भोर सुहानी, और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, सिर्फ हैसियत देखकर बात ना कीजिए, थोड़ा इंसान के अंदर भी झांक लीजिए। बाहर से तो सारे मकान ही सुंदर दिखते हैं, बुनियाद कितनी मजबूत है पहले वो पता कीजिए। दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है, दिल से अच्छा हो इंसान वही जरूरी है। सिर्फ सुंदर चेहरों पर जल्दी विश्वास ना कीजिए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए, जुड़िए किसी से तो फिर दिल से जुड़िए। सिर्फ दिखावे के लिए अब दोस्ती ना करिए। 5:18 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भोर सुहानी मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, मैं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोल रही हूँ। दिल्ली सरकार ने दिल्ली लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 2,500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 1 अगस्त से योजना का आवेदन पोर्टल शुरू हो चुका है।
1: दिल्ली की जरूरतमंद महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता की नई शुरुआत, आज ही रजिस्टर करें और योजना का लाभ पाएं।